आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम

0: जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृवंदना से।

समूह स्वर में मधुर शास्त्री की ये देशभक्तिपूर्ण रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए रमजान शाह के स्वर में दादू दयाल की ये रचना।

जगजीत सिंह की आवाज में ये भजन अभी आपने सुना। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए हरिओम शरण के स्वर में भजन।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख सुश्री वंदना सिन्हा का है।
1: पहले जमाने में लोग पगडंडियों पर चला करते थे। खाना पकाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था और लकड़ियों और कंडों का इस्तेमाल करके खाना पकाया जाता था। आवागमन के लिए बैलगाड़ी तांगा जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता था। स्नान के लिए उबटन का उपयोग किया जाता था। नीम अमरूद बबूल की टहनियों से दंत मंजन किया जाता था। घर के सारे कामों के लिए नौकर चाकर कम ही होते थे। परिवार के सदस्य ही मिलजुल कर घर बाहर के कार्य सरलता से कर लिया करते थे। आज का दौर पहले से काफी बदला हुआ है। कुछ बदलाव तो समय की मांग है और कुछ परिवर्तन मानव ने अपनी सुविधा के अनुरूप कर लिए हैं। समय के अनुसार कृत्य बदलते रहते हैं। तनिक विचार कीजिए, अगर आज हमने भोजन में भिंडी की सब्जी खाई है और भिंडी हमारी सबसे पसंदीदा सब्जी है, तो क्या कल भी अगर खाने में भिंडी की सब्जी ही दी जाए तो हम उस सब्जी को आज उतनी ही रुचि से खा पाएंगे जितने की कल हमने खाई थी? या हो सकता है आज खा भी लें और कल फिर से उसी सब्जी को भोजन में परोसा जाए तो क्या होगा? मेरे विचार से कोई लगातार तीसरे दिवस एक ही सब्जी उतनी रुचि से नहीं खा पाएगा। तात्पर्य ये है, छोटी से छोटी चीज में भी अपनी रुचि को बनाए रखने के लिए जीवन में बदलाव आवश्यक है। कुछ घटनाएं अकस्मात ही घटित हो जाती हैं, जिसके लिए हम कभी कभी तैयार नहीं हुए होते हैं। हमारे चाहे अनचाहे घटनाएं अपने समय पर स्वतः ही होती हैं। कभी हमारे जीवन के लिए सकारात्मक पक्ष बनकर उभरती है और कभी कभी नकारात्मकता की छाया बनकर हमारे साथ ही चलने लगती है। वर्षा का जल जब भूमि पर मिलता है तो मिट्टी की सौंधी महक प्रकृति के प्रत्येक जीव को मोह लेती है। वही पानी समस्त जीवों के लिए प्राणदायिनी है, परंतु अतिवृष्टि पर बाढ़ आ जाने या समुद्र में सुनामी आ जाने की भयावहता का अनुमान कोई भी क्षण मात्र में लगा सकता है। कहने का तात्पर्य ये कि काल चक्र की गति से परिवर्तन होता ही रहेगा, उसको रोकना हमारे वश में नहीं है। गीता में उल्लेख है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जिस रूप में कोई वस्तु है, समय के साथ उसमें परिवर्तन होकर ही रहेगा। विज्ञान, भूगोल,

0: गणित, खेल, ज्योतिष, अंतरिक्ष, अर्थव्यवस्था, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके बारे में ये कहा जा सके कि आज जैसा है कल भी वैसा था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। कभी कभी किसी व्यक्ति के कार्य हमारे विचारों के अनुरूप नहीं होते तो हमें क्रोध का अनुभव होता है। कई बार कुछ घटनाओं का होना हमारी सोच से विपरीत होते हैं जो हमें सुखद अनुभव नहीं कराते। कभी कभी तो हम कई चीजों की अपेक्षा दूसरों से तो करते हैं किंतु हम स्वयं उन चीजों को करने में परहेज करते हैं। हमें ऐसी बातों का पालन कराने से पूर्व अपने जीवन से शुरू करना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा है, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव खुद बने। गर्मी के दिनों में हम ऐसे उपाय करते हैं जिनसे गर्मी का असर शरीर पर कम हो, जैसे ठंडे पानी से स्नान करना, ठंडी तासीर वाले भोजन करना, घड़े का पानी पीना आदि। ठंडी ऋतु में इसके विपरीत हमारे कृत्य हो जाते हैं। ऋतुएं परिवर्तन का एक सटीक उदाहरण है, हमें इनके अनुसार ढलना पड़ता है। यदि हम समय अनुसार परिवर्तन में शामिल न हुए तो इसके परिणाम हमें ही भुगतने पड़ेंगे। चार्ल्स डार्विन का अनुवांशिकता का सिद्धांत भी तो यही बताता है। एलन वॉट्स के अनुसार परिवर्तन को सार्थक रूप से समझने का एकमात्र तरीका है उसमें डूब जाना, उसके साथ आगे बढ़ना और नृत्य में शामिल होना।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आलेख सुश्री वंदना सिन्हा का था। यह आकाशवाणी रायपुर है, सुबह के 6:35 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान,
2: एपिसोड नंबर 223।

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्यावासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदरपूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे, स्वर सुरेश वाडकर का था और आकाशवाणी की इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए बीज उपचार के महत्व विषय पर डॉक्टर ईश्वरी साहू द्वारा दी गई जानकारी।
1: संगवारी हो, वर्तमान में अभी धान की बुवाई लगभग चालू हो चुके है और आने वाला समय में काफी गति पकड़ना है, तो ये माँ बीज उपचार के का महत्व है ये संबंधित चर्चा जानकारी देवर मैं उपस्थित हूँ। हमार लड़का के जीवन माँ जौन टीका के महत्व है, वही महत्व हमार बीज माँ या हमार फसल माँ बीज उपचार के महत्व है। अब बात आते कि हमला बीजोपचार करना कैसे। संगवारी हो, लगभग 3 प्रमुख विधि से हमर छत्तीसगढ़ में धान बीज के बुआई होते। पहली होते कतार बोनी या खुर्रा बोनी, सीधा छिड़क के जोन बोथन तो वो, दूसरा रोपा और तीसरा लाई चिपी। तो संगवारी हो, जो खुर्रा बोनी या लाइन कतार बोनी है वो कर लिए, पहली मैं आप लोग बीज उपचार की विधि बताता हूँ। आप सबसे पहली 17% नमक घोल लेना है। इकर लिए 17 किलो नमक ला 100 लीटर पानी में आपला घोल देना है। घोले के बाद जो बीज आपके पास है इसमें कोई भी प्रकार के करगा मत रहा, ऐसे बीज ला आपला वो पानी में डुबाना है। उमा संगवारी हो, कीड़ा से प्रभावित या बीमारी से प्रभावित जतका हल्का दाना रही वो फल जही ओला आपला इकट्ठा करके फेंक देना है। पानी आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो ये पानी ला छान के अलग कर लेना है, बीज ला अलग कर देना है। ये बीज ला अलग करे के बाद आपला लगभग 3 बार इला शुद्ध पानी में या अपन तरिया के पानी में धोना है, बढ़िया जर पानी में धोना है ताकि नमक के कोई भी कण आपके बीज में झर रहा है। एकर बाद इला हवादार जगह सुखा दू, हवादार जगह सुखा हो तो ये है संगवारी हो आपला शुद्ध बीज प्राप्त करे के तरीका। ये तरीका से आपला जो शुद्ध बीज मिली ओकर अंकुरन जो उन्हें लगभग 90% से ज़्यादा रही। एकर बाद ये हल्का जब नमी रही हवादार जगह में तब ये माँ आपला लगभग 4 प्रकार के कल्चर लेने हैं। ये माँ आपके एजो स्पिरिलम जो आपके नाइट्रोजन खाद लग होल थे युकर जीवाणुरी थे, दूसरा PSB जो आपके राखड़ या DAP खाद लग होल थे ओकर जीवाणुरी थे, तीसरा KSB जो ना आपके पोटास खाद लग होल थे ओकर जीवाणु होते, और चौथा ZSB जे आपके

0: खाद लघोलते ओकर जीवाणु रिथे। एक बीज के लिए अधिकतम 5 से 10 ml ये चारों प्रकार के जैविक खाद के कल्चर ला लेना है और आप ला एक में मिला के लगभग पौधा में धान जो बीज है आपके ओकर ऊपर आप ला खमोस के अच्छा से मिला देना है। फिर इला हवादार जगह में 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आप ला इमा एक बावस्टीन करके फंजीसाइड आवत हुई जानत हुआ आप मन या आपके सुडोमोनास फ्लोरेंसिस के जो दया थे ओकर 5 से 10 ml या बावस्टीन के 2 से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए आप ला लेना है और इला वही प्रकार से पाउडर लछिड़क के या आपके सुडोमोनास के जो घोल है वो लछिड़क के वापस मिला के हवादार जगह में रख देना है। संगवारी हो ये तरीका से आपके बीज आप ला कतार बोनी करे बर और आपके सूखा खुर्रा बोनी छिड़क के बोए बर ये तैयार है। संगवारी हो जहाँ तक संभव हो बरसात में आसान तो नहीं है लेकिन अगर तेज धूप हो तो प्रयास करना है आप ला थोड़ा रुक के 2 बजे के बाद बोनी करना है ताकि आप ला अच्छा स्वस्थ पौधा मिले। और दूसरा हो लाई चेपी की विधि, लाई चेपी की विधि के लिए भी लगभग सेम विधि है। आप ला बीज ला भिगो के अंकुरित करना है। अंकुरित करे के बाद जब हम पीका आज ही तो वही विधि जतका विधि बताऊँ वो विधि से बीज ला आप ला उपचारित करके आप ला अपन खेत में बुआई करना है। तीसरा रोपा विधि, रोपा विधि में आप ला जतका प्रकार के बताऊँ ये कल्चर के उपयोग बीज माँ और बीज के बाद जहाँ तक संभव हुए आप ला थरहा में करना है। थरहा में करे समय एक चीज और कर सकता हो आप जतका प्रकार के कल्चर बताया हो ओकर अलावा आप जो उन्हें 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपके जो नैनो DAP है ओला भी आप मिक्स कर सकते हो। एकर से आपला स्वस्थ और बढ़िया थरहा मिली जेकर से आपला बहुत अच्छा पौधा मिली।
1: कृषि चर्चा में बीज उपचार के महत्व विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ईश्वरी साहू। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स कैन सुनेगा रात 8:30 पर जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का गाया राग मेघ और राग बरवा। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 7:05 पर पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइया में सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ के खेत किसान और साहित्यकार विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा। कहानी नोनी के पांख में कहानीकार होंगे श्री शेष नारायण गुप्ता। साथ ही इसमें आप सुनेंगे श्रीमती मधु तिवारी का कविता पाठ।

लघु नाटिका रंग तरंग में सुबह 9 बजे आप सुनेंगे प्रहसन हाय हाय, लेखक श्री के एल यादव और निर्देशक चंद्र प्रभा भटनागर। सुबह 10 बजे समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर का। समूह गान शिक्षा में दिन के 11:05 पर आज सुनिएगा उड़िया भाषा के गीत। रचनाकार होंगे KC पाणिग्रही। दिन के 11:30 पर पेश करेंगे सदाबहार नगमे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 पर आप मन के गीत। महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में दोपहर 1:30 पर आज के गोट का विषय होगा जंगल की सुरक्षा जीवन की रक्षा। साथ ही सुनिएगा कहानी नंदनी। कहानीकार होंगी डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर और कामकाज की बातों में चर्चा के विषय होंगे जल के संरक्षण ला व्यवहार मा लावव, बरसात मा भाजी खावत राखव सावधानी और स्वरोजगार ले स्वालंबन।

शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में आज अपन गोट का विषय होगा अनुशासन के शुरुआत खुद ले कराओ, और होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। उड़ान ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:21 पर किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा खरीफ माँ फसल चक्र अपनावा श्री अन्न मिलेट लगावन, और हेलो किसान वाणी में बरसात के मौसम में आवारा पशुओं का प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर पदम चंद जैन, संचालन निधि शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। धरती की पुकार ये रूपक सुनिएगा रात 9:30 पर, लेखक और प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का समय होगा रात 10 बजे, और श्रोताओं चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। तो श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, सुबह के 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, पहले संस्कृत फिर हिंदी में।

मुहम्मद् बिन् ईसा अल् खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचारमेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीयसहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमन्त्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीयदेशानां चतुर्देशीयप्रवासस्य द्वितीयचरणे बहरीन् नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन् देशे निवसद्भिः प्रवासीभारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्यमहाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचण्ड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। आगामिदिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड आंतरिक कर्नाटक मध्यप्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्रप्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये

0: ಆಂತರಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ವಿದರ್ಭ, ಉಪಹಿಮಾಲಯಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯು ಪ್ರಚಂಡ ವೃಷ್ಟಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಭಾಗೇನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನಿತಂ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪೇಷು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶೇ ಗಾಂಗೇಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗ ಪ್ರದೇಶೇ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶೇ ಅಸಮ ರಾಜ್ಯೇ ಮೇಘಾಲಯೇ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢೇ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡೇ ಮಣಿಪುರೇ ಮಿಜೋರಂ ರಾಜ್ಯೇ ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯೇ ಚ ಅಗ್ರಿಮೇಷು ತ್ರಿಷು ಚತುರ್ಷು ದಿನೇಷು ಮೇಘಗರ್ಜನೇನ ಸಹ ವಿದ್ಯುದ್ಯೋತನಂ ಝಂಝಾವಾತಃ ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತ್ಯಪಿ ವಿಭಾಗೇನೋಕ್ತಂ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಯಾಂ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶೇನ ಗತರಾತ್ರೌ ಡಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಕ್ರೀಡಾಯಾಂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ 1-0 ಇತ್ಯಂಕಾಂತರಾಲಿನ ಪರಾಜಿತ್ಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರೀಡಾಯಾಃ ಪ್ರಾಗುಪಾಂತ್ಯಚಕ್ರೆ ಸ್ಥಾನಂ ಸುರಕ್ಷಿತಂ. ಸ್ಪೇನ್ ಇದಾನಿಂ ಶುಕ್ರವಾಸರೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೆ USA ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಾ ದೇಶಂ ಸಮ್ಮುಖೀಕರಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಾರ್ತಾಃ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया. श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है. इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें, इसको दोबारा सुन लें. इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे. प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा. इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है. एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की. डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे. यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है. ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं. चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है. नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी. इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं.
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई. उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है. हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं. किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है.
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा. जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे. कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे. इस अवसर पर

0: जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं नमस्कार। तमाम सुनने वालों का कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में करते हैं हम स्वागत। और अगले 55 मिनट तक का सफर आप तय करेंगे मेरे यानी दीपा के साथ। कुदरत जब मुस्कुराती है तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। भंवरा फूलों पर बैठकर अपनी धुन गुनगुनाता है। कोयल मीठे सुर छेड़ती है। पपीहा अपनी पुकार सुनाता है। हवाएं पेड़ों की शाखों से सरगम छेड़ती है और नदियां अपनी लहरों पर गीत लिखती चली जाती है। श्रोताओं सच तो ये है कि संसार में हर पल कोई न कोई संगीत जन्म ले रहा होता है। सृष्टि के कण कण में बसा है संगीत।

मधुमति, देवदास, गंगा जमुना, राम और श्याम, पैगाम जैसी कालजयी फिल्मों तक पहुंचा। उनकी आंखें बोलती थी, उनकी खामोशी भी संवाद बन जाती थी। दर्द को उन्होंने जिस सच्चाई से पर्दे पर जिया, उसी ने दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग बना दिया। और आज भी कई अभिनेता उनके अभिनय से सीख लेते हैं। 1960 की ऐतिहासिक फिल्म मुगल-ए-आज़म में दिलीप कुमार ने सलीम का किरदार बखूबी निभाया और अभिनेत्री मधुबाला के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दुनिया का दिल जीत लिया। उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कोहिनूर, दिल दिया दर्द लिया, लीडर, गोपी, 1980 की क्रांति, शक्ति, कर्मा, सौदागर, केला के साथ ही उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। 8 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे सम्मान उनके नाम रहे। लेकिन उनके लिए उनका सबसे बड़ा सम्मान दर्शकों का वो अटूट प्रेम था जो उन्हें करोड़ों दर्शकों के दिलों से मिला और आज भी बरकरार है। 7 जुलाई सन 2021 को बीमारी के चलते वे इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन श्रोताओं, कुछ शख्सियतें कभी रुखसत नहीं होती। वे अपने व्यक्तित्व, अपनी अदाकारी और अपने किरदार के जरिए लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। श्रोताओं, इतने कम शब्दों में उनके लिए कुछ भी कहना जाहिर है बहुत कम होगा। तो आइए भारतीय सिनेमा के इस कोहिनूर को नमन करते हैं और सुनते हैं दिलीप कुमार की अभिनीत फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। ये वीर किस मिट्टी के बने होते हैं, इन्हें डर नहीं लगता। जान किसी और की खतरे में होती है, सीना ये अपना आगे कर देते हैं। गजब के दीवाने होते हैं ये वीर। आंच माटी पर आती है, सींच देते हैं अपने लहू से। भारतीय सैन्य इतिहास के पन्नों में कुछ ही नाम परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह चमकते हैं। आज कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान का दिन है, जिनकी वीरता करगिल की बर्फीली चोटियों में गूंजी और जिनके अमर शब्द ये दिल मांगे मोर ने पूरे राष्ट्र की भावना को समेट लिया। हिमालय की

में पले बड़े विक्रम बचपन से ही साहसी और निडर थे। 1996 में भारतीय मिलिट्री अकादमी देहरादून में उनका चयन हुआ। 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में कई छोटे ऑपरेशंस का नेतृत्व किया। 1999 की गर्मियों में भारतीय सेना ने पाया कि दुश्मन सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार कर ली है, घुसपैठियों ने रणनीतिक पर्वत चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन शुरू किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा द्रास सेक्टर पहुंचे। बर्फीली हवाएं, पतली हवा और खतरनाक भूमि मिशन 0.5140 17,000 फुट की ऊंचाई पर दुश्मन ने मजबूत किलेबंदी की थी। 20 जून 1999 की रात को कैप्टन बत्रा ने साहसी हमले का नेतृत्व किया। भारी गोलीबारी के बावजूद आगे बढ़े और दुश्मनों को धूल चटाई और उनके कई सैनिकों को मार गिराया और 0.5140 पर तिरंगा लहराने लगा। इस विजय के बाद रेडियो पर कैप्टन बत्रा ने कहा, ये दिल मांगे मोर। उनकी इस वीरता के कारण उन्हें शहंशेर शाह कहा गया, जिस नाम से दुश्मन भी घबराते थे। यहां आपको बता दे कि वर्ष 2021 में विक्रम बत्रा पर फिल्म बनी है कैप्टन शेर शाह। कैप्टन बत्रा ने 7 जुलाई 1999 को अंतिम युद्ध में अपने जवानों के साथ 0.4875 पहुंचे, जहां दुश्मनों के साथ जबरदस्त घमासान हुआ। इस दौरान वे एक घायल साथी अधिकारी को बचाने के लिए आगे बढ़े। गोलियों की बौछार के बीच साथी को सुरक्षित करते हुए उन्होंने अपने प्राण मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिए और भारत ने अपना वीर सपूत खो दिया। 24 वर्ष के कैप्टन विक्रम बत्रा, ये नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्चे वीर कभी नहीं मरते, वे राष्ट्र की आत्मा में हमेशा जीवित रहते हैं। अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के प्रतीक हमारे देश के ऐसे वीर जांबाजों को उनके परिवारजनों के संघर्ष और बलिदान को शत शत नमन। हिंदुस्तान के ऐसे शेर को हमारा सलाम है।

श्रोताओं, आसमान को छूना कभी सपना था, लेकिन आज भारत इसमें अपनी नई पहचान बना रहा है। विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता के संगम से अब देश का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। ये केवल एक रॉकेट की उड़ान नहीं, बल्कि नए भारत की ऊंची उड़ान का प्रतीक है। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपने पहले परीक्षण मिशन आगमन के लिए तैयार है। हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने अपनी लॉन्च विंडो 12 जुलाई से 4 अगस्त तक घोषित की है। सफल प्रक्षेपण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में और मजबूती से अपनी जगह बनाएगा, जहां निजी कंपनियां भी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखती है। करीब 7 मंजिला ऊंचा विक्रम 1 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जरूरत के अनुसार तय समय पर उपग्रहों को उनकी इच्छित कक्षा में पहुंचाने में सक्षम होगा। इससे खेती, मौसम पूर्वानुमान, संचार, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की 6G जैसी सेवाओं को नई गति मिलेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में स्काई रूट ने विक्रम एस के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत की निजी अंतरिक्ष युग की शुरुआत की। अब विक्रम 1 का मिशन केवल तकनीक उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में मजबूत होती भागीदारी का प्रतीक है। भारत की इस नई उड़ान के सफल होने की कामना के साथ भारत

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं, अब छत्तीसगढ़ के रायपुर की सड़कों पर दौड़ने वाले ई रिक्शा और ऑटो सिर्फ सवारी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी पहचान भी साथ लेकर चलेंगे। मोबाइल पर एक स्कैन और चालक की पूरी जानकारी आपके सामने होगी। रायपुर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हो रही है। यातायात पुलिस ने 1 से 7 जुलाई तक शहर के सभी पंजीकृत ई रिक्शा

और ऑटो पर निशुल्क क्यूआर कोड लगाएगी। क्यूआर कोड स्कैन करते ही चालक और वाहन से जुड़ी आवश्यक जानकारियां तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। इससे वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, पहचान आसान होगी और यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए यातायात मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों और क्यूआरटी सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। यातायात पुलिस ने पंजीकृत ई रिक्शा और ऑटो चालकों से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। जिन चालकों का पंजीयन पहले से हो चुका है, उन्हें संबंधित थाने में बुलाकर वाहन का सत्यापन किया जाएगा और निशुल्क क्यूआर कोड लगाया जाएगा। यानी अब रायपुर में ई रिक्शा और ऑटो की पहचान भी डिजिटल होगी, जिससे सफर होगा अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और भरोसेमंद।

श्रोताओं, बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अब एक करियर संबंधी सूचना। बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के 789 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। आयु सीमा अलग अलग पदों के अनुसार 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन फीस सामान्य और अन्य वर्गों के लिए ₹850, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ₹175 तय की गई है। बैंक ऑफ इंडिया में चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू देना होगा। इस भर्ती से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.bankofindia.bank.in। आपको वेबसाइट एक बार फिर बता दें, www.bankofindia.bank.in। तो इस जानकारी के बाद चलिए बढ़ते हैं आगे गीत संगीत की ओर।

श्रोताओं, अभी हमने आपको बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के 779 पदों की भर्ती की जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि आप सफलता की उड़ान उड़ सके। तो इसी बात पे अब बात करते हैं उड़ते हुए पक्षियों की। बरसात की दस्तक के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर के धान के खेतों में एक ऐसा मेहमान फिर लौट आया है जो पूरे साल लोगों की नज़रों से ओझल रहता है। खेतों में इसकी एक झलक मिल जाए तो पक्षी प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता। ये है कपकपिया। जी हाँ, कपकपिया। खेती किसानी का काम शुरू होते ही बस्तर के खेतों में वाटर कॉक, जिसे स्थानीय हल्बी भत्री बोली में कपकपिया कहा जाता है, फिर दिखाई देने लगे हैं। ये एक दुर्लभ और बेहद एकांत प्रिय पक्षी है जो बरसात की शुरुआत में ही खुले खेतों में नजर आते हैं और बाकी समय घनी घास के बीच छुपे रहते हैं। नर वाटरकॉक पक्षी काले और भूरे रंग के होते हैं। इसके सिर पर एक मांसल उभार और चोंच पीले रंग की होती है। मादा अमूमन शांत रहती है और भूरे कत्थई रंग की होती है। प्रजनन काल में नर की आवाज़ ऐसी होती है जैसे पानी की बोतल उलटकर खाली की जा रही हो, जो इसकी सबसे अनोखी पहचान मानी जाती है। कीड़े, छोटे घोंगे और छोटे मेंढक इनका मुख्य भोजन है। बरसात के बाद ये फिर घनी वनस्पतियों में छिप जाते हैं और साल भर बहुत कम दिखाई देते हैं। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार ग्रेलिक्रेक्स वंश का इकलौता सदस्य होने की वजह से इसे संरक्षण की ज़रूरत है। यानी मानसून की हरियाली के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर के खेतों में

एक बार फिर लौट आया है प्रकृति का ये दुर्लभ और रहस्यमयी मेहमान कपकपिया। श्रोताओं, पक्षियों की बात चलती है तो बड़ा मन करता है कि काश इस खूबसूरत मौसम में हम भी बादलों की बाहों में अपने पर फैलाकर उड़कर पहुंच जाए अपने प्रिय के पास।

श्रोताओं, बारिश सिर्फ धरती को नहीं भिगोती बल्कि यादों, रिश्तों और दिल के कोनों को भी तर कर जाती है। लेकिन श्रोताओं, इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है। बारिश के दिनों में घर के खान पान में कुछ छोटे बदलाव अपना कर कई मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करें, बासी भोजन खुले में बिकने

वाले खाद्य पदार्थ और कटे हुए फल खाने से बचे। पीने के लिए उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही उपयोग करें। भोजन में हरी सब्जियां, दालें, मौसमी फल, अदरक, तुलसी, हल्दी जैसे प्राकृतिक तत्वों को शामिल करें, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। बारिश के दौरान यदि बाहर जाए तो छाता, रेनकोट का उपयोग करें और जल भराव वाले स्थानों से हमेशा दूर रहे। श्रोताओं, वाहन चलाते हुए हमेशा सावधानी बरतें। श्रोताओं, थोड़ी सी सावधानी, संतुलित आहार और स्वच्छता अपनाकर हम वर्षा ऋतु का भरपूर आनंद लेते हुए स्वयं और अपने परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं, है ना? तो श्रोताओं, बरसात की सावधानियों के साथ ही सुनते हैं ये रिमझिम रिमझिम सा गीत।

तो श्रोताओं, आज नमस्कार रायपुर का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त दीपा के साथ। तो अब कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
5: India and Indonesia are very close and strategic partners.
6: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

0: डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं।

0: आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6th स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।

0: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू कोती ले। श्रोता साथी हो, आज के कार्यक्रम में आप मन सुनवाथन छत्तीसगढ़ के खेत किसान और साहित्यकार ए विषय में वार्ता और वार्ताकार हमें डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा। नोनी के पाख ये कहानी आप मन सुनिया श्री शेष नारायण गुप्ता ले और कार्यक्रम के आखिर में आप मन ल सुनवाबो कविता पाठ श्रीमती मधु तिवारी ले। श्रोता साथी हो, आवा सबसे पहली आप मन ल सुनवा थावन एक वार्ता जेकर विषय है छत्तीसगढ़ के खेत किसान और साहित्यकार। वार्ताकार हावें डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा।
1: मोर भुइयां कार्यक्रम हा छत्तीसगढ़ के सबो लोक विधा ला जन जन मा बगराए के बहुत सुघर काम करत है। आज बात करबो हम खेत किसान और साहित्य। खेत किसान और साहित्य तीनों हमर संस्कार उन्नति परंपरा संस्कृति के धुरी होते। तीनों एक दूसर के पूरक होते। खेत हावे तो किसान है, किसान है तो खेत है, और खेत और किसान है तो साहित्य हावे। खेत हमर जिंदगी ला जिए के आसरा देते, अन्न उपजा के देते। जिंदगी है तो सृष्टि है, अगर खेत खत्म तो जिंदगी खत्म, सृष्टि खत्म, ये परम सत्य हावे। किसान अपन जांगा टोर के खेती करते, किसिम किसिम के अन्न उपजाते, खुद जीते और दूसर ल जिए के भरोसा देते। अब गोट बात छत्तीसगढ़ के खेती के करतन, तो पूरा देश में छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कही के सम्मान दिए जाते। हमर माटी उपजाऊ हावे, हमर नदिया जलवायु हमर अनुसार हेवे, हमर किसान मन मेहनती है, यही हमर राज के पहचान हवे। खेती हमर जीवन के मुख्य स्रोत है, हमर आर्थिक आधार हवे। हमर खेत हमर माटी लोक जीवन के रक्षक है, त लोक संस्कृति और लोक गीत के जन्मदाता घलो हवे। नवा रचनाकार जब भी गीत लिखते तो काखर ऊपर लिखते, अपन खेत अपन माटी खेत खार नरवा नदिया रुख राई पशु पक्षी अपन गांव ऊपर लिखते। ओला प्रेरणा कहाँ ले मिलते, खेत ले माटी ले। हमर खेत केवल अन्न ही नहीं उपजा रहे, बल्कि लोकगीत कहावत कहनी संवेदना और संस्कार भी ले जन्म देते। और किसान, किसान हमर धरती के भगवान ही। कैसे किसान अपन मेहनत साहस धैर्य संस्कार अपन परंपरा और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करते, तभे तो भगवान के दर्जा दिए गए हावे। और तभे तो कवि गाते ना कि धन धन रे मोर किसान, मैं तो तोला जाने भैया, मैं तो तोला माने भैया, ए भुइयां के भगवान, धन धन रे मोर किसान। खेती में चार मासी काम नहीं हुए, बल्कि बारह मासी काम होते। यही मेरन काम करत करत लोक भाव लोक गीत की उत्पत्ति होते। खेत में काम करत करत माटी व सम्मान उत्पन्न हो जाते, ओकर संग मया हो जाते, तभे तो जन कवि लिखते

कि मुर रग रग माहे दया मया मैं महाभारत के गीतायाओं मुर हाड़ा बजुर बरोबर हे मैं वीर दधीच दानी आऊँ रे मैं छत्तीसगढ़ के माटी आऊँ मैं छत्तीसगढ़ के माटी आऊँ। आऊ जनमन से अपील घलो करथे कि मुर राजा दुलरवा बेटा तै नंग रिहा बन जाबे पानी पियाए बर धरती ला तै बदरिया बन जाबे और हरियर सबके मन ल रखे बर लहरिया बन जाबे तै नगरिया बन जाबे। छत्तीसगढ़ के किसान मन धान के खेती ज़्यादा करते हैं, फिर अब गेहूँ दलहन तिलहन मक्का और साग सालन पशुपालन मछली पालन कीट पालन के भी खेती करत हवे। ये सब खेती वर्षा के आधार में होते तेकरे कारण किसान के पूरा जिंदगी प्रकृति से गहराई से जुड़े होते। खेत के जतनई से लेके बिजहा बोवई पौधा के जागना तैयार होना ओकर कटई मिसई जतनई ये सब्बो चरण है ना लोक परब कस होते। यही काम बूता के बखत में हमर लोकगीत के राजा ददरिया के जन्म होते। धान बोवई खेत जोताई निंदई पानी पलोई दवई छींचत धान लुवई मिसई बेरा में मन के भाव ह जुबान में गीत के रूप में आ जाते। ए बखत बेरा के भावला कवि मन अपन अपन अनुसार बहुत सुंदर लिखे पड़े हावे। कुछ मैं आप मन ला सुनात हूँ कि आगू नगरिया के बैला हावे लाल आगू नगरिया के बैला हावे लाल ज्यादा माया झन करबे हो जाही जी के काल। तो दूसर कवि लिखते कि बटकी में बासी और चुटकी में नून मैं गावत हूँ ददरिया तय कांदे के सुन। तो तीसरैया लिखते कि बागे बगीचा दिखे ल हरियर झुलुप वाला नहीं दिखे बदे हो नरियर। ते झनऊ लिखते कि पीपर के पाना डोलत नहीं है का होगे टूरी है बोलत नहीं है। ऐसना सब लोकगीत के जन्म खेत कार में होते। प्रकृति सुंदर होते ओकर सौंदौर्य दर्शनी और पूजनी होते। तेखरे से तीर किसान किसानिन के ददरिया में जुवानी प्रेम प्यार सिगार योग वियोग के वर्णन होते। यही अर्थो साहित्य आए जिहर मन के भावला खोल के बयान कर देते वही तो साहित्य है। और खेत के ऊपर कथा कहानी तक लिखे गए हैं। हमार छत्तीसगढ़ में खेत ल केवल अन्न उपजाए के साधन नहीं माने जाए बल्कि खेत जिंदगी मेहनत धीरज आशा संस्कृति संस्कार उपहार के प्रतीक माने जाते। तो वही किसान के मेहनत सरलता सहजता दया विनम्रता और प्रकृति से लगाव सम्मान मानवीय संवेदना से भरे साहित्य की उत्पत्ति कर देते। एक सेतिर यहाँ के लोकगीत कथा कहानी कविता में खेती हरियाली माटी नरवा नदिया और किसान के जांगा टोर मेहनत के जम के वर्णन होते। गीत मन में जीवंत चित्रण मिलते। खेती बर पानी ला मोती के समान माने गए हैं। तभे तो जब बादल उमड़ घुमड़ के बरसते तो कवि कही थे झिमिर झिमिर बरसे पानी देखो रे संगी देखो रे साथी मोती झरे कपड़ा छानी झिमिर झिमिर बरसे पानी। और ये भी कही थे कि घानी मुनि घोर दे पानी दमोर दे और छत्तीसगढ़ भुइया ला दूध दही में बोर दे। छत्तीसगढ़ के साहित्य किसान और ओखर गांव के जीवन शैली के सजीव प्रकाशन करते जस के तस बयान करते। किसान के संघर्ष जुझारूपनला अपन लेखन में प्रमुख स्थान लेखक मन दिए हावे। स्वर्गीय हरि ठाकुर लक्ष्मण मस्तूरिया पवन दीवान कोदूराम दलित पालेश्वर शर्मा श्यामलाल चतुर्वेदी नारायण लाल परमार नरेंद्र देव वर्मा रामेश्वर वैष्णव रामेश्वर शर्मा पी सी लाल यादव दानेश्वर शर्मा संतोष कश्यप जैसे मूर्धन्य साहित्यकार मन खेती किसानी के सुख दुखला प्रमुखता से अपन रचना में उकेरे हावे। लोकमंच के कलाकार मन गांव के गवईपन ला लोक नृत्य नाटक के माध्यम से जन जन तक पहुँचाए हावे। त नाचा कलाकार मन गांव के रहैया मन के पीरा ला व्यंग शैली में उजागर करे हावे। छत्तीसगढ़ के किसान की जिंदगी खुशहाल ही नहीं रहे कभू कभू दुख भरे होते। जब पानी नहीं गिरे तो मुड़ धर के बैठ जाते तब कवि के कलम चलते कि लीम के डंगाली चढ़े है करेला के नार लीम के डंगाली चढ़े है करेला के नार ठगवा कस पानी है ठगे है मुड़ धर बैठे किसान ए विधाता गमोर कैसे बचाबो परान संगवारी गमोर कैसे बचाबो परान। दूसरा तरफ किसान के सिधवापन

ओखर शोषण ऊपर घलो कवि मन चुप नहीं रहें और मुखर होके बोलते कि नून बासी रोटी खाके लहू पसीना बहा के गरीब कमैया कहाए तोर कमाई में बन गए चारो धाम अढ़ा मोर किसान। रोज ओकर भाषण सुन के सोचे तय भोला राम तोर अड़बड़ है मान तय जिताए वो बन गए भगवान अढ़ा मोर किसान अढ़ा मोर किसान। आप सब जानत हो कि लॉकडाउन के बखत में सरी देश ला भात दार कौन परोसिस कौन पुरोइस हमर किसान और केवल किसान। सरी देश के मनखे मन के जिंदगी के बचोइया हमर किसान हमर भगवान है। उनकर बन न तो पटाखा फूटिस न ताली बजिस तभो ले मुड़ी नवा के देश सेवा में अपन जीवन ल होम दिस। सही बात है कि सियासत दानमान ओखर सुखद भविष्य पक्का विचार कभू नहीं करिन। तभे तो कोदूराम दलित जी कहिन कि जाड़ घाम बरखा के दुख सुख सहे किसान बिचारा अदाई ददा बन के डारे सबके मुँह माचारा पहने ओढ़े कमरा खुमरी अ चिरहा असन लंगोटी अ पिए पसिया पेज खाए कनकी कोढ़ा की रोटी। छत्तीसगढ़ के खेती किसानी और किसान के पीराला संवेदनशील मनखे कवि लेखक साहित्य मनीषी पत्रकार मन ही महसूस कर सकत है। वही बन के कलम के धार किसान मन के हक में चलते ओ मन किसान ला प्रेरित भी करते कि उज्जर उज्जर घर कुरिया अंगनाला सुघर बनाना है प्राण प्यारा छत्तीसगढ़ ला बगिया सही सजाना है कि धान राहेर उर्दा सोया सरसों गहूँ उपजाबो अ किसिम किसिम के बिजहा भर माटी ला सरसाबो रहन चमास उघरा अब कुर्ता नवा पहिराना है प्राण प्यारा छत्तीसगढ़ ला बगिया सही सजाना है। ऐसा प्रेरक रचना ले किसान साथी मन प्रेरित घलो होते और खेती के नवा नवा तकनीक अजमाते। तभे कवि कहते कि सूजी ले साइबर तक और तरिया ले बांधा तक हमर राज ला सिरजे पर विश्वकर्मा बन जावाओ रे धान कटोरा रहिस तैहा अब बनही रतन के थारी अब पुरखौती गुमान छोड़ के उन्नत के जिहा जुड़ावाओ रे विश्वकर्मा बन जावाओ रे। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी के संगे संग बारामासी तिहार घलो चलत रही थे। ये तिहार मन के सोच संबंध खेत और ओकर उत्पादन से जुड़े होते। पानी अच्छा गिरीस तब अच्छा फसल तो किसान की दीवारी ही दीवारी और कहूँ अकाल पड़ गए तो भूखमरी और बेगारी। फिर कुछ हो है, किसान अपन खेत ला नहीं छोड़े और अपन मन के भाव ला भी नहीं छोड़े। आषाढ़ से लेके फागुन बैसाख तक किसान की गतिविधि रोमांच रोमांस के वर्णन छत्तीसगढ़ी गीतकार मन करते तो कहानीकार मन अपन कथा में प्रमुख पात्र किसान ला बनाते और सकारात्मक पहल करते। सावन के महीना सब ला भाते तो किसान किसे बाँची वहू आनंद उठाते अपन किसानिन के सुरता में गाते पुरवैया सनन सनन झिमिर झिमिर गिरे पानी अजोड़ी के रंग मरंगे सांवरी रचाए मेहंदी ऊपर ले बरसा होवाए पानी छमर छम छम छम अब बाजत हे पैरी सहीन छनर छनर छन छन छन नगरिया जोते तन तन देख सावन के बूंदी अजोड़ी के रंग मरंगे सांवरी रचाए मेहंदी। किसान के जिंदगी ऊपर कतको गायक मन गा के अमर हो गए जिसे केदार यादव मिथिलेश साहू ममता चंद्राकर कविता वासनिक लक्ष्मण मस्तूरिया बैतल राम साहू पंचराम मिर्जा गोरेलाल बर्मन शेख हुसैन कुलवंतीन बाई रेखा दीवार बहुत अकन नाम है। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार मल्ला उभारे में दाऊ रामचंद देशमुख दाऊ मंदरा जी खुमान साव दीपक चंद्राकर जिसे मनीषी मन के जब्बर हाथ है। छत्तीसगढ़ी कहानी के रचनाकार हीरा लाल काव्य उपाध्याय सुंदर लाल शर्मा लोचन प्रसाद पांडे परदेसी राम वर्मा निरूपमा शर्मा अशोक बंजारा मंगत रविंद्र रामनाथ साहू हर प्रसाद नीडर मन के रचना में किसान और ओखर जिगरी संगी खेत ओखर मितानी ओखर जिंदगानी के जीवन दृश्य देखे पर मिलते। आखिर मस्त सबोला सकेल के कह सकथन कि छत्तीसगढ़ में खेत किसान और साहित्य एक दूसर के संगी संगवारी आए तीनों एक दूसर के धरखन हावे। खेत किसान के जिए के साधन हावे किसान राज के समृद्धि के आधार हावे तो साहित्यकार एमन के जीवन संघर्ष के गवाही हावे। छेवरहा

0: मैं कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ हा खेत किसान और साहित्य के दम से समृद्ध बनी और बनी खचित बनी। जय जोहार, नमस्कार।
1: छत्तीसगढ़ के खेत किसान और साहित्यकार ए विषय में अभी आप मन वार्ता सुनत रहे हो डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा ले। कार्यक्रम में आगू बढ़त हवन और आप मन लो सुनवात हवन कहानी जेकर शीर्षक हवे नोनी के पाक। और ये कहानी आप मन लो सुनवात है श्री शेष नारायण गुप्ता।
2: एक नानकुन गांव करंजी में सुमरौतीन बाई नाम के माई लोगन रहिस और अपन 16 साल के बेटी पुत्री संग जीवन काटत रहिस। पुत्री 8वीं तक पढ़े रहिस, फिर गांव के लोग कहिन अब नोनी ला घर के काम सिखा, पढ़ लिख के का करही, आखिर में तो चूल्हा चौका संभालना है, ओला घलो ससुराल जाना है, वहाँ सास ससुर देवर ननंद के सेवा करही, तभे ओका जिंदगी हर पहाही। सुमरौतीन के मनमा भी डर रहिस, गांव के सरपंच के बेटा के नज़र पुत्री ऊपर पड़ गए रहिस। वो कहत रही से भाई तोर बिटियाला हमार घर के पतो बना दे, पढ़ाई लिखाई के जरूरत नहीं है, मोर घर में आही तो राज करही। पुत्री हर रोज गांव के स्कूल के छत ला देखत रहिस, वहाँ आंगनबाड़ी के दीदी रमा सबो लइका मन ला पढ़ावत रहिस। एक दिन पुत्री रमा दीदी ला पूछिस, दीदी का मैं बड़का होके तोर जैसन बन सकत हूँ, महू पढ़ लिख के अपन जिंदगी ला संवारना चाहत हूँ। रमा दीदी मुस्काइस, काबर नहीं, तय मन तो ठान ले तो कसब हो सकत है। काल हमार गांव में स्व सहायता समूह के मीटिंग है, तोर दाई ला संग लेके आवे, समूह में सब्बो जन के संग बैठ के नवा नवा बात सीखी और अपन जिंदगी ला सुधारिया। मीटिंग में रमा दीदी समझाइस, सरकार बिटिया मन बर बहुत योजना चलावत है, हमर समूह के सब्बो बहनी मन बर अब अपन अपन काम करे के उपाय बतावत है, अब कोनो के आश्रित हमन नहीं रहन। सुमरौतीन के आँखी खुल गए, वो पुत्री के हाथ धर के कहिस, बिटिया ते पढ़, मैं तोर संग हूँ। बिटिया पढ़ते लिखते तो दोनों कुल मैके और ससुराल ला तार देते। गांव वाला हसीन, ते का कर ली, ए सरपंच धमकाइस, फिर सुमरौतीन डरे नहीं, वो समूह में जुड़ गए, लोन लेके दोना पत्तल बनाना सीखीस, पुत्री फिर ले स्कूल जाए लगीस, अब जिंदगी के गाड़ी अच्छा ल चले लगीस। 3 साल बाद पुत्री 10वीं पास कर लीस और सिलाई में भी होशियार हो गए, सुमिरिन के दोना पत्तल के काम चल निकरिस, अब वो गांव के और बाईमल भी काम सिखावत रहिस। दोना पत्तल बना के आसपास के गांव और शहर तक में होटल में पहुँचे लगीस, दोना पत्तल ले पर्यावरण के भी रक्षा होए लगीस। पेड़ के हर जिनिस हर जियत भर मनखे मन के संग चलते। एक दिन उही सरपंच के बेटा अपन मेहराऊ रूबर ब्लाउज सिलवाए आइस, पुत्री ला देख के ओकर सिर झुक गए। पुत्री कहिस, भैया नारी ला कमजोर मत समझ, मौका मिले तो वो सब कुछ कर सका थे। आज पुत्री गांव के स्कूल में सिखाई सिलाई सिखाते, सुमरौतीन के समूह में 30 ठन बाई मन जुड़ गए है, सबो अपन खाता में पैसा जमा करते। पुत्री के हिम्मत देख के गांव के और के बिटिया मन भी के मन में आस जगीस। रुकमणी सगुनी और छोटी बुधनी हर रोज पुत्री के सिलाई सेंटर में आवत रहीन, पुत्री उकरला मशीन सिलाना मशीन सिखाना नाप लेना और डिजाइन बनाना सिखावत रहीस। फिर गांव के कुछ बूढ़ा मन ले बात खटक गए। एक दिन पंचायत बैठीस, बैगा बाबा कहे, सुमरौतीन तोर बिटिया गांव के रीति रिवाज बिगाड़त है, लड़की मन अब घर के काम छोड़ के मशीन ठोकत है, ये हमार संस्कृति के खिलाफ है। सुमरौतीन अब डरने वाले नहीं रहीस, वो खड़े होके कहिस, बाबा संस्कृति के नाम ले हम कब तक बिटिया मन के पाँख लग काटत रहो, मोर आदमी के मरे ले 5 साल हो गए, अब मैं हाथ पर नहीं चला।

0: हाँ तो आज मैं और मोर बिटिया भा भीख मांगत रहतीन, काम करना का संस्कृति के खिलाफ है। रमा दीदी के साथ दे इस शासन की योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महतारी जतन योजना हमर बर ही तो बने हैं। बिटिया पढ़ी लिखी तभी तो गांव आगे बढ़ी। बात बढ़ गए, सरपंच के बेटा फिर से अड़ंगा डारिस और रात में पुत्री के सेंटर के ताला तोड़ दीस और सबो मशीन में माटी भर दीस। बयान होइस तो पुत्री देख के रो पड़ीस। गांव के बाई मन जब ये सुनीन तो पहली बार एकजुट हो गए। 30 ठन बाई मन लाठी लेके सरपंच के घर पहुँच गईन। सुमरौतीन गरज के कहिस, बहुत सहलेन, अब हमार बिटिया के कोनो आँख उठा के देखी तो हम चुप नहीं बैठबो। एक खबर कलेक्टर तक पहुँचीस, कलेक्टर मैडम खुद गांव आईन। पुत्री के काम देख के बहुत खुश हो गईन। उकर आदेश में पुत्री ला 5 लाख के अनुदान मिलीस। नया मशीन कपड़ा और पक्का कमरा भी बन गए। पुत्री और सब महिला मन खुशी ले झूम उठीन। 5 साल बाद आज करंजी गांव के नाम बदल गए हैं। अब लोग उहला नोनी के पाँख कथें, नोनी के पाँख के गांव कथें। पुत्री के सिलाई संगवारी केंद्र में 60 ठन बाई काम करते हैं। रुकमणी अब समूह के अध्यक्ष है। सगुनी ऑनलाइन आर्डर लेके ब्लाउज डिजाइन करते। छोटी बुधनी शहर में फैशन डिजाइन पढ़ते। नवा नवा फैशन सीख के गांव के महिला संगवारी मल्ल सिखाए लगीस। सुमरौतीन अब गांव के सरपंच है, पहली महिला सरपंच। वही पंचायत भवन में जहां कभू ओकर बेइज्जत होय रहीस, आज वो बिटिया मन के हक में फैसला सुनाते। गांव में एक पेड़ माँ के नाम योजना लागू करके हर गण में पेड़ लगाते। एकर अभियान वो छेड़ दे हवा। पिछले महीना हुई सरपंच के बेटा अपन बेटी लेके आए रहीस। हाथ जोड़ के कहीस, दाई मोर से गलती हो गई रहीस, मोर बेटी ला भी तोर जैसे बनाना चाहा था, इला अपन संग में रख और इहूल आगू बढ़ाओ। सुमरौतीन मुस्का के कहीस, बेटा देर आए दुरुस्त आए, बिटिया के पाँख कांटे वाला नहीं, उमन ला आसमान दिखाने वाला बन। अब जुन्ना जमाना गुजर गए, महिला मन भी पुरुष के कंधा ले कंधा मिला के चल सके, ये तैयार होना सबको ला जरूरी है। आज करंजी के हर घर में 1 ठन सिलाई मशीन है और हर नोनी के आँख में 1 ठन सपना। काबर कि एक सुमरौतीन के हिम्मत ले पूरा गांव के तकदीर बदल गए। गांव में पैसा बरसे लगे है और हर तरफ खुशहाली दिखते।
1: अभी आप मन श्री शेष नारायण गुप्ता ले कहानी सुनत रहा, जेकर शीर्षक रही सावे नोनी के पाख। कार्यक्रम में आगे बढ़त हन और आप मन ला सुनवात हन कविता पाठ श्रीमती मधु तिवारी ले।
2: मोर पहली रचना सुनिह, गमई गांव।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। इसके अंतर्गत सुनिए प्रसन्न हाय हाय। लेखक हैं श्री के.एल. यादव और निर्देशक चंद्रप्रभा भटनागर।

0: केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। इसके अंतर्गत सुनिए प्रहसन हाय हाय। लेखक हैं श्री के एल यादव और निर्देशक चंद्रप्रभा भटनागर।
1: कहाँ हो? अरे मैंने कहा भाई रजनी कहाँ हो?
2: हद हो गई शराफत की। मैं तार सप्तक में अलाप रहा हूँ और यहाँ कोई दाद देने वाला ही नहीं। पता नहीं ये माँ बेटे दोनों कहाँ अंतर्धान हो गए हैं।
1: कहाँ हो तुम जरा बोलो, यहाँ हम याद करते हैं।
3: बस बस अपनी ये बेसुरी आलाप बंद करो, नहीं तो
2: नहीं तो क्या मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे, यही कहना चाहती हो ना?
3: जी नहीं।
2: तो फिर
3: आपकी दादी अम्मा,
2: उनको क्या हुआ?
3: उनको तो हुआ कुछ नहीं, मगर कहीं उन्होंने ये सुन लिया कि तुम मेरा नाम लेकर इस तरह जोर जोर से पुकार रहे थे, तो हम दोनों को जरूर कुछ हो जाएगा।
2: मगर दादी अम्मा है कहाँ?
3: पूजा घर में।
2: तब फिर उनकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। और दूसरे वो इतनी जोर जोर से भजन आरती करती हैं कि उन्हें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं पड़ती। अरे हम लोगों की क्या सुनेंगी?
3: बस बस हम मतलब की बात पर सीधे उतर आओ, चीख चीख कर मेरा नहाना भी दूभर करती।
2: आई एम वेरी सॉरी।
3: सिर्फ मतलब की बात बोलो, मतलब की, क्योंकि काम ज्यादा है और समय।
2: बात नंबर एक, ये टीटू कहाँ गया है? सुबह से नहीं दिख रहा। बात नंबर दो, सब्जी में क्या क्या लाना है?
3: बस इतने से बात का महाभारत बना दिया। उत्तर नंबर एक, या तो वो दादी अम्मा के पास होगा या पड़ोस में, और उत्तर नंबर दो जो पसंद हो ले आना, मगर जल्दी, नहीं तो खाने में देरी की जिम्मेदारी मेरी नहीं।
2: वो तो ठीक है, मगर पैसे?
3: तो मुद्दा यहाँ अटका हुआ था। श्रीमान जी, सब्जी के पैसे तो कल शाम को ही आपने एडवांस में ले लिए थे।
2: अब आप ही देखिए श्रीमती जी, महंगाई इस कदर बढ़ गई है, अब भला बताइए इसमें मेरा क्या कसूर?
3: नहीं नहीं, कसूर तो मेरा है जो आपसे पैसे की बात छेड़ दी। ये लीजिए और ये थैला।
2: बस यही बात तो हमें पसंद है तुम्हारी, कि बात बेबात पर हाय हाय मचाना शुरू कर देती हो।
3: अगर ये बात मुझ में आई भी होगी तो इस घर में आने के बाद। अरे देखो देखो, दादी अम्मा की आरती खत्म हो रही है।
2: अच्छा अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। बाद
4: विकार मिटाओ पाप रो बहु देवाओ बहु बहु।
3: जी दादी अम्मा।
5: ले ये प्रसाद
3: लाइए।
5: अरे हाथ और नीचे रख, नहीं तो छू जाएगा।
3: मैं नहा धो चुकी हूँ माँ जी।
5: भाजी, क्या मुकेश भाजी ले आया है?
3: उफो, कहूँ माँ जी सुने भाजी, अभी तो वो बाजार गए हैं बाजार।
5: हाय हाय, गजब हो गया। टीचू,
3: क्या हुआ?
6: ए टीचू,
3: क्या हुआ माँ जी?
5: बाजी है, जब देखो मुझे परेशान किया करता है। टीटू,
3: क्या किया है टीटू ने?
5: अरे इस लड़के ने हमें इतना तंग कर दिया है कि अब घर छोड़कर तीरथी जाने का मन करने लगा।
3: आने दो उस पाजी को, पीट पीट कर उसे सीधा न कर दिया तो कहना। मगर उसने किया क्या है माँ जी, इतना तो बता दो।
5: अरे क्या नहीं किया, वो मेरी पूरी चाबियों का गुच्छा उठा ले गया है, कहीं उसने बक्से खोल डाले तो।
3: अरे दादी अम्मा, वो क्या जाने कि ताला कैसे खुलता है। हाँ, आपकी चाबी इधर उधर फेंक दे सो दूसरी बात है।
5: अरे तुम क्या जानो कि चीजें संभाल कर कैसे रखी जाती हैं? एक बित्ता भर का लड़का तो संभाल कर रख नहीं सकती, जब देखो तब कोई ना कोई उपद्रव किया करता है। अब देखो मेरी चाबी का गुच्छा लेकर ही चला गया कहीं।
3: माँ जी, माँ जी, कहीं आप पूजा घर में तो नहीं छोड़े?
5: क्या मैं सखिया गई हूँ? अरे मुझे सब याद रहता है। अरे हाँ राम, वो चाबी कहाँ गई?
3: अरे दादी अम्मा, ये धोती के खूंट में बांधकर आपने कमर में ये क्या चीज खास रखी है?
5: अरे ये तो सचमुच चाबी है।
3: दादी अम्मा, चाबी खोसे कमर में, खोजती घूमे शहर में, बेकार में हाय हाय मचाकर सारा घर सर पर उठा लिया और उस नादान बच्चे को झूठा इल्जाम लगाया।
5: मैंने पूछा, बहू पहले तूने क्यों नहीं बताया कि चाबी कमर में खोस कर मैंने रखी है? मैं खूब जानती हूँ ये सब तूने मुझे परेशान करने के लिए किया।
3: अरे दादी अम्मा, कुछ तो भगवान से डरो, क्यों झूठा इल्जाम मेरे सर पर मढ़ रही हो?
2: मैंने कदम रखा नहीं कि हाय हाय किच किच का मैच चालू। मैं जरा सुनूं कि आप लोगों ने ये सारा घर क्यों सर पर उठा रखा है।
3: दादी

0: अम्मा का कहना है कि उनकी चाबी टीटू उठा के ले गया, जबकि
1: घर में है वो पाजी।
0: नहीं
1: आने दो, आने दो उस पाजी को, एक एक हड्डी पसली एक एक कर दूंगा।
0: मगर क्यों?
1: क्योंकि उसने दादी अम्मा की चाबी को।
0: मुझे तो तरस आता है दादी अम्मा और उनके पोते जी पर।
1: तरस और मुझ पर?
0: जी हाँ, चाबी तो दादी अम्मा ने अपनी आंचल में बांधकर कमर में खोस रखी है।
2: तो तुमने बात मुझे पहले क्यों नहीं बतला दी?
0: आपने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया। खैर, सब्जी क्या लाए हो?
2: आलू और भंटा।
3: ए मुकेश, मैंने लाख बार कहा कि जो कुछ तुझे ऐसा वैसा खाना हो तो घर के बाहर खाया कर, भलाई अंडा लाने की घर में क्या जरूरत।
1: दादी अम्मा, दादी अम्मा, तुम भी बीच बीच में शब्दों को यूं घूर जाया करती हो कि बस मजा आ जाता है। मैं कहता हूँ भंटा और आप सुनती है अंडा।
3: देख ये फिसफिस अपनी जोरों से किया कर, मुझसे जो भी बात कहनी हो जरा साफ साफ कहा कर, समझा कि नहीं?
1: समझ गया दादी अम्मा, अच्छी तरह समझ गया।
3: अच्छा तो सुन, मेरे लिए दो धोतियां, थोड़ी सूजी और मेवा ला दे, कुछ लड्डू वड्डू बनाकर रख दूं रास्ते में खाने के लिए।
1: कौन से रास्ते में?
3: अरे मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ।
1: ठीक है ला दूंगा।
3: और सुन, रेल का टिकट भी।
1: कौन आ जाएगा?
3: अरे कौन आ जाएगा, मैं जाऊंगी अकेले।
1: ओ फिर घूंटा, समझ गया दादी अम्मा, समझ गया। आप ही जाएंगी और वो भी अकेले।
3: अच्छा बोल, बहू कहाँ है? बहू
1: रसोई घर में।
3: मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों से, मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। जाप देखो बहू इधर उधर उड़ी रहती है, बस इसीलिए कि बुढ़िया कहीं कोई काम है बता दे, है ना?
1: दादी अम्मा आप तो खामखा नाराज होने लगती
3: है। अरे हाँ, मेरे तो भाग ही फूटे है ना यही बात। अरे भाग खोटे ना होते तो बचपन में छोड़कर मेरे बहू बेटे स्वर काहे को सिधार जाते। अरे सब सुनने और देखने को पता था यही, इसीलिए तो जी रही हूँ।
0: ये क्या हुआ दादी अम्मा? अरे ये रोना धोना कैसे?
1: तुम ही आ गई हो, अब तुम खुद पूछ लो।
0: क्या हुआ माँ जी?
3: अरे बहू बस बस, अब इस घर में दाना पानी उठाई समझो। मैं कल सुबह ही तीर्थ यात्रा को चली जाऊंगी और वहां से गुरु जी के आश्रम को। देख अगर कहीं तीर्थ में या गुरु जी के आश्रम में मेरा शरीर छूट जाए तभी मेरे बक्सों को हाथ लगाना, इससे पहले नहीं, समझी?
0: अरे नहीं दादी अम्मा नहीं, अभी तो आप परसों जिएंगी परसों, टीटू की शादी ब्याह तो आप ही के हाथों।
3: अरे हमारा क्या है, हम तो पके पत्ते हैं, कौन जाने कब डाल से छूट कर गिर जाए। ये क्या महक रहा है, लगता है रसोई घर में कुछ जल रहा है। बहू इसी तरह घर चलेगा? तुम्हें होश नहीं है कि चूल्हे पर तुम क्या चढ़ा कर आई हो और वो कब से जल रहा है?
0: हे ईश्वर किसी तरह तो रहने दे।
3: क्या कहा, जलने दे? अरे समार और गैस क्या फोकट में आती है?
0: दादी मैंने कब कहा कि जलने दो?
3: अच्छा एक तो मुतोर जवाब देती है और ऊपर से मुझे वो झूठा बना रही है, मैं जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। सुना मुकेश? बस बस बहुत हो चुका, अब किस घर में मेरा बसर नहीं होने का। हाँ
1: दादी अम्मा थैंक यू।
3: अरे फेंक कैसे दूं? अरे मैं इसी हाथों से मैंने सब सहेजा है, फेंक दूं?
1: फिर घूंटा। वाह वाह वाह वाह दादी अम्मा, मजा आ गया।
3: कौन आ गया रे?
1: जी वो दादी अम्मा, हमारा दोस्त आ गया है। हाँ। मैं चलूं बाजार, वो आपका सामान लाना है।
3: हाँ ठीक है,

0: लाओ भाई, कुछ चाय वाय तैयार है?
1: हाँ, ये चिट्ठी आई है, तुम पढ़ो, मैं चाय लाती हूँ।
2: मुकेश जी, श्री गुरु की कृपा बनी रहे। आपकी दादी अम्मा यहाँ आश्रम में जिस दिन से आई हैं, उसी क्षण से यहाँ से शांति चल दी। वो तो जानी थी, बेबात ही आश्रम वासियों पर बिगड़ा करती हैं, पुरानी आदत है। कभी कभी तो इस कदर हाय हुल्ला मचा देती हैं कि लगता है कि हम स्वामी जी के आश्रम में ना होकर किसी सब्जी मंडी में खड़े हैं। और आजकल स्वामी जी द्वारिका गए, चलो ये अच्छा हो गया। मैंने उन्हें भी इसी आशय का एक पत्र लिख दिया है। अरे मारे गए, वैसे इस उम्र में आपको उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए था। लेकिन कोई रहना चाहे तब ना। बेटे बेटी की चाह लोग इसीलिए करते हैं। आप मेरे पत्र का मतलब तो समझ ही गए होंगे, आपका दयागिरी। दादी अम्मा को आश्रम से जाकर ले आऊं, पर नहीं, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा।
1: अरे क्या नहीं लाओगे, जरा हमें भी तो बताओ।
0: दादी अम्मा स्वामी जी के आश्रम में पहुंच गई हैं।
1: अच्छा,
0: किसी दयागिरी जी ने पत्र लिखा है कि दादी अम्मा से सारे आश्रम वासी तंग आ गए और मैं उन्हें जाकर वापस

0: लिया।
1: अरे तो नेक काम में तेरी कैसे, मैं चटपट आपका सामान तैयार किए देती हूँ, आप सुबह की गाड़ी से ही निकल जाइए।
0: ना ना ना ना ना ना ना ना, मैं दादी अम्मा को वापस लाकर तुम्हारी सुख शांति को भंग नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं।
1: ईश्वर की सौगंध, मैंने तो कभी नहीं चाहा कि दादी अम्मा घर से कहीं बाहर जाए। सच पूछो तो जिस दिन से वो गई है उसी दिन से इस घर की हंसी खुशी चहल पहल सब लुट सी गई है। सभी लोग मुंह लटकाए रहते हैं और मेरा टीटू, टीटू तो हुड़कता है उनके लिए, फिर मत पूछो, न खेलता है न शरारत करता है, तो बुलाकर आधा रह गया है बेचारा। दादी अम्मा की क्या बात थी, उनके रहने से घर भरा भरा सा लगता था। अरे आप सोच क्या रहे हैं?
0: तुम कहती हो तो न जाने मन अंदर से कैसा कैसा होता है। मैं कल सुबह की बजाय आज रात की ही गाड़ी से,
1: मैं अभी अभी आपका सामान ठीक करके खाना तैयार किए देती हूँ। दादी अम्मा के लिए कौन है? हो सकता है कि दादी अम्मा आई हो।
0: अरे भाई दरवाजा खोलो।
1: अरे आप आ गए, दादी अम्मा कहाँ हैं?
0: अरे वो रिक्शे वाले को दीक्षा दे रही हैं। लो लो ये सामान
1: लाइए।
2: दादी अम्मा, अरे जीती रहो बेटा, स्वाद बना रहे। ये ले प्रसाद की थैली। अरे हाथ साफ है ना, देख इधर उधर मत रखना। मेरा बेटा टीटू कहाँ चला गया? टीटू
1: स्कूल गया है दादी अम्मा। दादी अम्मा अब आप कभी घर से नहीं जाएगा।
2: बस बस तू बहुत बोलने लगी है, ज्यादा बोलना बहू बेटी के लिए अच्छा नहीं होता। ये ले तेरे लिए सिल्क की साड़ी लाई है, अच्छी है ना। और टीटू के लिए ये खिलौने, कहाँ है मेरा टीटू?
0: अब नहाना धोना नहीं,
2: खोना नहीं, संभाल कर रखना, मुकेश ठीक कहता है।
0: फिर घूंटा। वाह दादी अम्मा वाह।
2: अरे अरे भाई क्यों हंस रहे हो तुम लोग? मेरा टीटू कहाँ है? टीटू देखो।

कार्यक्रम रंग तरंग के अंतर्गत प्रहसन हाय हाय अभी आप सुन रहे थे। लेखक थे श्री के एल यादव और निर्देशक चंद्र प्रभा भटनागर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आइए श्रोताओं आपको बता दें आज के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा रात 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का गाया राग मेघ और राग बरवा।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसिकार नौशाद, फिल्म है संघर्ष।

0: अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
1: जरा नैनी

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए अब सुनिए नया दौर फिल्म का गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है OP नैयर ने।

0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
1: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
2: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुन

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

0: मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म का नाम था यहूदी।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र की रचना। इस गीत की धुन तैयार की है सलील चौधरी ने। फिल्म है मधुमती।

0: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुने मोहम्मद रफी के स्वर में गंगा जमुना फिल्म का गीत। शब्द रचना शकील बदायूनी की और संगीत नौशाद का है।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप इसी सभा में 10:30 पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रजनी रजक और साथियों के स्वर में ये छत्तीसगढ़ी गीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम,

0: सोप ओपेराज, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने बुद्धिसागर शर्मा और रजनी रजक के स्वर में ये गीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे रजनी रजक और साथी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सहकारी सप्ताह का हुआ समापन, मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया। प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई को कल रायपुर के मुक्ताकाशी मंच पर दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह का कल समापन हुआ। इस अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता और वन मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 216 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सकल लाभ अर्जित किया है। कार्यक्रम को सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने भी संबोधित किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और शिक्षा के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। वे कल रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉ. मुखर्जी की स्मृति में राज्य के सभी संभागीय और जिला मुख्यालयों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को कल 8 जुलाई को रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के पद्मश्री तथा राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकारों के साथ अनेक लोक कलाकार गीत पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजनबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम में जंगली मशरूम का सेवन नहीं करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण झारखंड और उससे लगे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में एक अवदाब बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना जताई है। बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी सप्ताह का हुआ समापन, मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया। प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई को कल रायपुर के मुक्ताकाशी मंच पर दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ की उपजाऊ धरती पर सिर्फ फसलें ही नहीं लहलहाती, बल्कि यहाँ की मिट्टी मेधा को भी बहुतायत से जन्म देती है। इसी धरती की गोद में पलकर नौनिहालों ने अपने ज्ञान का परचम फहराया है, अपने हौसलों को नई उड़ान दी है। छत्तीसगढ़ की लोक कल्याणकारी सरकार की बदौलत दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ रहकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के छात्रों की शिक्षा और करियर को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सिविल सेवा के लिए चयनित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इसे युवा संभावनाओं और उपलब्धियों से जोड़ कर देखते हैं।
1: और ज्यादा हम बेटा बेटी मल्ला अवसर देना चाहते हैं, इसलिए जो 50 सीट की हम व्यवस्था 16 बढ़ा के अभी 200 करत है, 150 ज्यादा हमारे बेटा बेटी मन के अवसर मिली और पूरा खर्चा हम अपन इच्छा से कहीं भी रही, लेकिन हम उनके सरकार उनके खर्चा ला वहन करी। तो ये सब सरकार के तरफ से प्रयास है कि हमारे छत्तीसगढ़ से अधिक बेटा बेटी मन UPSC पास करें और भी क्षेत्र में मेडिकल में और भी उनमें उनके सिलेक्शन हुए और अपन माता पिता के नाम और छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करें।
0: राजीव युवा उत्थान योजना के तहत संचालित दिल्ली के छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल में प्रदेश के आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए एक बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध है। ये हॉस्टल विशेष रूप से UPSC जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ के छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग दिलाई जाती है। छात्रों को भोजन, पुस्तकों और नोट्स के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों के कारण हॉस्टल की क्षमता 50 से बढ़ाकर 200 सीटों की कर दी गई है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल के सहायक आयुक्त श्री प्रतीक धुरंधर।
2: छत्तीसगढ़ असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम शिखर योजना अंतर्गत ट्राइबल यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। ट्राइबल यूथ हॉस्टल में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी दिल्ली में निःशुल्क कराई जाती है। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सुदूर एवं जनजाति क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें दिल्ली में रहकर देश के जो सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है उनमें प्रशिक्षण कराना एवं देश के उच्च प्रशासनिक पदों पर चयनित करना। इसके लिए हम छात्रों को अंग्रेजी माध्यम हेतु 2 लाख रुपए, हिंदी माध्यम हेतु 1.5 लाख रुपए कोचिंग शुल्क प्रदाय करते हैं, जिसके साथ ही प्रतिमाह 12,000 रुपए की मासिक प्रतिपूर्ति भोजन परिवहन इत्यादि हेतु भी छात्रों को प्रदाय की जाती है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार 14 एम्पैनल कोचिंग संस्थान में से किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं और ये जो हमारे एम्पैनल कोचिंग संस्थान है वो सबसे प्रतिष्ठित

जो यूपीएससी की कोचिंग संस्थान है वो है, जैसे वाजीराव, विजन, दृष्टि, ये सभी हमसे इम्पैनल्ड हैं। साथ ही ट्राइबल यूथ हॉस्टल में छात्रों को लाइब्रेरी, मेस, जिम इत्यादि की भी सुविधा है। पूर्व में ट्राइबल यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ के छात्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में IRS, IRTS, असिस्टेंट कमांडेंट, राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, DSP इत्यादि जैसे अब तक कुल 181 छात्र प्रशासनिक पदों पर चयनित हो चुके हैं। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके पश्चात रायपुर में ही इसकी परीक्षा दी जाती है। परीक्षा के जो मेरिट लिस्ट होती है उसके अनुसार छात्रों का चयन किया जाता है और वर्तमान में जो हमारी इस योजना की प्रावधानित सीटें हैं वो 200 हैं, जिसमें से 185 फाउंडेशनल कोर्स की सीटें हैं जो नए बच्चे होते हैं, एवं 15 रिपीटर बैच की सीटें हैं। जो बच्चे पूर्व में UPSC प्री या मेंस क्वालिफाई कर लिए होते हैं उन्हें हम रिपीटर बैच में भी जगह देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराया गया, उसमें ट्राइबल यूथ हॉस्टल से अध्ययनरत 13 छात्र प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और वह सभी अभी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जो 13 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने भी शिष्टाचार भेंट की एवं उनका मार्गदर्शन किया। उन सभी को शुभकामनाएं दी कि आने वाले आगामी मुख्य परीक्षा जो कि अगस्त माह में कंडक्ट कराई जानी है उसमें वो अपना बेस्ट दें और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। पूर्व में इसमें 50 सीटें प्रावधानित थी, 2024 से 50 सीट से बढ़ाकर इसे 200 सीट कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 200 सीटें हैं जिसमें 185 फ्रेशर के लिए हैं, 15 रिपीटर के लिए हैं, एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा एक और पहल की जा रही है कि कुछ छात्रों को हम छत्तीसगढ़ रायपुर में रहकर भी यूपीएससी की कोचिंग, चयन का आधार एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है यूपीएससी के तर्ज पर ही, जो 200 नंबर की होती है, 100 सवाल आते हैं जिसमें, जिसका नोटिफिकेशन सितंबर माह में जारी किया जाता है। नवंबर दिसंबर में उसका एग्जाम होता है जिसका मेरिट लिस्ट करीबन एक हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाता है। 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है छात्रों को कि वहाँ की वो यहाँ से दिल्ली आए और दिल्ली में अपना एडमिशन कराकर किसी भी कोचिंग संस्था में अपना एडमिशन कर अपनी प्रशिक्षण जारी रखें। इसमें दो तरह से हम आर्थिक मदद करते हैं बच्चों को। एक तो हम उन्हें कोचिंग शुल्क प्रदाय करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी माध्यम हेतु 2 लाख रुपए और हिंदी माध्यम हेतु 1.5 लाख रुपए कोचिंग शुल्क बच्चों को प्रदाय की जाती है। उस कोचिंग शुल्क का प्रयोग वह हमसे एम्पैनल 14 कोचिंग संस्थान है उनमें से किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं और उस कोचिंग शुल्क को वो रिइंबर्स करवा सकते हैं। वैसे ही कोचिंग शुल्क के साथ साथ उन्हें मासिक प्रतिपूर्ति भी प्रदाय की जाती है जो कि प्रति माह 12,000 रुपए होती है, जो कि यहाँ उनके रहने, भोजन, परिवहन इत्यादि हेतु सहायता उनके लिए की जाती है। ऐसी दूरदर्शी योजनाओं के कारण अब हमारे राज्य के ही वंचित वर्ग के बच्चे, सुदूर एवं जनजातीय क्षेत्र के बच्चे भी अच्छे नंबरों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। ऐसा विजन है हमारा कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी और ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं वह UPSC और बाकी देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदों पर चयनित होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि शुरुआत से लेकर अंत तक हर रूप में हम छात्र की मदद कर रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार ने प्रदेश के गांवों, शहरों और कस्बों में रहने वाले शिक्षित युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। इसी तारतम्य में दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल में कोचिंग प्राप्त कर यूपीएससी परीक्षाओं में हर साल छत्तीसगढ़ के युवा सफल हो रहे हैं। यूपीएससी की आरंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता के लिए छात्र भी कमर कसकर तैयार रहते हैं। यहां कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र आभारी हैं छत्तीसगढ़ सरकार के।
1: मेरा नाम हरिचंद्र प्रकाश सिंह है और मैं कोरबा जिला का निवासी हूं। मेरे पिताजी एसएससीएल में कार्यरत हैं और मैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्राइबल डिपार्टमेंट के आयोजित राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत मैं ट्राइबल यूथ हॉस्टल का छात्र रहा हूं। इस वर्ष 2026 के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स स्टेज में मैंने सफलता हासिल की है। अभी उसका मुख्य परीक्षा एवं पर्सनल इंटरव्यू राउंड बाकी है। मेरी सफलता पर छत्तीसगढ़ शासन का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। जैसा कि मैं ट्राइबल यूथ हॉस्टल का छात्र रहा हूं, हमें

शासन द्वारा कोचिंग के हेतु 2 लाख रुपए का राशि प्रदान किया जाता है एवं जो हमारे मासिक खर्च वहन करने के लिए हमें 12,000 रुपए प्रति माह आवंटन किया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ शासन का आभार मानता हूं जिन्होंने ऐसे एकीकृत अनुभव कराया और हमारे सफलता के सारथी बने। कई बार जो समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकारी के साथ हमारे इंटरेक्शन सेशन भी कराए जाते थे जिससे हमें अपने प्रिपरेशन में होने वाली समस्याओं का निराकरण मिलता था एवं कई बार छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों द्वारा भी आगमन हुआ जिससे योजना को और कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए उस पर भी चर्चा हुई और इस योजना से हमें काफी लाभ प्राप्त हुआ और ये हमारी सफलताओं की सीढ़ियों चढ़ने पर हमारी पूर्ण रूप से सहायक है। प्रीलिम्स परीक्षा जैसे हमने ये स्टेज क्लियर किया है तब हमें यह सहयोग प्राप्त हुआ है कि जितने भी हमारे जो पूर्ण बैच से निकले हुए जितने भी अधिकारी जो अभी छत्तीसगढ़ कैडर में अभी शामिल हुए हैं अथवा जो हमारे सेक्रेटरी सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर है सोनमणि बोरा सर उनके द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि हमें और किसी द्वारा सहायता किस और भी कैसे सहायता प्राप्त हो सके जो हमारे टॉपर्स हैं उनसे हमें कैसे मदद मिल सके उनके जो नोट्स हैं उनका जो अनुभव है वो हमें कैसे प्राप्त हो सके तो उनके लिए हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है और वो हमें एक मेंटर असाइन किए हुए हैं जो समय समय पर ऐसे वीकली हमारा अपडेट देते रहते हैं कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है और अभी हम कितना परिपक्व हो चुके हैं। जैसे जो हमारे छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल है वहाँ का जो माहौल है जैसे कि आप देखेंगे कि ओल्ड अजिंदा नगर है करोल बाग है वैसे ही उसी भी परिरूप में जो हमारा ट्राइबल यूथ हॉस्टल है वहाँ हम छात्राओं को जो वहाँ के जो टीचर्स हैं जो वहाँ के मेंटर्स हैं उनको समय समय पर बुलाकर हमारा एक मेंटरशिप सेशन रखा जाता है प्लस वो यूथ हॉस्टल के शुरुआत में जब हमारा वहाँ एडमिशन होता है तब वहाँ के जो टीचर्स आते हैं वो हमारा ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं हमें क्या क्या करना है क्या गलतियां नहीं करना है इस विषय पर एक जानकारी देते हैं और एक विस्तृत रूप से हमें समझाइश देते हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के युवा परिश्रमी और उत्साही हैं। यही वजह है कि कठिन माने जाने वाली परीक्षाओं में वे शामिल भी होते हैं और सफल भी होते हैं। आज अनेक प्रशासनिक पदों पर यहाँ के युवा पदासीन हैं, लेकिन पहले एक दौर ऐसा भी था जब छत्तीसगढ़ के बहुत कम युवा इन प्रशासनिक परीक्षाओं को क्रैक कर पाते थे। राज्य सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन कोचिंग की व्यवस्था की और दिल्ली में छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल की स्थापना की। यहाँ बहुत अच्छी अकादमिक पढ़ाई के कारण छत्तीसगढ़ के युवा अब अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र सफल होकर देश प्रदेश और समाज की सेवा कर सकें। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा इस संबंध में बिल्कुल आश्वस्त नजर आते हैं।
2: छत्तीसगढ़ शासन की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रयास है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता जो है वो है एक प्लेटफॉर्म या उनको गाइडेंस देने की, मेंटोरिंग करने की। हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विशेषकर जो यूपीएससी का जो तैयारी है ये काफी लंबा होता है। लगभग एक साल का तैयारी करने के बाद जो सफलता अर्जित करते हैं वो प्रशासनिक सेवा में विभिन्न पदों पे उनका नियुक्ति के पश्चात हो जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात ऐसी है कि बहुत ही कम हमारे जो युवा है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके इन प्रशासनिक

सेवा में आ पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने हमारे आदिम जाति विकास विभाग द्वारा ये एक प्रोग्राम लाई गई कि हमारे जो होनहार एसटीएससी ओबीसी के बच्चे हैं, इनको ट्राइबल यूथ हॉस्टल जो नई दिल्ली में स्थापित की गई है, वहाँ पे उनको पढ़ने का, रहने का, खाने का सब निशुल्क रूप से वहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। और इसके लिए जो प्रतिष्ठित जो एकेडमी है, कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे उनको जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो छत्तीसगढ़ शासन वहन करेंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों पूर्व में इस हॉस्टल में 65 सीट्स थे, जिसको बढ़ा के 200 सीट कर दी गई है। और हॉस्टल के अलावा हमारे जो अलग अलग नई दिल्ली में जो कोचिंग का सेंटर के साथ जो तैयारी करते हैं, जो किराए में रहते हैं, उनका भी किराया जो है स्टाइपेंड हम लोग रीइंबर्समेंट करते हैं। और जो पढ़ाई का खर्चा है, जो एकेडमी है, कोचिंग सेंटर है, हिंदी माध्यम में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए 1.5 लाख, और जो अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ाई करते हैं यूपीएससी के, उनके लिए 2 लाख राशि का रीइंबर्समेंट जो है शासन द्वारा की जाती है। प्रति वर्ष जो है बच्चों के एक यहाँ पे टेस्ट कराते हैं, एक एग्जाम होता है, लिखित रूप से लिया जाता है, और बड़ी संख्या में जो है हमारे यूथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो मेरिट सूची है उसके आधार पे उनको दिल्ली में दाखिला दी जाती है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष से हम एक इसको नए कलेवर में पूरे स्कीम को ही हम लोग रिवैम्प कर रहे हैं, और ये बहुत शीघ्र ही जो है इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी। और छत्तीसगढ़ शासन ने ये निर्णय किया है कि केवल यूपीएससी या पीएससी का एग्जाम्स के तैयारी के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, एसएसबी में जाना चाहते हैं, रेलवेज में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका जो तैयारी करते हैं, उनको भी हम लोग प्रोत्साहन जो है दी जाएगी। और साथ ही जो हमारे बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, लॉ के लिए हो, ये 3 वर्टिकल्स में इसको इस स्कीम को तैयार की गई है, और बहुत जल्दी ही जो है इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। ग्रेजुएशन हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया रखे हैं, क्योंकि जो यूपीएससी एग्जाम है वो ग्रेजुएशन मिनिमम उसका आवश्यकता है, तो उसी के मद्देनजर जो है इस एग्जाम के लिए वही हम लोग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखे हैं। हम लोग एक्चुअली जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था हम लोग ने नहीं किया है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम है ये एक बड़ा जटिल प्रक्रिया भी है, लंबी प्रक्रिया भी है, और आप जानते हैं कि हर कोचिंग सेंटर का अपना अपना एक वो रहता है कि किसी किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो बड़ा एक्सपर्टीज होती है, या किसी का जैसे जनरल नॉलेज में होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को ज्योग्राफी का ही ऑप्शनल है और उनको उसका तैयारी करना है, तो ज्योग्राफी में जो सबसे बेस्ट जो कोचिंग सेंटर होंगे उस सेंटर में वो लेना चाहेंगे या लेना चाहेगी। ऐसे ही जिनको जिस प्रकार के जरूरत है अपने ऑप्शनल के हिसाब से या जीके की तैयारी के हिसाब से, तो वो अपना जो है जो कोचिंग सेंटर है वो खुद चुनते हैं, वहाँ दाखिला लेते हैं, और उसका जो खर्चा है मैंने जैसे बताया उसका रिइंबर्समेंट हम लोग करते हैं। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष एक रिकॉर्ड संख्यक हमारे 13 प्रतिभावान यूथ ने जो है उस हॉस्टल से जो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा है उसको पास कर ली है। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने से मुलाकात भी की है, और हम सब उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि ये सभी बच्चे जो है फाइनली अंतिम पड़ाव तक जाए और उत्तीर्ण होकर जो है देश की सेवा करे, राज्य की सेवा करे। साथ ही साथ आपका जो प्रश्न है ये इसके लिए बकायदा जो है एडवर्टाइजमेंट निकलती है और प्रेस विज्ञप्ति

भी जारी की जाती है और हमारे वेबसाइट में भी इसका जानकारी दी जाती है। और इसके लिए संपर्क जो है, जो भी संबंधित जिला है वहाँ के एससी ट्राइबल के माध्यम से जो है इसको किया जा सकता है। और इसके लिए एग्जाम जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं और उस एग्जाम के माध्यम से इसको सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अभी पूरा प्रोग्राम को ही हम रिव्यूम कर रहे हैं और आने वाला समय में ये फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे और अधिक जो है सीट्स भी इसमें होंगे। और हम लोग ने इसमें ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सेंटर जो है हम लोग रायपुर में भी स्थापित करेंगे ताकि दिल्ली जाने से पहले हमारे बच्चे को एक कंडीशनिंग जो है, उनको एक एक्सपोजर की जो बात है, प्रारंभिक तैयारी जो है हम रायपुर या जो एक और एक दो जगह में उनको तैयारी कर सके, उसके बाद उनको दिल्ली में बेस्ट ऑफ दी कोचिंग सेंटर में उसको ले जाने का एक उस प्रकार के रणनीति के साथ हम लोग पूरे स्कीम को जो है रिवैम्प इस साल से करने जा रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ के गांव गांव तक छत्तीसगढ़ ट्राइबल हॉस्टल की ख्याति पहुंच चुकी है। गांव के पढ़े लिखे युवा अब उचित मार्गदर्शन के अभाव में भटकते नहीं हैं, क्योंकि उनके सामने अब है अपनी प्रतिभा को पंख लगाकर उड़ान भरने का बेहतरीन विकल्प। प्रदेश सरकार के सहयोग के कारण सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी अब बेहद आसान हो गई है। गांव की प्रतिभाएं अब दिल्ली का रुख जो करने लगी है।
1: मेरा नाम किशन लाल साहू है, मैं ग्राम पौनी मुंगेली जिला से आता हूं। मेरा इस साल 2026 के सिविल सेवा परीक्षा में मेरा इस बार चयन हुआ है और मैं दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहता था, जिससे मुझे काफी मदद हुई रहने में और यहाँ आके तैयारी करने में, और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का काफी धन्यवाद करता हूँ। काफी अंतर था, वहाँ वो इन्वायरमेंट नहीं था यूपीएससी का, और यहाँ के काफी जो पीयर ग्रुप जो यहाँ बने वो काफी अच्छे थे। काफी मेरे जो दोस्त हैं साथ में हमने पढ़ाई की, इससे काफी मदद हुई, और साथ में भी दोनों दो जन हम दो दोस्त इस बार मेंस दे रहे हैं इसके वजह से। तो ग्रुप स्टडीज काफी आवश्यक है अभी के, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम का काफी बढ़ चुका है, तो उसके लिए आपको काफी ब्रॉड पर्सपेक्टिव चाहिए रहता है, खासकर जो मेंस स्टेज है उसके लिए। तो ग्रुप स्टडी काफी आपके माइंड को ब्रॉड करती है, तो उसके लिए जरूरी है। काफी और बाकी बच्चों को भी मौका मिलेगा यहाँ आने के लिए, तो उसके लिए तो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो इंक्रीज कर रही है नंबर, तो काफी बढ़िया है। बाकी जो बच्चे जो नहीं आ पाते उन्हें भी और मौका मिलेगा।
0: छत्तीसगढ़ के छात्र दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल को अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं, क्योंकि यहाँ सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। एक तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है, और दूसरे छात्रों को आर्थिक मदद भी मिलती है। हॉस्टल का स्वस्थ वातावरण छात्रों को मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। यूपीएससी की आरंभिक परीक्षा में सफल छात्र यहां रहकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। अपनी मंजिल को छूने के लिए बेताब छात्रों को राह दिखाने में दिल्ली का ट्राइबल यूथ हॉस्टल मील का पत्थर साबित हो रहा है।
2: मेरा नाम मयंक रात्रे है, मैं जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं फिलहाल अभी ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली का छात्र रहा हूँ, और मेरा अभी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की

सीएसई परीक्षा के प्री में चयन हुए हैं, जिसके लिए मुझे आगे की तैयारी के लिए मेंस और इंटरव्यू उसके अगला चरण है, और मुझे ट्राइबल यूथ हॉस्टल से काफी मदद हुई है, जो उन्होंने मुझे आर्थिक सहायता दी है, मानसिक रूप से भी मुझे बहुत प्रेरित किया है वहाँ की जहाँ मैडम थी। और हाल ही में हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है और उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया है, तो उसके लिए मैं काफी धन्यवाद करता हूँ सभी प्रशासन को और छत्तीसगढ़ सरकार को। हमारा चयन एक बहुत ही कठिन कॉम्पिटिटिव परीक्षा के थ्रू हुआ था, जो रायपुर में आयोजित किया गया था। तो परीक्षा में मेरिट लाने के आधार पे हमारा चयन यहाँ ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली में हुआ। यहाँ पे हमारे को पूरी मूलभूत सुविधाएं, खाना, कपड़ा, रोटी, ये सब चीजें, रहने की व्यवस्था और इवन सुरक्षा भी दी जाती थी कोचिंग में आने जाने के लिए। कोचिंग का जो 2 लाख रुपए की फीस हमको दी जाती थी और प्रति माह 12,000 रुपए के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया गया सरकार के द्वारा। अभी जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट, उनके उनसे जो सेक्रेटरी साहब हैं सोनमणि बोरा साहब, उन्होंने आश्वासन दिए है कि हमें अभी जो मेंस की परीक्षा है उसके लिए प्रति छात्र 35,000 रुपए की सहायता प्राप्त करने की घोषणा की है उन्होंने।

संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की इस साल की प्रारंभिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां रहकर तैयारी करने वाले 13 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इनमें से ज्यादातर युवा जनजाति, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से है। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की प्रतिभा, मेहनत और संकल्प का प्रमाण है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का ये अवसर यहाँ के युवाओं के लिए एक अनुपम उपहार सिद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए संसाधनों के अभाव में कहीं पीछे न रह जाएं। इसीलिए सरकार ने युवा शक्ति को छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल की सौगात देकर एक मंच पर इकट्ठा होने का अवसर प्रदान किया है, जिसका भरपूर लाभ युवाओं को मिल रहा है। देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है, पर उसमें सफल होकर देश की सेवा करना और भी सम्मान की बात है। इसी गौरव और उपलब्धियों की पताका थामे छत्तीसगढ़ के युवा सुनहरे भविष्य का सपना संजोए अपनी मेहनत के बल पर लगातार बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए, पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

उस्ताद राशिद खान के स्वर में अभी आपने सुना जब वी मेट फिल्म का गीत। शब्द रचना इरशाद कामिल की थी, संगीत संदेश शांडिल्य का था। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल, अभिजीत और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा गीत। इस गीत की धुन तैयार की है विशाल शेखर ने। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राहत फतेह अली खां के स्वर में पाप फिल्म का गीत। गीतकार अमजद इस्लाम अमजद, संगीतकार हैं शाही।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम थ्री इडियट्स। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें श्रेया घोषाल, सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की है। बोल स्वानंद किरकिरे के और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

श्रेया घोषाल, सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की आवाजों में अभी आपने सुना थ्री इडियट्स फिल्म का गीत। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था शांतनु मोइत्रा ने। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अलका याज्ञिक और हरिहरन की आवाजों में गुरु फिल्म का गीत। नगमा निगार गुलजार और मौसिकार हैं AR रहमान।

गुरु फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा सहयोग, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, कृषि, आपदा प्रबंधन और खनिज तथा इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
1: India and Indonesia are very close and strategic partners.
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप

0: अनुभूति मिलेगी।
1: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्टर से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम समूहगान शिक्षा। इसमें आज आप सुनेंगे उड़िया भाषा के गीत। बोल हैं केऊ नाम धारी। रचनाकार केसी पाणिग्रही और संगीतकार हैं अक्षय मोहंती।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा, सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
1: श्री
0: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम धरी
1: डाकिबी
2: तुमकु
1: तुमे जे
2: सर्वनाम
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
2: आलोक
1: तुमकु
2: नपारे
1: देखाई
2: तुमे जे देखाओ ताहरे आलोक तुमकु
1: नपारे देखाई
2: तुमे जे देखाओ ताहरे
1: तुमे जे बेढ़ीच
2: कोटी विश्वर सबुरी भीतरे बाहरे
1: तुमे जे बेढ़ीच
2: कोटी विश्वर
1: सबुरी भीतरे बाहरे
0: ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
2: लुह होई तुमे
1: झरी पड़ा परा
2: केते नयनर कोणरु लुह होई तुमे
1: झरी पड़ा परा
2: केते नयनर कोणरु
1: हस होई पुणी
2: फूल परी फुट
1: केते जे नरम अधरु
2: हस होई पुणी
1: फूल परी फुट
2: केते जे नरम अधरु केऊ नाम धरी
1: डाकिबी तुमकु
2: तुमे जे सर्वनाम।
0: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो।

0: इसमें एक ताली और एक खाली है। अब हम गाना सीखेंगे।
1: नम धरी डाकी भी तुम को। 1 2 3 4

तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ।

0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम समूह गान शिक्षा में अभी आप सुन रहे थे उड़िया भाषा के गीत। रचनाकार केसी पाणिग्रही और संगीतकार थे अक्षय मोहंती। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे आजाद हिंद फौज ग्रुप की ये रचना। लीजिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए शहरयार परवेज की ये रचना समूह स्वर में।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुनी शैलेंद्र की रचना, संगीत एसडी बर्मन का था, फिल्म का नाम था गाइड।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
0: आइए अब सुने किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में नीरज का लिखा गीत। इस गीत की धुन तैयार की है एसडी बर्मन ने। फिल्म है गैम्बलर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो, फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन की चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा।

0: विषय के बारे में जानकारी मिलते और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर ते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई,
1: वाह एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म है प्रेम कहानी।

लीजिए, कार्यक्रम में अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत SD बर्मन का, फिल्म है चलती का नाम गाड़ी।

सदाबहार नगमे के आखिर में लीजिए सुनिए महेंद्र कुमार की आवाज में हमराज फिल्म का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि।

0: सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:55 होने को है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इन सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85

0: लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912, मोर बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपए फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी एनआर में संचालित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण झारखंड और उससे लगे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में एक अवदाब बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक कल 8 जुलाई को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में आज संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। और दुर्ग जिले में नलकूप खनन यानी ट्यूबवेल खनन पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर

0: कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू
0: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा।

0: श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
1: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
1: जी
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं बिमलेश जी से।
1: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी बिमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
1: जी
0: बिमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
1: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
1: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
1: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
1: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
1: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं। इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है। तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है

0: कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
4: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
5: आओ चलो
2: आओ।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा

0: चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
1: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
2: और वो देखो, वो देखो, औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
1: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
2: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
1: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
1: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
1: हाँ बिल्कुल वैसी।
2: कमाल है
1: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
2: वाह।
1: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
1: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
2: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
2: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
1: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
2: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्मचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट

0: मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
1: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
1: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
1: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
1: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो, आओ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।

0: कितनी बुरी बात है।
1: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
2: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
1: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
2: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
1: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
2: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वह क्या है अंकल?
2: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
1: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
2: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
1: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
2: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
1: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
2: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

आप मन के गीत सुनैया जम्मू संगवारी मनला सीमा शर्मा के जय जोहार। संगवारी हो पानी झमाझम गिरत है हमार छत्तीसगढ़ के माटी हरियर हो गए है। किसान संगवारी मन तैयार है धान बुआई बर, लयिका मन तैयार है स्कूल जाए बर और रेडियो श्रोता मन तैयार है अपन पसंद के छत्तीसगढ़ी गीत सुने बर। तो आवा झटकुन हमन नामला पढ़ देथन कि ए दरी कौन कौन संगवारी मन हमला पाती पटोए है और कौन कौन संगवारी मन हमला ईमेल भेजे है। ईमेल भेजे है हमार ए संगवारी मन, आप मन हरे हो कबीर रेडियो श्रोता संग डोंडी लोहारा बालोद ले देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, ग्राम

एक गीत बर ईमेल भेजे है हमारे संगवारी मन। आप मन हरे हो बाजार पारा बाजार वार्ड महासमुंद ले भीष्मदास नर्मदा हिरमनी और दीपक लक्षदास खल्लारी भीमघोष ले जी एल साहू सरोज साहू छोटी पिंकी कोरासी भैसा रायपुर ले पवन कुमार साहू क्रांति देवी साहू पंकज सुष्मिता और दीपिका साहू चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविन्द्र औ रौनक सेन लगान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिर भारती बघेल ओवरेठी पारा भाटापारा ले अनिता साहू वीणा नेहा मोनिशा साहू वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया ले शिवा यादव राज चिंटू तरुण औ चोवाराम यादव ग्राम सैया मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी चंद्रवंशी आकाश प्रतिभा चंद्रवंशी ग्राम ढोढरी घोटिया जिला मोहला मानपुर ले महेश कुमार निषाद रंभारानी निखिल नैतिक निषाद आवरा डबरी ले श्यामलाल साहू मोगरा केसरी चिंकी औ प्रीति साहू। आप सबुजन के फरमाइश पर आओ सुनथन घासीदास मानिकपुरी औ संगवारी मन के शर्मा एक गीत।

मिनी औ मुस्कान साहू, नेहरू वार्ड भाटापारा ले प्रेमलाल साहू, भूपेन्द्र दुष्यंत औ राघवेन्द्र साहू, चरडोंगरी पिपरिया ले अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, जयकिशन साहू औ योगेश साहू, सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा ले गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज राजपूत, दतरेंगी ले भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती वर्मा, खैरागढ़ राज लालपुर ले मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, मेघा नेहा औ येशु भीमटे, पाहंदा पलारी ले नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल देवांगन, गणेशधाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास मानिकपुरी, कन्यावाड़ा ले संतोष सोरी, सेवती लक्ष्मण सोरी, देवेंद्र सोनवानी, करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा कुमारी लोचन, गीतिका निर्मलकर, आप सबुजन की फरमाइश पर अवसुंथन राजेंद्र कुमार राठौर औ संगवारी मन के शर्मा एक ईट।

एक गीत बर पाती पठोई हमारी ये संगवारी मन आप मन हरे भाटापारा ले बचकमल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय ठाकुर सोना डीले सुब्रत चौधरी मोती गार्डन भाटापारा ले मोती लाल झेरिया कल्पना झेरिया बिट्टू कुमार चिंटू और

0: कुकुमार छेरिया, महावीर वार्ड भाटापारा ले अमृता यादव, पार्वती ईश्वरी, लक्ष्मी प्रेरणा डिम्पी यादव, भाटापारा ले ही है श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, धामणी मानोरा ले तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश आदेश डेरे, धवलपुर गरियाबंद ले धनंजय मिश्रा, चंद्रकांती प्रतीक्षा अर्चना औ गेंदलाल मिश्रा, शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर, असरफ खान, नासिर खान और अयाज अल्फैज खान, अछोटी धमतरी ले बिसत राम देवांगन, मानकी बाई, गणेश राम औ रोहित राम, भर्री टोला डोंडी बालोद ले नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू औ मुरली गौतम, आप सबूचन के फरमाइश पर औ सुनथन गिरिवर दास मानिकपुरी औ संगवारी मन के शर्मा ए गीत।
1: ठुड़गा रुखमा उलवा पाना, ठुड़गा रुखमा उलवा पाना।

ए अंतिम गीत भर पाथी पठो हे हमारी ये संगवारी मन आप मना रहे हो मंगला मटिया बादलो ले शिवकुमार अंगारे अंजनी त्रंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे भर्री टोला डोंडी बालोद ले नमित कुमार गौतम पीहू नीतू और मुरली गौतम शीतला मंदिर वार्ड नंबर एक अहिवारा जिला दुर्ग ले पिंटर डबल कुमार धीवर जतिन हेमराज बाबू धीवर अमरपुर पिंडरा ले दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजबिये राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये भाटापारा ले नारायण यदु पुनिया यदु राकेश और आरती यदु वार्ड नंबर 20 बेमेतरा ले राज और सारिका वैष्णव गांव पने का लिटीपुर ले अनुराग चंद्राकर कुंवर सिंह चंद्राकर सत्तू नंदू चंद्राकर आप सब हुचन के फरमाइश पर आओ सुनथन घनश्याम पटेल और संगवारी मन के शर्मा एक गीत

0: आप मन के गीत छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री

0: की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी सुन रहे हैं। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला गीत जिसके लिए आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है

आइए अब सुनते हैं। शमशाद बेगम की आवाज में तनवीर नकवी की रचना, संगीत नौशाद का है, फिल्म का नाम है अनमोल खड़ी।

नूरजहां की आवाज़ में अभी आपने सुना अनमोल कड़ी फिल्म का गीत। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। तलत महमूद की आवाज़ में लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। संगीत सचिन देव बर्मन का है, फिल्म का नाम है सुजाता।

आइए अब सुनते हैं सुरैया की आवाज में राजेंद्र किशन की रचना, संगीत हुस्नलाल भगतराम का है, फिल्म का नाम है प्यार की जीत।

अंत में सुनते हैं सुरैया की आवाज में कमर जलालाबादी की रचना, संगीत हुस्नलाल भगतराम का है, फिल्म का नाम है बड़ी बहन।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 2 बजे भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है चित्रपट संगीत का, समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में पहले हम आपको दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज के गोट में चर्चा होगी जंगल की सुरक्षा जीवन की रक्षा, इस विषय पर। नंदिनी, ये कहानी सुनेगा, कहानीकार होंगी डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर। क्रम कामकाज की बातों में चर्चा होगी जल के संरक्षण ला व्यवहार मा लावा, बरसात मा भाजी खावा राखव सावधानी और रोजगार ले स्वावलंबन, इन विषयों पर। हमर हाथी हमर गोठ, ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 5:00। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी शाम 5:05 पर। इसमें अपन गोठ में चर्चा होगी अनुशासन की शुरुआत खुद ले करो, इस विषय पर।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आम सुनेंगे शाम 6:30 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे आज की बात में खरीफ माह फसल चक्र अपनावन, श्री अन्न मिलेट लगावन। किसानवाणी में सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी, जिसका विषय होगा बरसात के मौसम में आवारा पशुओं का प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर पदम चंद जैन, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पशु चिकित्सालय बैरन बाजार रायपुर की सलाह। संचालन करेंगी निधि शर्मा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। लोक संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी रजनी रजक और साथी। धरती की पुकार ये रूपक सुनेगा रात 9:30 पर। लेखक और प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक खटवार। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनेगा पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का गाया राग मेघ और राग बरवा में ख्याल। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 2:00, 2:30 पर शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडिया वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

प्रकृति चुपचाप गहिर पाठ पढ़ाथे, जेन ओकर संग चलथे ओखर जिंदगी मुस्काथे। इही भाव संग घर आंगन कार्यक्रम सुनैया जम ओ बहनी मन ला संगीता वर्मा के राम राम। बहनी हो, प्रकृति हमन ला बिन मांगे सबो जिनिस देथे। सांस ले बर हवा, पिए बर पानी, खाए बर फल फूल और जिए बर सुंदर वातावरण। प्रकृति को तिला निहारन ना ता एक एक चीज अतेक सुघर अद्भुत है जेकर हम कल्पना नहीं कर सकन। प्रकृति के अनमोल उपहार मा जंगल अतिक कीमती है, कहां त बहनी हो ये धरती महतारी के रीढ़ आए। और जिहां जंगल हरियावत रही थे वहां जीवन मुस्कुरावत रही थे। और येला आपन देख भी करत हो बहनी हो कि विकास के नाव मा कतका पेड़ कटत है, जंगल घटत जाते, भूखाए जीव जनावर भोजन के तलाश मा गांव तक पहुँचे ले धर ले है, जंगल ले जुड़े रोजी रोजगार छोड़ गए। और बहनी हो एकर असर पूरा चराचर जगत मा हुआ थे। मौसम बदला थे, गर्मी बाढ़ा थे, पानी के संकट गहरावा थे। आप मन देख भी करत हो बहनी हो, पहली अतिक प्राकृतिक आपदा नहीं होत रहीस। इस सब के असर हमार जिंदगी ऊपर पड़ा थे। और ये पेड़ पौधा हमार से का मांग थे, बल्कि वो तो हमीला देवतावा थे। एक घों पेड़ लगा दे तहां कई साल ले उकर फल लखा।

0: छांव और शुद्ध हवा देते। बहनी हो, पेड़ लगई सिर्फ पेड़ लगई नो है, बल्कि अवैया पीढ़ी पर उपहार आए। हमार घर के आगू माँ मोर बाबा के लगाए बर पढ़ावे, सबो जन ओकर जोर छाँव में बैठते और ओला सुरता करत रहते। बहनी हो, हमला पेड़ के महत्व ला समझना है, अवैध कटैला रोके के उद्यम करना है और कम से कम हर मनखे एक पेड़ ये नारा ला ये बरसात माँ अमल मलाना है और पेड़ भर नहीं लगाना है। पेड़ ला अपन अवैया पीढ़ी पर उपहार मानत ओकर देखभाल तको करना है, यही संकल्प लेना है। काबर जंगल सुरक्षित रही, पेड़ पौधा सुरक्षित रही, तभी तो प्रकृति सुरक्षित रही, और प्रकृति सुरक्षित रही तो हमार जिंदगी तको सुरक्षित रही।
1: देखो रे

0: अभी जैन गीत के आनंद लेवत रहें, तेनलापन स्वर दे रहे नकुल जायसवाल, सावित्री कहार और सैलजीत साहू। बहनियों, कवि लेखक अपन आसपास के माहौल मा जैसन देखते वही लापन भाव में पिरो के कागज में उतारते, कभू कहानी के रूप में तो कभू कविता के रूप में, और ये भाव दूसर के मन अंतस तक पहुँचते और बड़ सुघर संदेश देते। ता आज अपन मन के आरोला रचना में पिरो के लाने हैं हमार कहानीकार बहनी डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर और कहानी के शीर्षक है नंदनी। ता आवाज सुनथन ये कहानी।
1: कहानी के नाम हवे नंदनी। एक पहर के कामला निपटावत निपटावत ले बेरा के 12 बज गए। हाथ गोड़ा धोत धोत मन में सोचे कस ना आज नंदनी ले मिल के आ जाऊं, काबर की मोर दोनों बेटा मन पिकनिक मनाए बर गए हैवे और पतिदेव है अपन संगवारी के बेटा के बिहाव में गए है। मैं हाँ घर में अकेला काज करूँ, मिलना के मिलना हो जाही, समय घलो कट जाही और सबले बड़े बात समय के सही उपयोग घलो हो जाही। मन में ती विचार उठिस और मैं हर उत्तर धुर्रा कपड़ा लत्ता पहन के जाए बर तैयार हो गये। रिक्शा करें आधा घंटा कस में उखर दरवाजा में पहुंच गये। दरवाजा खटखटाए बर नील परिस, एक कनिक ठेले और दरवाजा खुल गए। घर में मुर्दनी कस छाये रहा, नाम लेवत कमरा मनला झाँके तो का देखता हूँ पलंग में मोटरी कस बने सुते हवाए, आँखी खुले हवाए फिर मुँह ले आवाज नहीं निकलिस। मोर करेजा फट गए, धरा पसरा होकर मुड़सड़िया में बैठ गये, सिर में हाथ फेरे, बड़े बड़े आंसू के बूंद ढलक के ओकर कान में समाये लगिस। अपन अचरा में आंसू ला पोछे ओकर हाथ है मोर हाथ लकस के पकड़िस, जैसे कोनो ओकर चीज ले झपट के लेग मत जाए और ओकर आंखी है मुंदागे, ऐसे सुत गे जैसे महतारी के गोद में हर हिंद छलैका। मैं ओकर सिर में हाथ फेरत फेरत चारों मुड़ा आंखी लग घुमाए, ओकर गरीबी के का बखान करूं, यह वही नंदनी है। सोचत सोचत में हा 35 बछर पाछू डहार पहुँच गए। नंदनी और मोर साथ है बचपन के आए, संग संग पढ़ेन लिखेन और बिहाव घलो है एक के साल में होइस। मोर है पहली होइस, मैं हर अपन ससुराल में नवा नवा बहुरिया रहें, उखर बिहाव में आवत नहीं बनीस। 4-5 बच्छर बीत गए, मोर दू लैका हो गए, लेकिन नंदनी है माँ नहीं बनी रहीस। फिर कुछ दिन बाद अचानक मोरे शहर में उखर संग भेंट होइस। उखर गोदी में 2-2.5 साल के बड़े सुंदर लैका रहा। मैं एकदम सोचे लागे हूँ, फिर खुश हुए कि चलो मोर नंदनी बांझ के कतार ले दूर हावे। फिर तब हो मोर चेहरा में आए उलझन ला नंदनी एक के मिनट में समझ गईस। कथे एक दिन तोड़ कर बैठ के बताहूँ कि मोला ये महतारी सुख कैसे मिलिस। मैं अपन मन के भरम ला जतका जल्दी हो मिटाना चाहत रहे हूँ, ते पाए के कुछ दिन में उखर बताए पता माँ पहुँच गये। नंदनी अपन नामे जैसे ही रहे शांत, उखर बिहाव घलो बड़ा संस्कारी परिवार में होइस। नंदनी बताइस जब बिहाव होके ससुराल पहुँचे और डोला परछन बर मोला उतारिन तब मोर कान मा मिश्री घुले कस मीठा आवाज सुनाइस। तोर स्वागत है छोटकी अपन जेठानी डहर ले, मैं हर रिश्ता मा तोर जेठानी आऊँ, फिर मैं हाँ तोला छोटे बहनी ही मान हूँ और चाहूँ कि तहु मोला वही इज्जत और मान देबे। हमर दोनों मिलके आज ये वादा करथन कि ए घर मा दोनों भाई के बीच कभू फूट नहीं परन देन और मोर नाम ही मालिनी। नाम ल सुन के अपन घेच ल थोड़ के उठाय, गजब सुंदर रहा ओ हर पूर्णिमा तब मैं हर अमावस्या। फिर ये बात लले के परिवार में कोनो मोला ठेसरा नहीं मारिन, बल्कि कुछ दिन में घर परिवार में चारों कुती नंदनी नंदनी नंदनी के गुहार पड़त रहा। नंदनी के पाँव घर में का परिस, जेठानी है गर्भवती हो गए, अब का पूछना। दिन भर हंसत हंसत सास ससुर जेठ जेठानी घर में अवैया जवैया सबके ध्यान रखे लागिस नंदनी है। 9 महीना बाद घर में पुत्र रतन आइस और जेठानी मालनी लैका के ही पुरतन हो गए। साल भर नहीं गुजरिस मालनी है फिर पेट से रह गए। फिर ए दारी मालनी थोड़ी कमजोर होगी रहीस, पहली बच्चा हम

लीला वैसे भी नहीं छोड़े, तब दूसरा बच्चा ला कैसे करे। तो दूसरा बच्चा ला नहलाना धुलाना सेकना चुपरना सब जिम्मेदारी ला नंदनी अपन ऊपर ओढ़ लीस। परिवार में खुशहाली छाय रहा है। कभू परिवार के मन है नंदनी के लेकर नहीं हुए के उलाहना कभू नहीं दिन, न कभी नंदनी सोचिस कि मोरो होतीस और न ही पतिदेव ला कोई शिकायत रहा। समय गुजरत गिस, मालिनी तीसरैया बार माँ बनीस, अब के बार बेटी होइस, सबो खुश होंगे। राम लक्ष्मण के भी सुहद्रा बहनी भी आ गए। एक दिन परिवार के सबो मनखे मन बैठे रहे। मालिनी छोटे लड़का विजय ला धर के आईस और नंदिनी ला कही थे, छोटकी ले संभाल अपन दुलर वाला, मोर से यही दूजन है, यानी बड़े बेटा अजय और बेटी गौरी नहीं संभलत आवे, यह जीवन भर के तोर जिम्मेदारी आए। नंदिनी है विजय ला गोद में ली, सांखी ले झरझर आंसू बहिस। पतिदेव धीरे से तीर में आके ओकर कंधल दबाइस। सास ससुर दोनों मालिनी के त्याग और नंदिनी के स्वीकारोक्ति ले गदगद हो गए। फिर समय एक जैसे कब रही थे, नंदिनी के पति के बदली दूसर शहर हो गए। दूसर शहर जाके भी समय समय में नंदिनी परिवार सहित वो घर में आवत रहा है और जावत रहा है। कुछ साल गुजर गए, ये बीच में सास ससुर दोनों खत्म हो गए। सब जिम्मेदारी ला दोनों भाई देरानी जेठानी मिल के निपटा लेन। लेकिन समस्या तो तब आईस जब नंदिनी के जेठ घलो चल बसीस। अब जेठानी ला ये घर में अकेले छोड़े नहीं जा सके, काबर बेटा अजय और बेटी गौरी भी पड़े बार बाही चल दे रहीन। जेठानी ला नंदिनी अपन संग बहुते मोहब्बत के संग ले गए और साथ में रखे लागिस। फिर ए बीच जेठानी के स्वभाव ह बदल गए रहीस। बात बात में चिड़चिड़ाना, अपन बड़े हो ताव दिखाना, ये सब चले लागिस। फिर नंदिनी ज्यादा ध्यान नहीं दिस, जेकर पति नहीं है ओखर का दशा होही वो ये बात ला अच्छा से समझाए। एक बार तीनों लड़का सकलाइन कुछ नवा पकवान लड़का मन ला खिलाहूं, ये खुशी के मारे वो बनाए लगिस। नंदिनी के मन में ये आईस कि मैं लड़का मन ला एके संग परसूं खवाहूं एक संग आओ एके संग सब झन ला परसिस। बस नंदिनी से यही करे कनी चूक हो गए कि का सोचिस कि विजय है तो मोरे कर रही थे, रोज मोरे हाथ के खावत रही थे, अजय या गौरी है बाहर रही थे, ऐसा घर के चीज कभू नहीं मिले मल्ला। ऐसे कह के मन में सोचत सोचत अजय या गौरी के प्लेट में ज्यादा ज्यादा डालिस और विजय के प्लेट में थोड़ी कम। दूरिया ले मालिनी देखत रहा है, वही कर ले मारिश ठोसरा, खुद पैदा करे रहते तब जानते हिस्सा बंटवारा का होते। नंदिनी बात सुन के सुन्न हो गए। विजय अपन मम्मी के हालत देख के उठ के मालिनी कर जाते और बोलते, का हो गए माँ? वो हम मालिनी ला माँ कहा है और नंदिनी ला मम्मी। भैया और गौरी बाहर रही थे, मैं तो हिचे रही थी मम्मी के हाथ के रोज खावत हूँ, भैया और गौरी ला ये सब बाहर कहाँ मिलही, ते पाए के माँ कोई बात न है। आइसगीस बात खत्म हो गए। फिर एक ठन बीज वो दिन मन में बो आ गए। सबो लड़का बड़े हो गए, नौकरी चाकरी करे लगिन, बर विवाह के समय हो गए, सब जिम्मेदारी ला मालिनी है अभी भी देवर देवरानी ऊपर डारे रहा है। नंदिनी घलो पूरा खुश मन से अजय और गौरी के बिहाव कर दिस। विजय है बाद में करहूं करके रुके रहा है। विजय पर लड़की मालिनी है पसंद करहूं करके ऐलान कर दिस। विजय अपन कार्यालय के कंतर जाति लड़की ला पसंद करे रहा है। नंदिनी ला ये बात नहीं भाईस। घर बिरादरी अलग हो ले, संस्कार घलो अलग मिलते, एला नंदिनी अच्छा से जाने। पर मालिनी विजय ला पूरा सह दिस। नंदिनी खामोशी ओढ़ लीस। विजय के बिहाव भी हो गए। बहुला मालिनी हाथ दे रहा है, ते पाए के बहु के झुकाव है मालिनी डहर ज्यादा रहा है। दिन भर कुरिया में घुसर के साथ बहु बतियात रहे, नन्नी काम में लगे रहे। समझ तो तब आईस जब विजय है नौकरी में जाए पहली ही ऐलान कर दिस, माँ घलो हमर संग जाही। सुन के नंदिनी के खून एक कठन बात में सुखा गए। दरवाजा लकस के पकड़ लिस, तभो ले गिरे ले लागिस। पति आईस सहारा दिस, थामिस और समझाइस, देख नन्नी तोर और तोर बेटा के बीच में कभू नहीं आयो, फिर आज तोला सुने भर पर ही, आखिर भौजी के हक ओकर में ज्यादा है। यदि तोर जीवन में पूरा सुख लिखाए रहतीस तो तोरो को खहरा होतीस, ते पाए के ये सच ला स्वीकार कर ले। पूरा रात आंख में काटिस, मुंधारा ले उठ के उखर जाए तैयारी कर दिस और जाए बेरा नंदिनी है विजय ले वादा लिस कि दिवाली तिहार में सुरहुती के दिया बेटा ते मोर संग अपन यही घर में बारबे, काबर बेटा ए घर में तोरे ले अंजोर हावे। विजय शुरू शुरू में आईस गीस, फिर धीरे धीरे तीस तिहार छुटीस, घर अवई जवई छुटीस। नंदिनी के आंसू ल देख के पति बीमार पड़ गए, अब वहु स्वर्गवासी हो गए। नंदिनी निपट अकेला पड़ गए, औ तो औ बाप ल आगी देबर भी नहीं आईस। फिर उस स्वाभिमानी औरत था न जेठानी

0: कर हाथ जोड़ीस न विजय कर। बहुते धीरता ले जीवन ल चलाए लागिस, फिर कथे ना मन के हारे हार हे, मन के जीते जीत, मन के बीमारी है जोर पकड़िस, एती नंदनी खटिया पकड़ लिस। ए बीच नंदनी कुन मुनाइस, आँखी ले खोलिस, सिरहाना में मुला बैठे देख लिस, एक अभेद्य सुरक्षा के एहसास ले फिर आँखी ले मूंद लिस। नंदनी के कुन मुनाए ले महू अपन पुराना याद मन के घेरा ले बाहिन निकल गयो। अचानक मुँह नजर एक छोट कुन डिब्बा में परिस, उठ के वो डब्बा ल खोलेउ, ओकर नित्य के घुंघरू ओमा धराए रहा। मैं घुंघरू ल अपन छाती ले लगा लेउ, घुंघरू थोड़ किन बाजिस, नंदनी के आँखी फिर खुलिस। मोरो घर जाए के बेरा हो गया है, मैं ओखर पड़ोसी में लौखर ध्यान रखे बर बोल के फिर आके भरोसा नन्नी ला दे के वापस अपन घर आ गयो। पति ला बतायो, पति बोलिस परेशान मत हो, सबके देखैया भगवान आए, ओ कर ही व्यवस्था। और अतका कही के उठ के चल दिस। 2 घंटा बाद आईस तो चेहरा दमकत रहा है। मैं पूछे ऐसे का पागेव जी, पति बोलते मोर ऑफिस के दूसरा ब्रांच होकर घर के तीरे में हावे, मैं अपन उन्हें के चपरासिन ले बात करे बर गे रहे हूँ, तो वो अपन बेटी ला ओकर देख रे बर भेज दूँ, ऐसे कही के बोले हावे। ये 2 महीना बर तो खंधो दे हूँ, बात के बाद में देखबो, ए बीच कभू कभू जाके ते हाल चल ले लेबे, ऐसे किस। ऐसने पति सब दे भगवान, मैं सोचत सोचत खाना बनाए के तैयारी में लग गयो। 2 महीना कस में नंदनी बहुते ढंग से ठीक हो गए। इतवार के दिन रहा, पति देव कही थे चल तो आज महू तोर संग नंदनी से मिले बर जाऊं, दोनों झनगेन। नंदनी के खुशी के ठिकाना नहीं, कही थे आज तो दीजला मैं हाथ से बना के चाय पिला हूँ, और अपन रंधनी कुरिया कोती चल दिस, ओला काम करत देख के मारे खुशी के मेरो डारे। नंदनी चाय धर के आईस, एती वोती के बात हो इस तहान में धीरे से बात ला शुरू करे। देख नंदनी, जो तोर आए वही तोर आए, और जो तोर नो है वो नो है। याद है तोला डांस में कॉलेज में पहला इनाम मिले रही से, ते उही लपन पूजा काबर नहीं बनास, अपन कला ला साधना ला वापस समेट ले, पेंशन में तोर जीवन चल जाही, फिर जीवन में जिए बर कुछ न कुछ बहाना भी तो चाही, ते अपन आस पास के लड़का मन ला डांस सिखा, ए तरह से तोर कला और तोर नाम दोनों चल ही, और जो मदद तोला चाही मैं और गिरीश मतलब मोर पति दोनों मिलके करबो। नंदनी थोड़ किन देर चुप रहीस, फिर बुक्का फाड़ के रोइस, मैं रोवन देव ओखर रिसाव ला रिसन देव। मोर पति हा वो घुंघरू के डब्बा ला ओकर हाथ में थमा के कहते हम पति पत्नी के तरफ से ये भेंट आए नंदनी, अब देखना ये है ते कैसे एला फेंकबे धुन कलेजा से लगाबे। नंदनी डिब्बा ला खोलिस, घुंघरू ला निकालिस, माथा से लगाइस, अब अपन पाँव में बांध लिस। नंदनी आज डांस क्लास घर में ही खोल ले है, छोटे बड़े सब तरह के लड़का ओकर घर में आते, लड़का मन नंदनी से और नंदनी हा लड़का मन से अगाध अनमोल मातृत्व सुखला पाके नंदनी पुनर्जीवित होगी।
1: बहनी हो, अभी आप मन सुनत रहो बड़ सुघर संदेश देवत कहानी नंदनी, और कहानीकार बहनी रहीन डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर। अब आओ एक संग एक ठन गीत के तको आनंद लन जौन ला स्वर दे है राकेश तिवारी और कर संगवारी मन।

बहनी हो, हिम्मत ले जिहां बीजा बोआ थे उन्हें सफलता के पीका फुटते, मेहनत के संग जिन आगो बढ़ते किस्मत ओकरी दुआरी खटखटाते। सोला आना सही बात आए बहनी हो, जब हम कहीं करे के ठान लन तो कोनो काम मुश्किल नहीं होए, और हमला चाही भी का मन में विश्वास और काम करे के लगन तहां जरूर हम अपन लक्ष्य ल पा सकत हन। और कहते भी ना, मेहनत करे ले पथरा में पानी ओगर जथे, और आज एला हमार बहनी मन कर तको देखावा थे। बहनी हो, हमार गांव सीलघट मा अलग अलग बहनी मन छोटे छोटे रूप में रोजगार करत रहन, तो मल्ला परेशानी ज्यादा होवत रहीस बाजार तक सामान पहुँचाए माँ। फिर सुनता ले सबो बहनी मिल के एक ही जगह स्वरोजगार करे ले धरिन। चार बहनी के अलग अलग व्यवसाय रहीस, उमा और बहनी मन जुड़ के बड़े रूप में रोजगार करे ले धरलिन, और आज एक कंपनी के रूप ले ले है। आमदनी के संग उखर आत्मविश्वास बाढ़ गई, परिवार तको मजबूत हो गए, और उखर ले और बहनी मनला सीख तको मिला थे कि एक मतलब बहनी हो, हमर माँ जेन भी गुण है ओला निखार सकत हन और रोजगार के रूप दे सकत हन। बनाए चुरो के सौखे तो रोटी पीठा खई खजाना बनाए के रोजगार कर सकत हन, ऐसने सिलाई कढ़ाई के सौखे तो वो कर सकत हन। संगीत नृत्य बताए के पाछू यही मायने है बहनी हो, कि जौन कुछ करना चाहते जरूर अपन प्रतिभा ला आगू बढ़ावे, अपन सपना ला उड़ान दे, स्वरोजगार संग स्वावलंबन बन के अपन सपना ला उड़ान दे के आकाश तक पाँव रखे।

जौन गीत आप मन सुनत रहो तेनला अपन स्वर में सजा के लाने रहीन बसंती देवार ओकर संगवारी मन बहनी हो वर्षा के रिमझिम फुहार संग चारों मुड़ा हरियाले धरलीस बारी बखरी माँ खेत खार माँ भाजी पाला कुंवर कुंवर बड़ सुघर जामगे हे जेला देख के खाए के मन तको करते और थोड़ बहुत खाना भी तको चाहिए बहनी हो काबर ये पुछते के घलो होते फिर बहनी हो बरसात माँ भाजी पाला माँ कीड़ा मकूड़ा तको हो जाते जिन कई घाव हमला दिखे तको नहीं तेकर से ती मौसम माँ भाजी कम खाए के सलाह दे जाते फिर सौखे तब भाजी ला बने निमार लन दो तीन घाव पानी माँ धोलन तो कन कुन कुन्हा पानी माँ नमक डाल के तको धोलन बहनी हो फिर सावधानी ले बनावन और भाजी के मचा लेवन मौसम के रंग बदलत रही थे तेकर संग अपन सेहत के घलो ध्यान रखो और सावधानी अपनावो बहनी हो स्वस्थ रहो मुस्कुरावत रहो और प्रकृति संग सुर मा सुर मिला के सुखी जीवन जियो यही भाव संग अभी कार्यक्रम ले जाए के बेरा हुआ थे तब बेरा की मान राखत अवैया कार्यक्रम मा फिर भेंट हो ही यही वादा संग अपन सखी संगीता ला दो विदा और लेवा मोर माया ले भरे राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थी, घर आंगन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। और अब समय है चित्रपट संगीत का। चित्रपट संगीत का पहला गीत, जिसके लिए आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है आग और शोला।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: चित्रपट संगीत का अंतिम गीत आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया है बप्पी लहरी ने। फिल्म का नाम है गिरफ्तार।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 2:30 पर भी सुन सकते हैं। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को है। दोपहर समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को

0: मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
0: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
0: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों

0: के माध्यम से भेजी गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुणे जिले के घाट

0: होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला गीत आवाज है जगजीत सिंह की। गीत लिखा है सुदर्शन फाकिर ने, संगीत जगजीत सिंह का है। फिल्म का नाम है आज।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं बप्पी लहरी का संगीत में फिल्म आंगन की कली। इस फिल्म का गीत लिखा है शैलेंद्र ने।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सरों में आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है आहुति।

0: बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस डहाणू रोड पर ही रोक दी गई है। एहतियात के तौर पर सूरत और नवसारी जिलों में आज सभी स्कूल और आंगनवाड़ियां बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 200 फीट बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक के फुटपाथ पर चढ़ने से वहां खड़े तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। फीफा विश्व कप में आज राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia, established in 2018, is entering a new phase of progress. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, he said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security, and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation, and industrial collaboration. Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture, and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
3: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
2: Prime Minister Modi is now at the Indonesian Parliament, where he is addressing the joint session. We take you over live.
3: Salamat siang. Apne sahabat se jati ke beech aakar main bahut hi aanandit hoon. आपके बीच आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के एक भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर इस आदर भाव पर

0: किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रभुओ से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है।
1: With that, we end this news bulletin.

अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का मन भावन में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मन भावन में आज सुरीले गीतों की बरसात होगी, जैसे कि आज स्टूडियो के बाहर दिख रही है बरसात होती हुई। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आपके घरों में भी रिमझिम के तराने लेके आई है बरसात। तो कैसे गीत आज आप सुनना चाहते हैं ये आप हमें बता सकते हैं लिखकर, ईमेल मैसेज जिसे आप कह सकते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com ये है हमारा पता, यानी कि ईमेल आईडी। इस पर आप अपनी रिक्वेस्ट भेजें, अपने नाम के साथ फिल्म का नाम और गाने के बोल जरूर लिखें।

ढेर सारी ईमेल्स आपकी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं आंखों के सामने, तो पढ़ते हैं पहला संदेश। किशन वंजनी हमें मैसेज भेजते हैं और इज्जत फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। ताज मोहम्मद भी है हमारे साथ और इन्होंने कहाँ से संदेश भेजा है, इनके साथ हैं गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्षर से, आप हरिद्वार से मैसेज भेज रहे हैं हमें। इशाक मोहम्मद का भी मैसेज हमें मिलता है, जीवन मृत्यु से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ हैं खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा छत्तीसगढ़ रायपुर से, मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रज़ा, गौसैया फातिमा और परिवार के सभी सदस्य। मूसा शेख का भी मैसेज हमें मिला है और मेरा गांव मेरा देश से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। सनावद से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपके साथ राजकुमार बोडाना और अशोक वर्मा भी हैं। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचता है शमशूल कमर राही का, गंज डुंडवारा से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके साथ हैं शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान और अमानत फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। मास्टर अशोक कुमार का भी मैसेज मिलता है, गुम है किसी के प्यार में ये गाना सुनना चाहते हैं आप, खरगोन सनावत से। अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुडाना, सुदामा नगर खंडवा से आपके साथ हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। अगला मैसेज हमें मिलता है हरजिंदर सिंह भाटिया का, आपके साथ है एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया जमशेदपुर से। और अगर आप एक मैसेज भेज चुके हैं तो उसे लगातार बार बार ना भेजें, संदेश आपका शामिल हो गया है और आप ही के दोस्त हैं।

जो मैसेज भेज रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो नाम पढ़े जा चुके हैं उनमें वो नाम कहीं खो जाएं जो एक या दो ईमेल करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक लिसनर या एक परिवार जो हमें सुन रहा है वो अनगिनत मेल भेजे ताकि उसका नाम हम स्क्रीन पर देख सकें, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ लिसनर ऐसे हैं जो हमें बहुत सारी ईमेल्स भेजते हैं इस 50 मिनट के प्रोग्राम में, तो उससे करने से आप बचें। आपका नाम शामिल हो गया है, इतनी सारी ईमेल ना भेजें। ऐसा मास्टर अशोक कुमार ने भी किया है और जिंदर सिंह भाटिया ने भी किया, इसलिए मैंने आपका नाम लेने के बाद ये बात बताई। मोहम्मद सईद अब्बासी प्रोग्राम सुन रहे हैं, काला बाजार फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अबान आपके साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। उषा चंदन का भी मैसेज हमें मिलता है, अमृत फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। पांडू चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडू, रंग, कुंभार, आप सब कोलगांव से मन भावन को सुनते हैं और पसंद करते हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। रिजवान खान, आयशा साबिया, अनस और रेहान की पसंद का अगला गाना है खुशबू फिल्म से।

अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है, नमक हलाल फिल्म से एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट पहुंचती है और ये रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजी है बोधराज खोरवाल ने। आपके साथ है भानु प्रकाश, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और अगला गाना आप ही की पसंद का होगा। संजय साहू पोटिया कला दुर्ग से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके साथ हैं सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। विट्ठल जाधव का भी मैसेज हमें मिलता है, अलग अलग फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव आपके साथ हैं। मूसा शेख भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आपका मैसेज हमें अशोक वर्मा और राजकुमार गुडाना के साथ

0: मिलता है। आफताब अंसारी भी हैं मैसेज भेजने वालों में, गंज डुंडवारा से आपके साथ हैं रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवा मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। प्रवीण रंपारा ने बड़ा ही कलरफुल मैसेज हमें भेज दिया है। जगदीश जौहरी, पूजा पायल आपके साथ हैं गुजरात गांधीग्राम से, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कोई भी गाना सुनना चाहते हैं। आर कुमार का भी मैसेज हमें मिलता है वड़ंगखेड़ा पंजाब से। मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा आपके साथ हैं और नाचते हुए मोरों की आपने इमोजीज भेजी हैं, बहुत ही खूबसूरत ईमेल। नवाब अहमद का भी मैसेज मिलता है बल्ली मारान से, रिमझिम के गीत सावन गाए, ये बहुत ही एक खूबसूरत गीत है, इसकी आपने रिक्वेस्ट की है। अगला गीत जैसा हमने कहा था पहुंचा रहे हैं आप सब तक, नमक हलाल फिल्म से।
1: अरे, ना, ना, ना।

0: वैसे तो आपकी बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन फिलहाल हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आकर जानेंगे अगला गाना किसकी रिक्वेस्ट का है मन भावन में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, मैं हूं आपके साथ अपराजिता।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

जी आप सुन रहे हैं मन भावन, मैं हूं आपके साथ अपराजिता और आपकी पसंद के गाने आज आपको सुनवा रहे हैं। ऐसा ही मन भावन में होता है, आप हमें रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं fmgoldair@gmail.com, ये है हमारा ईमेल आईडी और इसी पते पर बहुत सारी ईमेल्स आप लोगों ने भेजी हैं। जैसे कि अगली ईमेल सौराष्ट्र से आई है, राजकोट से जगदीश गुजराती और प्राची और प्रवीण पुजारी की। पाकीज़ा फिल्म से आप कोई भी गाना सुनना चाहते हैं, दिलावर खान प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और रघुवीर नगर से आपके साथ है हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, और आप सभी को सलाम और ढेर सारी शुभकामनाएं लिखकर भेजते हैं। बल्बलू ठेकेदार का भी मैसेज हमें मिलता है और जल्दबाजी में पढ़ने में यही होता है। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज शामिल करना चाहती हूँ इसलिए बहुत तेज़ पढ़ना पड़ता है। शेख शागिर, शेख वजीर, सोहेल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और अजलान आपके साथ हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, ऐसा आप बताते हैं। नईम खान का मैसेज विष्णु गार्डन से आता है और मेरा साया फिल्म से आप अक्रम के साथ ये गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज है हमारे पास शीशपाल वर्धन का और आप गाज़ियाबाद से हमें मैसेज भेजते हैं। रामेश्वर साहब का भी मैसेज हमें मिला है और कानपुर से आपका मैसेज आया है। उमा कांति कठेरिया आपके साथ हैं, प्रोग्राम को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। सुरसांगम विरमगाम जंक्शन से

अजीत भावसर प्रमिला जी का भी मैसेज हमें मिला है, और फारूक अली खान, फैजी फरहाज, फरहीन फाहिरा और ताहिरा, आप भी मैसेज भेजते हैं और सुनना चाहते हैं ये अगला गीत जो मैं आपको सुनवा रही हूँ गुरु फिल्म से। तो आइए मिलकर मजे लेते हैं बारिश के इस गाने के साथ।

भाई हम तो कहेंगे हाँ हाँ रे हाँ हाँ रे हाँ हाँ रे, क्योंकि हम प्ले कर रहे हैं आपकी पसंद के गाने। संदीप मक्कड़ हमें अगला मैसेज भेजते हैं। ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत कमल सानी के साथ गौरैया जालंधर से। सतीश अनेजा भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, और आपने हमें बिमला अनेजा के साथ चंडीगढ़ से मैसेज भेजा है। प्रोग्राम पसंद आ रहा है क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है और आप गाने एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश गोगिया का भी मैसेज हमें मिलता है दिल्ली से, और आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। जाकिर साहब का मैसेज मिलता है हमें, आप मुंगी सापुर से हमारे साथ हैं। आपके साथ है मंसूरी, कमरून, निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। राधेश्याम देवांगन है हमारे साथ भवरपुर से, और आपके साथ है चंपा देवांगन, नेहा जगदीश, राजू देवांगन। अगला मैसेज मिलता है हमें हेमंत कुमार का, और राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट लिखकर भेजी है। जिवेश नंदन, निलेश प्रियदर्शनी और अंकुर प्रियदर्शनी आपके साथ हैं, और बिहार से आपने हमें मैसेज भेजा है। मैसेज आता है हमारे पास जय का, और जय के साथ हैं सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल। आराधना फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। स्वरूप आनंद सरजल ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है, अगला गीत आप ही की पसंद का है। तो कयामत से कयामत तक, इस फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। और आपके साथ हैं जोधा पीपल, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आपने अकेले अपने नाम के साथ मैसेज भेजा है, आपकी जगह का नाम है ये जो मैंने अभी पढ़ा। तो आपकी पसंद का गीत आप अपने परिवार के लिए सुनना चाहते हैं, बिल्कुल आप तक पहुंचा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्वागत एक बार फिर आप सभी का मन भावन में। आपकी ढेर सारे मैसेजेस अभी भी मैं देख पा रही हूँ और ऐसा ही मंजर तब था जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था। सुरेंद्र संधू मैसेज भेजते हैं हमें, आपके साथ हैं अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा और मैक्स, और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, पंजाब से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। बबलेश पवार का मैसेज हमें मिलता है और आप हमें मैसेज भेज रहे हैं बाड़मेर से। डैनी पवार, मनीष पवार आपके साथ हैं और खुदा बख्श खलीफा ने भी बावड़ी से आपके साथ मैसेज भेजा है। आपकी पसंद का होगा अगला गीत मैंने प्यार किया से। संजय ढींगिया हमारे साथ हैं बागपत से, आपके साथ हैं नमन और अपार ढींगिया भी, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं आप भी, शुक्रिया आप सभी का। और नवाब अहमद का मैसेज हमें मिलता है, अशरफ अली, सिराज मिथुन और बबलू कश्यप आपके साथ हैं दिल्ली से। और देखिए जब मौसम बदलता है ना और जब आप भीग जाते हैं तो थोड़ा उसका असर आपकी तबीयत पर भी होता है, गले पर भी होता है, जो आपको अभी पता भी चल रहा होगा मेरी आवाज़ सुनने में। तो बस मैं यही कहूँगी कि मौसम का आप पूरा जो है आनंद लीजिए, चाहे आप घर में हैं चाहे बाहर हैं, क्योंकि इतनी गर्मी थी तो बारिश का जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है। एक तो इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी उमस जो है वो दूर हो जाती है, और जो मौसम होता है उसके साथ आप जानते हैं कि हर फल और सब्ज़ी का अपना एक रूटीन होता है जो उसके साथ उगती है और उसके सपोर्ट में आगे बढ़ती है, और हर मौसम का अपना एक आनंद होता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अगर आप भीग गए हैं तो जल्द से जल्द घर पहुंच के कपड़े बदलें और अदरक वाली गर्म चाय ज़रूर पिएं, और एक कप मेरी तरफ से भी पी लें, है ना। चलिए तो अब देखते हैं, गाना मैंने आपको बता दिया है मैंने प्यार किया से होगा, लेकिन कुछ नाम और शामिल कर देती हूँ। प्रकाश वर्मा प्रोग्राम सुन रहे हैं, काला बाजार फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा के साथ, और अशोक डाले का भी मैसेज हमें मिलता है आपके साथ। श्रीरामपुर से हैं सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, और पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा सोनवने, प्रोग्राम को

सब भी पसंद कर रहे हैं और अंकित कांगड़ा सुन रहे हैं प्रोग्राम, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा के साथ, अनिल मोहन प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक के साथ, और आप ही के साथ मैसेज आता है बब्बल साहब का मोहाली पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा कह रहे हैं कि हम कोई भी गाना आपको सुनवा दे, दिग्दर्शन गौर है हमारे साथ, और मेरठ कैंट से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं कविता गौड़ के साथ, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, पुकार, लावारिस, नमक हलाल, इनमें से आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो मैं खुश हूं कि मैं नमक हलाल का गाना आपको सुनवा चुकी हूं। निसार अली, उग्रसेन यादव, मोहम्मद इरशाद, मधु किरण, सरफुद्दीन अंसारी, धर्मेंद्र चींपा और इशाक मोहम्मद, भगवती सिंह प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं ऐसा बताते हैं। भगवती ने चाय और एक खूबसूरत इमोजी हमें बनाकर भेज दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेज आता है फागुराम यादव, राजवीर सिंह का भी प्रोग्राम आप भी पसंद कर रहे हैं। संबलपुर कांकेर से आपके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। फिलहाल समय हो गया है गाना सुनने का, मैंने प्यार किया से।

तो बताइए आज के गाने आपको कैसे लगे, और यही उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आप इन गानों को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये आप ही की रिक्वेस्ट है, और फिर ये बात भी है कि मौसम भी कुछ आप ही के फेवर में है, यानी कि खूबसूरत गाने जो हैं उनका साथ मौसम भी दे रहा है। बिल्कुल सही बात। सीताराम कांगड़ा का मैसेज मिलता है हमें, और कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु अनोखी यादव फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आता है सुधाकर जाधव का। अनूप कौर प्रोग्राम सुन रही हैं गुड़गांव से सरोज बंसल के साथ, और साथ ही मैसेज आता है मोहम्मद इरशाद का। इसी के साथ मैसेज आता है मोहम्मद कमर का, आपके साथ आपने हमें अकेले ही मैसेज भेजा है, मुझे लगा कि जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं परिवार के नाम लिख देते हैं, खैर कोई बात नहीं। जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा नाम पढ़ना चाहती हूँ। अशोक डाले, जगन्नाथ पटेल, धर्मेंद्र चीपा, अक्रम हुसैन प्रिंस, मोहम्मद इरशाद, राम कुमार रेवार, मुकेश कश्यप, साधना गोयल और स्वर्ण सिंह, मधु किरण, उग्रसेन यादव, दिग्दर्शन गौर, सरफुद्दीन अंसारी, निसार अली और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, आप सब प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। राजवीर सिंह, अंकित कांगड़ा, सुरेंद्र संधू, उग्रसेन यादव, संतोष नावंदे, प्रकाश वर्मा, रामशरण विश्वकर्मा, बबलेश पवार, सतीश अनेजा, राधेश्याम देवांगन और रुपेश सांगई, मधु किरण, लुबना अंसारी, सलीम अख्तर, गौरी शंकर वर्मा, बबलू ठेकेदार, आप सबने प्रोग्राम को पसंद किया। और छोड़े जा रही हूँ मंजिल फिल्म के इस गाने के साथ आप सभी को।

इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद आप सुन सकेंगे समाचार, और उसके बाद एक बार फिर मैं मिलूंगी आपसे ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब भारत के 140 करोड़ लोग और इंडोनेशिया के 29 करोड़ लोग साझा प्रगति की दिशा में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो इतिहास रचा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब और देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपील खारिज कर दी। उन्होंने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को भी बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा।

मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इससे पहले बेल्जियम ने अमरीका को 4-1 और स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20

0: मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इससे पहले बेल्जियम ने अमरीका को 4-1 और स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच और रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon, highlighting the growing partnership between the two nations. Mr. Modi said, India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
1: The Prime Minister said India and Indonesia are working closely to counter terrorism through the Joint Working Group mechanism. He reaffirmed India's commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific and stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the region. Mr. Modi also said the reforms of the United Nations Security Council can no longer be delayed. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of Memorandum of Understanding MOUs aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President Prabowo in Jakarta, Prime Minister Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector.
2: 2018 mein bani hamari comprehensive strategic partnership aaj ek nayi udaan le rahi hai. Hum development, security, technology, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: The two leaders agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia.
2: सबसे पहले मैं इस गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: India Meteorological Department IMD has said that conditions are favorable for southwest monsoon to further advance into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat and the remaining parts of Haryana and Punjab and Rajasthan during the next 3 days. The weather department forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra today. The Enforcement Directorate today conducted searches at 5 premises in and around Kolkata in the case of dishonest financial dealings and routing of suspected funds in the bank accounts of Trinamool Congress. The preliminary investigation by ED has revealed

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। आइए सुनते हैं उजाला फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: and category. Interested candidates should carefully check the detailed eligibility criteria, education qualifications, experience requirements, and reservation details before applying online through the official UPSC recruitment portal at UPSC Online. Kindly go on to www.upsa.gov.in, or you could also go on to www.narcoticsindia.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अनुसंधान सहायक एक पद उपलब्ध है। मुख्य विषय के तौर पर मौसम विज्ञान या समतुल्य विषय के साथ मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भौतिकी अथवा अनुप्रयुक्त भौतिकी में PhD की उपाधि होनी चाहिए अथवा कम से कम 3 वर्ष का शोध अनुभव होना चाहिए। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.shar.gov.in अथवा apps.shar.gov.in। आवेदन किए जा सकते हैं 17 जुलाई 2026 तक। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय में स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 लेवल 6 का पद भरने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.narcoticsindia.nic.in। वेबसाइट पर रिक्तियां टैब के अंतर्गत सभी आवश्यक जानकारियां आपके लिए उपलब्ध हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2 रिक्तियां, जूनियर सुपरिंटेंडेंट 3 रिक्तियां, जूनियर असिस्टेंट 2 रिक्तियां, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 रिक्ति, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 रिक्ति, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 रिक्ति, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 और जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट BSBE के लिए भी 1 रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विभाग की वेबसाइट www.iitdh.ac.in। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सक्रिय भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोर फैकल्टी हाईवेज, कोर फैकल्टी ब्रिज, कोर फैकल्टी पेवमेंट और कोर फैकल्टी सेफ्टी। आवेदन प्रपत्र, योग्यता, आयु सीमा आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी की वेबसाइट iahe.mort.gov.in। भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल 6 पद उपलब्ध हैं। कमांडेंट IAM IAF विमानपुरा पोस्ट बेंगलुरु में और पद का नाम है MTS। इसी प्रकार बहुकार्य कर्मचारी MTS के लिए शैक्षणिक योग्यता वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा बराबर की परीक्षा। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 27 जून 2026 से 3 जुलाई 2000

0: 26 तक का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं दोस्तों शाम के 4:30, यानी वक्त आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे रोज की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, और फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, उनसे पूछेंगे क्या लाए हैं हमारे लिए आज वो कुछ खास। इसके अलावा खेल की गतिविधियों पर तो दोस्तों रहती है हमारी बराबर नज़र, और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद है जिनकी आज पुण्यतिथि, या दुनिया से जिस दिन जिन्होंने आज के दिन कह दिया था अलविदा, और या फिर जिन्होंने इस दिन दुनिया में आकर उसे और जगमग रोशन किया, यानी जिनका है जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ हूं मैं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: हेलो मुनीश। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू अस ऑन परिक्रमा 100.1 FM गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट मुनीश। And well, listeners, here are three interesting things about him. He based his famous character Sherlock Holmes on his old professor. Secondly, he was a real-life investigator, much like his famous detective. And lastly, he believed in fairies and mediums, despite writing the most famously logical character in fiction. Yes, we are talking about the Scottish author and physician, best known for creating the logical sleuth Sherlock Holmes. Yes, is none other than Sir Arthur Conan Doyle. And today we observe his death anniversary, and we shall talk about him later in a program. But first we begin with the news headlines at this hour.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne Jakarta mein Indonesia ke Rashtrapati Prabowo Subianto ke saath pratinidhi mandal star ki vaarta ki. Dono deshon ke beech mahatvapurn khanijon, takniki, krishi aur samudri suraksha sahit kai kshetron mein samjhauta gyapanon ka आदान प्रदान हुआ।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्फर्ड इंडोनेशियाज हाईएस्ट ऑनर बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इन जकार्ता।
1: गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और 11 को दिया आजीवन कारावास।
2: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लैग्स ऑफ ट्रॉफीज ऑफ ड्यूरान कप टूर्नामेंट 2026 इन न्यू दिल्ली टुडे।
1: और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा।
2: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about birth of cinema in India and the World Chocolate Day. And today marks a truly magical day in India's cultural history, the birthday of Indian cinema. Imagine this, is July 7th, 1896. The venue is the elegant Watson Hotel in Bombay, now Mumbai. And the audience is paid just 1 rupee for something they have never seen before. The lights dim, a machine begins to whir, and suddenly moving images appear on a screen. It was nothing short of magic. That unforgettable evening, the Lumiere brothers, pioneering French cinematographers, introduce India to the wonder of motion pictures by screening 6 short films, and the Times of India called it the miracle of the century, and it truly was. No one knew then that this single event would spark one of the world's largest and most vibrant film industries.
1: So Abhishek, when you started, you just mentioned Sir Arthur Conan Doyle. Mm. So there's hardly any connection between two, but I can't help, you know, saying that if Doyle comes, can Watson be left behind?
2: Absolutely.
1: Because Hotel Watson.
2: Yes, absolutely.

0: where it was held.
1: The connection is remarkable, isn't it?
0: Yeah. So दिखाई गई छह फिल्मों में Arrival of a Train, Leaving the Factory, The Sea Bath, A Demolition, Ladies and Soldiers on Wheels और Entry of Cinematograph शामिल थी. दर्शक मंत्रमुग्ध थे, हैरान थे और पूरी तरह सम्मोहित हो गए थे. उत्साह इतना ज्यादा था कि ठीक एक हफ्ते बाद 14 जुलाई को बॉम्बे के नॉवल्टी थिएटर में एक और स्क्रीनिंग हुई जिसमें 24 फिल्में दिखाई गईं, जिनमें तूफानी समुद्र, वाटरलू ब्रिज पर टेम्स नदी जैसी फिल्में शामिल थीं. और ये स्क्रीनिंग 15 अगस्त तक चलती रहीं और पूरे शहर में सिनेमा का जादू फैलाती रहीं.
1: बट हियर समथिंग फैसिनेटिंग. Long before films arrived, India already had a rich tradition of storytelling through natya, drama, nritya, expressive dance, and nrita, pure dance. And these centuries-old performing arts naturally became the heartbeat of Indian cinema. And perhaps that's why even today our films are famous across the world for the spectacular songs, colorful dances, larger-than-life emotions, and unforgettable music. And soon after the Lumiere brothers' visit, cinema fever spread to Kolkata and Chennai. And in 1898, Indian photographer Hiralal Sen filmed scenes from a stage production called The Flowers of Persia, making him one of India's earliest filmmakers.
0: और इसके बाद 1899 में H.S. भाटवाड़ेकर ने The Wrestlers बनाई, जो किसी भी भारतीय द्वारा शूट की गई पहली मोशन पिक्चर और भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री थी. इसमें मुंबई के हैंगिंग गार्डन्स में हुए कुश्ती के एक मुकाबले को दिखाया गया और ये सिनेमा की दुनिया के एक बड़े नाम की एक साधारण शुरुआत थी. ये सफर 1912 में भारत की पहली रिलीज हुई फीचर फिल्म श्री पुंडलीक के साथ आगे बढ़ा. लेकिन असली मील का पत्थर आया एक साल बाद 1913 में. दादा साहब फाल्के, जिन्हें प्यार से भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र रिलीज की, जो भारत की पहली पूरी लंबाई वाली फीचर फिल्म थी. ये भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक मूक मराठी फिल्म थी. और दिलचस्प बात यह है अभिषेक, ये उस समय की फिल्मों में स्त्रियां, महिलाएं काम नहीं करती थीं, इसलिए महिला किरदारों को पुरुषों ने ही निभाया था. और बावजूद इसके ये फिल्म बहुत कामयाब रही और इसने फिल्म निर्माताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया.
1: Yes, and then came another revolution. On March 14, 1931, Indian audiences heard voices coming from the screen for the very first time. Alamara, directed by Ardeshir Irani, and became India's first talking film, or talkie, and the age of sound had arrived, changing cinema forever. The same year also witnessed the arrival of South India's first talkies, Prahalada in Telugu and Kalidas in Tamil, followed by Bengal's first talkie, Jamai Shosti. And cinema is now speaking every language of India.
0: 1930 के दशक में भारतीय फिल्मों में एक और चीज शामिल हुई जो उससे हमेशा के लिए जुड़ गई, यानी संगीत. इंद्रसभा और देवी देवयानी जैसी फिल्मों में शानदार गाने और नृत्य दिखाए गए, जिससे उस शैली की नींव पड़ी जिसे आज दुनिया प्यार से बॉलीवुड म्यूजिकल कहती है. और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीय सिनेमा ने रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, संगीत और डांस को अपनाया और इन सब को मिलाकर एक रोमांचक पैकेज बनाया. इन्हें मसाला फिल्में कहा जाने लगा. दरअसल एक ऐसी शैली जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों का मनोरंजन करती है. फिर 1947 में भारत के बंटवारे ने फिल्म निर्माताओं पर गहरा असर डाला और नुकसान, उम्मीद और हिम्मत की जबरदस्त कहानियों को जन्म दिया. और फिर आगे चलकर पैरेलल सिनेमा यानी समानांतर सिनेमा नाम की एक नई लहर भी आई, जिसमें असल जिंदगी से जुड़ी कहानियों और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दिया गया.
1: एंड दिस रिमार्केबल ईरा गेव अस अनफॉरगेटेबल क्लासिक्स लाइक नागरिक बाय ऋत्विक घाटक, दो बीघा जमीन बाय बिमल रॉय, एंड इन 1955 सत्यजीत रे इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू पोथेर पचाली, the first film of the internationally acclaimed Oppu trilogy, a masterpiece that brought global recognition to Indian cinema. And today, India produces films in dozens of languages, entertains audiences across continents, and continues to inspire generations with stories that make us laugh, cry, dream, and believe. So the next time you watch a movie in a theater or stream one at home, remember it all began with 6 silent films, 1 rupee ticket, and a magical evening on July 7th, 1896.
0: जी हाँ, और ये शानदार सफर आज भी

0: जारी है और नए नए विषयों पर नए नए निर्देशक लगातार शानदार कहानियां पर्दे पर पेश करते रहते हैं। हम इस सेगमेंट का समापन उन सभी कहानीकारों, फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, संगीतकारों और सपने देखने वालों को सलाम करते हुए करते हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को आज इस मकाम तक पहुंचाया है। भारतीय सिनेमा को जन्मदिन की बधाई। हमेशा की तरह दोस्तों, फिल्में देखते रहिए, सपने देखते रहिए और फिल्मों के इस जादू का जश्न मनाते रहिए।
1: यस एंड नाउ मुनीश, वी मूव ऑन टू आवर सेकंड टॉपिक इन आवर डेटलाइन सेक्शन एंड दैट इज द वर्ल्ड चॉकलेट डे। And today we've got something extra sweet for you. Can you guess what makes July 7th so deliciously special? Yes, that's right. It's the World Chocolate Day, a day dedicated to celebrating one of the world's most loved treats. Whether you are a fan of silky milk chocolate, rich dark chocolate, creamy hot chocolate, gooey chocolate cake, crunchy chocolate cookies, or handmade truffles, today is the perfect excuse to indulge without the guilt.
0: लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है और सैकड़ों साल पुराना है। दरअसल इसकी कहानी कोको बीन से शुरू होती है, जिसे मैसो अमेरिका की प्राचीन सभ्यताओं जैसे माया और एजटेक में बड़ा ही कीमती माना जाता था। चॉकलेट बार और कैंडी के आने से बहुत पहले कोको का इस्तेमाल होता था एक कड़वे ड्रिंक के तौर पर और उसे इतना कीमती समझा जाता था कि इसका इस्तेमाल करेंसी के तौर पर भी होता था। जी हाँ, क्या आप यकीन करेंगे?
1: सो वाई इज वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 7th? बिकॉज हिस्ट्री टेल्स अस दैट ऑन जुलाई 7th 1550 चॉकलेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप एंड दिस रिमार्केबल इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ चॉकलेट्स इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम एन एंशियंट बेवरेज टू अ वर्ल्ड वाइड फेवरेट एंजॉयड बाय मिलियंस एवरी सिंगल डे एंड ऑल्दो चॉकलेट हैज बीन लव फॉर सेंचुरीज World Chocolate Day itself was officially established much later in 2009, giving people around the globe a special day to celebrate this irresistible delight.
0: और आज चॉकलेट सिर्फ एक मीठी चीज से कहीं ज्यादा है दोस्तों। ये जन्मदिन, त्योहारों, शादियों, जश्न और सुकून भरे पलों का भी एक हिस्सा है। चॉकलेट का एक डब्बा थैंक यू या बधाई कह सकता है या बस ये जता सकता है कि मैं आपके बारे में सोचता हूं। और हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक मजेदार बात और है कि कुछ चॉकलेट बार बनाने में सैकड़ों कोको बीन्स लगती हैं और हम जो भी चॉकलेट खाते हैं वो सावधानी से खेती, कटाई, रोस्टिंग और बनाने की एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा होती है। दरअसल चॉकलेट के हर टुकड़े के पीछे होता है ढेर सारा प्यार और बहुत सी मेहनत।
1: And so how can we celebrate World Chocolate Day, Munish? Treat yourself to your favorite chocolate, bake a delicious chocolate dessert, enjoy a warm cup of hot chocolate, surprise a friend with a chocolate gift, or simply spend time with loved ones sharing something sweet. After all, chocolate has a wonderful way of bringing people together. And as we celebrate today, remember that behind every chocolate bar lies a rich history spanning centuries and cultures, a journey that transformed a humble coca bean into one of the world's most beloved delights. Wishing you a joyful and chocolate-filled celebration. So until the next time, stay happy, stay sweet, and keep smiling.
0: और दोस्तों, अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास आज उनके पास।
1: As Prime Minister Narendra Modi's state visit focuses deep attention on modern corporate and digital frameworks, a remarkably favourable parallel bridge is quietly operating inside the hidden laneways of Victoria's capital Melbourne. It is universally celebrated as a premier global city of speciality coffee. But a fascinating new chapter of cross-cultural gastronomy is emerging as the elite local roasteries embrace the rich heritage and unique beans of the Indian subcontinent.
2: Melbourne is famously obsessed with its coffee culture, heavily anchored in a legacy introduced by European immigration decades ago. However, the contemporary speciality landscape is experiencing a subtle, highly sophisticated shift. Elite Melbournean coffee creators are increasingly recognizing India not just as a massive consumer market, but as a producer of world-class, shade-grown speciality Arabica and unique single-origin beans. This growing local appreciation matches a broader international surge in trade. According to recent Coffee Board of India data, India routinely exports nearly 70% to 75% of its total domestic coffee harvest to global markets. For the complete 2025-26 fiscal year, India's overall coffee exports crossed a monumental

0: में हमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: सिक्किम इज ऑल सेट टू पार्टिसिपेट इन फिफ्थ इंडिया ताइक्वांडो पुमजे एंड पैरा नेशनल चैंपियनशिप 2026-27। मोर देन 24 एथलीट्स फ्रॉम सिक्किम विल कम्पीट इन द फिफ्थ इंडिया ताइक्वांडो पुमजे एंड पैरा नेशनल चैंपियनशिप विच विल बी हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र फ्रॉम 8th टू 11th जुलाई। द चैंपियनशिप विल टेक प्लेस एट द श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन महालुंगे एंड विल फीचर कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री इन कैडेट, जूनियर एंड सीनियर divisions. Sikkim's athletes will participate in a range of events including freestyle team Pumze, junior team Pumze, under 17 freestyle Pumze female, etc. The team will lead by coaches Ganga Pradhan, Saroj Gurung, Ugen Gurung and Sunil Limbu. Medal winners will be shortlisted for the final India National Camp selection trials, with successful athletes earning the chance to represent India at the 2026 World Taekwondo Pumze Championship in Chancheon, South Korea. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashbani News Gangtok.
0: और दोस्तों आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का और जानते हैं क्या है वहां की हलचल। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के करने मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा।
2: एंड मूविंग ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस गेव अप द इनिशियल गेन्स एंड एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट टुडे। द सेंसेक्स ड्रॉप्ड 104 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,181। द निफ्टी डिप 32 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,399। बोथ इंडिसेस ड्रॉप 0.13%। फॉर मोर अपडेट्स अबाउट द मार्केट एक्टिविटीज ट्यून इन टू आकाशवाणी बायलिंगुअल प्रोग्राम मार्केट मंत्र एट 6:30 PM दिस इवनिंग।
0: और दोस्तों आइए अब हम याद करें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को और फिर उसके बाद बात करेंगे हम उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: The 7th of July is the birth anniversary of Muhammad Barkatullah, who was born in 1854 in Bhopal. After receiving education in Bhopal, he moved to London for higher education. After the completion of his studies, he lived in Liverpool, England, and worked as a journalist and published articles relating to revolutionary activities and Indian political affairs. During his stay in London, he befriended leading revolutionaries such as Lala Hardayal, Shyamji Krishnavarma, Nasrullah Khan, and Raja Mahendra Pratap.
4: In 1907, he met Madam Bhikaji Kama in the USA. All the while, he continued contributing articles on Indian politics and Muslim-Hindu Brotherhood in journals and newspapers of New York City. In February 1909, he shifted his base to Tokyo, Japan, and started a journal titled Islamic Fraternity in 1910, and also taught as professor of Hindustani at the University of Tokyo. From Tokyo, he visited Cairo, Constantinople, and Moscow, and met Shyamji Krishnavarma and other revolutionaries at these places in 1911.
3: Meanwhile, his anti-British exhortations in the press were so popular and influential that the British government not only banned his write-ups in India, but also pressurized the Japanese authorities to take a hostile view of him. This resulted in the banning of his journal and cancellation of his professorship in 1914. Later, he shifted from Japan to San Francisco, USA, with the hope of furthering the cause of the Ghadar Party, in whose establishment in 1913 he played a pivotal role.
4: During World War I, he went to Germany and formed the Indian Independence Committee at Berlin in collaboration with Champakaraman Pillai, Lala Hardayal, and others.
3: He died in exile in September 1927 at San Francisco and was buried in Sacramento City Cemetery, California. Salutes the great nationalist.
4: We also remember Ram Singh, who was a resident of Savai Madhopur in Rajasthan. He was a sepoy in the Punjab Regiment of the British Indian Army. He fought in World War II in Malaya and Singapore. We salute the brave son of the school.
3: The 7th of July is also the death anniversary of Naginder Singh. He was a sepoy in the 8th Punjab Regiment of the British Indian Army. We salute

0: this brave son of the soil.
1: Yes, and like we are mentioning in the beginning of our program, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle passed away on this day. In 1930, he was a British writer and physician. He is best known for his 4 novels and 56 short stories about the fictional consulting detective Sherlock Holmes and his assistant Dr. Watson, which are milestones in crime fiction, and for his first work featuring Professor Challenger, The Last World, 1912, which gave its name to the subgenre of speculative fiction. He was a prolific writer who produced over 200 stories and articles, 4 volumes of poetry, and a number of works for the stage, and he was knighted by King Edward VII in the 1902 coronation honors.
2: Aur dosto, aaj janmdin hai, jayanti hai, Major Vikram Batra ki. जिन्होंने कहा था तिरंगे को फहराकर या फिर तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा. परमवीर चक्र विजेता मेजर विक्रम बत्रा को हम सलाम करते हैं. मेजर विक्रम बत्रा आज ही की तारीख यानी 7 जुलाई के लिए जाने जाते हैं. और फिर उनका जो गांव है पालमपुर में, घुग्गर गांव में उनका जन्म हुआ था, और दुश्मन भी कहते हैं कि उनके नाम से कांपते थे. उनकी शहादत के बाद पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप का नाम दे दिया गया. करगिल युद्ध के नायक, अदम्य साहस और जिनकी वीरता की कहानियां आज भी हमारी रगों में जोश भर देती हैं. करगिल युद्ध में उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल की 13वीं बटालियन का नेतृत्व किया. और दरअसल आज पुण्यतिथि है उनकी, 7 जुलाई 1999, जब 24 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था. उन्हें हमारा नमन.
1: सीड बैरेट, बॉर्न रॉजर कीथ बैरेट, पास्ड ऑन दिस डे इन 2006. ही वाज एन इंग्लिश सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड गिटारिस्ट हु को फाउंडेड द लेजेंडरी रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड इन 1965. He served as a band's original frontman, lead guitarist, and primary creative visionary during the early psychedelic era. And let's listen in to the hit track, Another Brick in the Wall.

0: और दोस्तों आज है पुण्यतिथि हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर अदाकारों में सबसे पहले गिने जाने वाले दिलीप कुमार साहब की, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार जिनका असल नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के उन्हें दिया गया। इसके अलावा पद्म भूषण पद्म विभूषण से भी उनको नवाजा गया और उनकी खास फिल्में रही मुगले आजम, देवदास, राम और श्याम और नया दौर, मधुमति, गंगा यमुना और कितनी फिल्में हम गिनवाएं आपको। दरअसल एक्टिंग का अपने आप में एक पूरा स्कूल कहलाते थे दिलीप साहब। तो सुनते हैं उन्हीं की यादगार आवाज में एक संवाद और फिर उनकी ही फिल्म से एक गीत।
1: तकदीर के हादसों से ना इतिहास नहीं बनता राजेश्वर, और पुराने जख्मों को अगर तुम खरीदोगे तो खून के फव्वारे फूट निकलेंगे राजेश्वर।

0: और दोस्तों अब दीजिए हमें परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ आपने सुना अभिषेक को। कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर newsonair.gov.in। आज्ञा दीजिए,
1: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडीह, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, जिनिया, कनक पुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढाब, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये साजापानी, गट्टीबुड़ा, करडेगा, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, तीता पाकेर, सोनाजोरी, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, गेदा, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये तौलीपाली, धोबनीमार, बैगामार, पीड़िया, बोतली, सेंद्री, पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा, मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगो, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी

0: ये वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
1: बलौदा बाजार वन मंडल के सोना खान और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये फुरफुंदी, झालपानी, औराई, बरबसपुर, मुरुमडी, छताल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड़, ताराझर, डडईपानी, होलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या

0: के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें अपन गोट का विषय होगा अनुशासन के शुरुआत खुद लेकर आओ, क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे रजनी, रजक और साथी। शाम 7:00, रात्रि 8:00 और रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात में सुनिएगा, खरीफ माह फसल चक्र अपनावन, श्री अन्न मिलेट लगावन। हेलो किसान वाणी में सुनिएगा, बरसात के मौसम में आवारा पशुओं का प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर पदमचंद जैन, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पशु चिकित्सालय बैरन बाजार रायपुर।

रात्रि 9:30 पर सुनिएगा रूपक, धरती की पुकार। लेखक और प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। रात्रि 10:00 श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का गाया राग मेघ और बरवा। ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुबह 7:05 पर, सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे आपके पत्र, प्रस्तुतकर्ता दीपक हटवार होंगे। सुबह 9:00 गांधी चर्चा में सुनेगा महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ, वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर की। सुबह 9:40 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे आशा सिंह मस्ताना। कल सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित अरुण कुमार भादुरी का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी सुनो। आप सुन सकते हैं 11:05 पर NCERT दोपहर 12:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: मनखे के चोला बड़ भाग ले मिलथे, अपन कर्म ले जिंदगी ह सुघर खिलथे।
1: कोनो के पीरा ल बांट लेबे संगे, तभे ये जन्म के असली फल मिलथे। दिन मंगल के सुघर संझा म, युवानी के संझती बेरा म, युवानी के जम्मो श्रोता संगवारी मन ल मोर यानी दामिनी सेन के सुघर राम राम।
0: औ संग म अपन मयारू संगवारी उत्कर्ष सुनबोर के झोंकव मया भरे जोहार। दामिनी,
1: हाँ?
0: आजकल के मौसम ह मनभावन और सुहावन है।
1: हाँ?
0: रिमझिम रिमझिम पानी गिरई बड़ सुघर लागथे।
1: सिरतुन म उत्कर्ष और संग म चाह और गुलगुल घरिया मिल जाते ना, तो झन पूछ, मन अति खुश होते ना कि बता नहीं सको ना।
0: तय तो मोर मन के बात ल कह दिस दामिनी।
1: हाँ?
0: फिर दामिनी,
1: हाँ?
0: ये पानी बरसात मना हमला बाहर के खाना खाए बर बचना चाहिए।
1: सिरतुन,
0: बरसात म रिकिम रिकिम के रोग रही।
1: हाँ?
0: जैसे डेंगू मलेरिया और जड़ बुखार के जोखिम रही थे।
1: सिरतुन संगवारी, हमला हर चीज में अनुशासन लाना चाहिए। अनुशासन, हाँ? हाँ, कोनो स्कूल कॉलेज कार्यालय तक सीमित नहीं है।
0: हाँ?
1: बल्कि अपन जिंदगी में अपन खान पान और हर चीज में अनुशासन रखबे बहुत ही जरूरी है न।
0: हाँ दामिनी,
1: हाँ?
0: हमन अतिक अनुशासन अनुशासन कहा थन।
1: हाँ?
0: फिर अनुशासन ला हमन खुदे नहीं रहीबो।
1: हाँ?
0: तका हमर संगवारी मन हा अनुशासन के बात ला मानही।
1: सिरतुन कहा था उत्कर्ष, अनुशासन की शुरुआत हम लोग खुद ले करे ला पड़े। हाँ? नियम और बेरा म चलना मनखे एक दिन सफल जरूर होते ना।
0: हाँ? संगवारी हो, एक सफल मनखे की मेहनत के संग ओखर अनुशासन निरंतर अभ्यास और लगन रही थे।
1: सिरतुन उत्कर्ष, बरसात के दिन आ गए।
0: हाँ?
1: साग भाजी हा घलो लगाए के बेरा हो गए।
0: हाँ, हाँ?
1: हरियर हरियर साग भाजी बारी बोबे कतका सुघर दिखी ना।
0: ता संगवारी हो, हमर पुरखा मन ये बरसात के दिन मा की तैयारी ना बहुत पहली छले कर देवे।
1: हाँ?
0: लकड़ी छेना ला भीतरा दे।
1: हाँ?
0: गर्मी घरी मा मुरकू पापड़ बड़ी बिजौरी लाइबरी दही बोरे मिर्चा।
1: हाँ?
0: और रंग रंग के खोला और सोक्सा बना के रख डाले।
1: एकदम खाए खाए के जिनिस के नाव लेहस उत्कर्ष, तो मोर मुंह में पानी आ गए।
0: ऐसे का
1: तो कब खवावे थे लाइबरी और बिजोरी ला।
0: हाँ, खवाओ ना, लेना तेरी साजन भाई।
1: हाँ?
0: ते एला देख, हमार पुरखा मन कतिक सुघर ढंग के ना।
1: हाँ?
0: खान पान ला एकदम ड्राइंग डिहाइड्रेशन के माध्यम ले कतिक सुघर संरक्षण करके रखे तेला।
1: सुतन उत्कर्ष, अतिकन जिनिस मा ते नून नहीं डारबे ते कैसे लागी तोला।
0: हाँ, कैसे बात कथा दामिनी।
1: हाँ?
0: नून नहीं डारबे ते का कैसे खाबो हमन, ओमन तो एकदम बेस्वाद हो जाई भाई।
1: एकदम सही कहा था उत्कर्ष।
0: हाँ?
1: वैसने नून के बिना खान पान कलेवा घलो बेस्वाद हो जाते। वैसने अनुशासन घलो नहीं रही, बिना शासन के हमारी जिंदगी बेस्वाद रही थे।
0: हाँ, और सफलता और अपन लक्ष्य की प्राप्ति पर एक ही निशेनी काम आती।
1: हाँ?
0: वो है अनुशासन की।
1: संगवारी हो, हमन स्कूल जावान तो स्कूल के यूनिफॉर्म के रंग एक ही रहे।
0: हाँ?
1: स्कूल में पढ़ाया लेकर कतको बड़े घर के रहे।
0: हाँ,
1: चाहे
0: हाँ?
1: वो गरीब रहे चाहे वो अमीर रहे।
0: हाँ?
1: सबो जन भर एक ही रंग के यूनिफॉर्म और
0: हाँ?
1: एक ही बेरा रहे।
0: हाँ?
1: यही सब हमला अनुशासन के एकता के भाव सिखाते।
0: हाँ, सही कहा था दामिनी।
1: हाँ?
0: अनुशासन नहीं रहती तका हम रोज के संझा 5:10 मा युवाणी के बगिया में अपन संगी संगवारी मन कर गोट बात करे बार आ सकते इनका
1: नहीं। कोनो भी काम ला करबे जैसे कि हम काम करते हैं तो कोनो 4 बजे तो कभी 5 बजे।
0: हाँ?
1: अनुशासन नहीं था मन कैसे करबो, जब अनुशासन रही थे तो बेरा और कारज में सबो काम सुरता आ जाते।
0: हाँ दामिनी।
1: हाँ?
0: हमला अनुशासन की बड़का उदाहरण ना आकाशवाणी के लिए कुन औठिया मा मिले च नहीं सके।
1: हाँ?
0: अब देखना बिहनिया ले वंदे मातरम के जयगान ले शुरू हो जाते।
1: हाँ?
0: और 7 बजे नमस्कार रायपुर और आने आने कार्यक्रम बिल्कुल बेरा के बेरा एकदम चलत रही थे।
1: संगवारी हो, अमोला ना मालूम है आप मन हा अब्बड़ अनुशासित रहा थू।
0: हाँ?
1: काबर की रेडियो सुनैया हमार संगीत संगवारी मन बेरा के नियम के संग चलते ना।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा था दामिनी।
1: हुँ?
0: ये दारी एल नीनो इफेक्ट के सेती दक्षिण पश्चिम मानसून हा हमार राजमत होकिन देरी ले आए।
1: हाँ?
0: देखना बच्चर गर्मी हा बाढ़ जाते और वर्षा ऋतु के आगमन हा सलग देरी होवा थे भाई।
1: सिरतुन मा।
0: हाँ?
1: हमार किसान मल्ला हरुना यानी कि जल्दी पाके धान बोए किस बोना चाहिए।
0: हाँ?
1: काबर के छत्तीसगढ़ के बरानी खेती हरे देखा।
0: हाँ?
1: स्थिति हमला बरसात में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सोखता गड्ढा के निर्माण करना चाहिए।
0: हाँ अभी के कृषि वैज्ञानिक मन ना मौसम ले लड़े के क्षमता रखिया कृषि मन के विकास करे है।
1: हाँ?
0: वैसने किसम मन ला किसान ला लगाना चाहिए।
1: सिरतुन उत्कर्ष।
0: हाँ?
1: अनुशासन ना खेती किसानी में ही लागू नहीं हुआ।
0: हाँ, हाँ?
1: ये तो खेती किसान बहुत लागू थे। देखना।
0: हाँ?
1: धान नहीं

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: समय में नहीं बोबे बेरा में नहीं बोबे तो कैसे दिक्कत हुई।
1: हाँ फिर दामनी जेखर यहाँ सिंचाई के साधन नहीं रहे तेखर बार यही उपाय कि मन हरुना किस्म के धान लगाए। माई धान ना अब्बड़ पानी लगते और बेरा के घलो अब्बड़ मांग करते भाई।
0: सेतुन मा, अनुशासन हा सड़क में रेंगे बर गाड़ी चलाए के बेर हेलमेट पहनना सीट बेल्ट पहनना गीला कचरा ला हरा डब्बा में डालना सूखा ला नीला डब्बा में डालना सबले बड़का बात कंपेयर संगी मल्ला 11 बजे तक ऑफिस पहुँचना ये अनुशासन ही हमला सिखाते।
1: समझ गयो दामनी में। ते हाँ आज मैं कनिक 10 मिनट लेट से पहुँचे हूँ देरी हो गई मोल ताना मारा था इसका।
0: मैं तो मजाक करत रहे उत्कर्ष हमार मन के तो हंसी ठुटोली चलते रही। हमार संगवारी हमार श्रोता संगवारी मन के खातिर चल सुनथन ये मनोरंजन खातिर सुखरकन गीत ला।
1: हाँ ले बो सुनाओ ये सुखरकन गीत ला।

0: संगवारी अभी आप में सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला जिला पंसौर में सजारी से मंसूरी सिंह सत्य भामा सिंह
1: और सुने बर चहरी से शीतला नगर दोरगले अरपा पैरी पार्वती राधा चंद्रा करमन मोतीमबाई मानिकपुरी धनवंतीन बाई योगिता बाई मानिकपुरी मन गणेश धाम परसुली खेरता बाजार बालोदले रही से और इमन सुने बर चहरी से चुड़ीराइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरेशी रेहाना बेगम मौजत साजिद मन मिलाईगढ़ रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल कुमारी भव्या प्रियांश देवांगन मन भाटापारा ली नारायण यदु पुनिया यदु राकेश यदु आरती यदु मन और मयंक रेडियो सोता संग नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा शोमा शारदा दामिनी वर्मा मन दामिनी
0: हाँ?
1: आज कावा रे
0: आज तो मंगलवार हरे उत्कर्ष
1: अच्छा तो मंगलवार के का खास रही थे
0: का खास है ती बता दा कोनो जगह भंडारा रही इसका चल उत्तर जाबो
1: नहीं नहीं आज हवे ज्ञान बांटे के दिवस
0: हाँ
1: यानी सवाल जवाब पूछे के दिन आए
0: सिर्तन उत्कर हाँ? लेना पहली हमार संगवारी मल्ला पाछू सवाल के जवाब मल्ला बता डर था
1: हाँ तब पाछू सवाल जवाब अंक 237 के पहलिया सवाल हरे
0: पहलिया सवाल हरे संगवारी हो सवाल जवाब अंग 237 के पहलिया सवाल हरे गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन रही से
1: और उत्तर आए भास्कराचार्य ये हा ओखर प्रसिद्ध किताब सिद्धांत शिरोमणि के एक भाग हरे
0: सवाल जवाब अंग 237 के दूसरिया सवाल रही से हाल ही मा छत्तीसगढ़ मा वैज्ञानिक खोज ले हीरा कहाँ पाए गए रही से
1: और उत्तर हवे महासमुंद जिला सरायपाली क्षेत्र में बलौदा बैलमुंडी गांव के डायमंड ब्लॉक के लगभग 200 टन वैज्ञानिक प्रशिक्षण ले हीरा पाएगीस
0: सवाल जवाब अंक 237 के तीसरे सवाल रही से छत्तीसगढ़ के सबले ऊंचा जगह कौन सा हरे
1: और उत्तर रहिस गौरलाटा चोटी जी हाँ बलरामपुर जिला के सामरी पाट क्षेत्र में स्थित है जिखर ऊंचाई लगभग 1225 मीटर हवे
0: सवाल जवाब अंग 237 के चौथे सवाल रही से सिरपुर हा काखर यानी कौन ले वंश के बेरा मा बौद्ध शिक्षा के केंद्र रहीस
1: और उत्तर है पांडु वंशी ये वंश के प्रतापी राजा महाशिव गुप्त बालार्जुन के संरक्षण मा सिरपुर बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बने रहीस
0: ए अंक खातिर हमार पचवे सवाल रही से इंद्रावती नेशनल पार्क हा कौन ले जानवर बर प्रसिद्ध है
1: और उत्तर रहिस दुर्लभ जंगली भैंसा और बाघ पर वन भैंसा हा हमार राजकीय पशु घलो हवे
0: सवाल जवाब अंग 237 के आखिरी सवाल हरे हाल ही मा समाज सेवा के क्षेत्र मा छत्तीसगढ़ मा पद्मश्री ले सम्मानित कौन ला करे गे हवे
1: और उत्तर रहिस डॉक्टर बुधरी ताती बुधरी ताती ला बड़ी दीदी के नाम ले घलो जाने जाते ये है दंतेवाड़ा जिला के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहीन
0: उत्कर्ष
1: हाँ
0: पाछू सवाल के हवन तो उत्तर बता रहे
1: हाँ
0: अब कौन संगवारी हा कतेक जवाब ला सही भेजे ते का नाम ला घलो बता डा थन
1: हाँ
0: तो का नाम है ग्राम बाजार चौक कल्लू बाजारी जिला राजनांदगांव ले वीर नारायण उके ईशान चंद्र प्रकाश मालिनी मुनमुन उके मन धरसीवा बस स्टैंड छेदूलाल यादव सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव रानू कुरेशी खुशी प्रवीण इकबाल कुरेशी मन दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता बलदाव राजेश्वरी आस्था प्राची पीएल नैना निशा निक्की नियति कान्हा यादव मन लंघान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल भारती बघेल मन कोरासी भैसा रायपुर ले पवन कुमार साहू कांति पंकज सुष्मिता दीपक साहू बेला शिवाले जीवनलाल सिन्हा निर्मला देवेंद्र सुधा अंबा सिन्हा मन बिलईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन ग्राम पहारा अहिवारा ले पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर मन लक्षनपुर ले रामजी साहू जीवनलाल रजक निमकी शिवम सतीश मुकेश साहू मना पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता मना खल्लारी भीम कोजले जी एल साहू सरोज छोटी पिंकी राधिका

0: साहूमन कोहका भिलाईले उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल अजीत आयुष नंदनी जंघेलमन बागबारा भदरसीले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल आदि से गंडई टिकरी पाराले जागेश्वर देवांगन कचरी बाई दीपक कुमार जय ऋषभ रिचा देवांगन मना ग्राम पुतकी कला कवर्धाले राधे श्याम पांडे वीना विनय शंकर नयन पांडे समानसु पांडेमन यवतलाल विदर्भ महाराष्ट्र ले संतोष खड़से विनोद खड़से सिरगट्टी कुटेना गरिया बांधले टीकम साहू भूषण कुसुम झामेश्वरी वासुदेव जीतू लेखू गोपाल पुष्पलता भोला तृप्ति लक्ष्मी लवली शशि ओजल काव्यांश विरांश कीर्तिमान सोनिया रुक्मणी साहूमन हन श्यामनगर दुर्गले प्रदीप खंडेवाल नीता खंडेवाल देवरी भाटापाराले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री रोहानसी ले डगेश्वर राम साहू ग्राम फूलझर घटरानी ले योगेश्वर साहू डोमेश्वरी यामनी मुस्कान हर्षिता साहू भीम खोस तरपोंगी ले संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिमा शीतल गुप्ता मनहान
1: ग्राम तेंदुभाटा मगलोड जिला धमतरी ले उमेंद्र कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन दिव्यांश भूपेश शिवा निषादमन हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस शांति रिचा गायत्री वैष्णवमन ग्राम गेंदाटोला बाजार चौक ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता मन लोकापाली छतवन ले पुनीतराम नीतू जीतू रिया जया राहुल युवराज सिंह सूर्यवंशी पंकज निर्मला निहारी कमन ग्राम पीपल लोड सरगांव मुंगेली ले दीपेश वर्मा पूनम ज्योति शिवांश वर्मा मन नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा शारदा मयंक वर्मा मन चिरमिरी कुरसिया कल्लारी रे इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ ग्राम संतोष नारायण प्रसाद लहरे दिनेश कालेन्द्री लहरे मन जहानगर दुर्गले आरसी कामड़ी करुणा मीना अश्वनी विपुल कामड़ी मन भिलाई ले कृष्ण कुमार मीरा और खुशभूषण बैरमन कुर्सीपार भिलाई ले ही जागेश्वर साहू दिव्या सलेन्द्री ललित साहू मन ग्राम तुमड़ी बोल राजनांदगांव ले डाकेश्वर साहू हंसिका वैशाली पुष्पा साहू मन बिलनगोंदी छुरिया राजनांदगांव ले तेगचंद सोनबैर प्रतिमा चित्रांशु वर्षारानी सोनबैरमन पथरिया भरेवा ले चंदुराज सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा पंकज सुस्मिता दीपिका साहूमन कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव सहमालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी सेविनायनी आकाश प्रतिभा पूर्वा पूनम चंद्रवंशी मन खुर्सीपार भिलाई ले नारायणी सोनबैर सुरेंद्र कुमार योगेंद्र सोनबैर मन ओमाखोड़ा रेंगा खार ले देवी सिंह नेताम राजेंद्र दक्ष प्रिया गीत सरगम नेताम मन बहरमरा ली राजनांदगांव ली मेवाला साहू गोदावरी ओमादित्य दर्शी तेजस्वी साहू मन ये रिहिस सही सवाल देवैया संगी मन के नाम
0: उत्कर्ष
1: हाँ?
0: अभी तो हमें जितना संग दो सवाल जवाब 237 के सही जवैया सोता संगवारी मन के नाम बता रहे
1: हाँ?
0: अब संगवारी मन अगोरा करत होई कि सवाल जवाब 238 के प्रश्न कब बताही
1: बता
0: पेन कापिल धर के तैयार हो संगवारी ओखल पहले सुनता ने सुघर अकन माटी के गीत ला।

0: संगवारी अभी आप मैं सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला जिला अपन स्वर में सजारी से विदोशी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार
1: और सुने बर चहरी से ये संगवारी मन लोरमी चचेड़ी रे कमल कांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज रेशम मरावी मन सासपुर लोहारा दनिया खोर्दले कवर्धा से गुणीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत मन आमलीड कमरधाले संतोष राजपूत हेमप्रभा ट्विंकल गौरव राजपूत मन वार्ड नंबर दो गंडई पंडरियाले शिवा यादव राजू राज चिंटू तरुण चौबाव कन्हैया निर्मला यादव मन लोरमी चचेड़ी ले शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या शिवम कोलाम मन डुमर टोला मंगचुवा बालोद ले भगवानी राम कराटे गोपिका भावेश माधुरी देवी कराटे मन पीपरपारा पालचुवा मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन वंशिका दिवाकर मन बंगला मटिया बालोद ले शिवकुमार अंगारे अंजनी त्रंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे मन बीरनपुर कला दनिया गंडई ले सुरेश कुमार साहू तन्मय टेमेश्वरी खिलेश्वरी जत्री बाई साहू मन समडी नमा पाराडी राख मुकेश गुप्ता दीपक श्रद्धा गुप्ता अंकु गुप्ता आदित्य राधे राघव गुप्ता मन
0: उत्कर्ष
1: हाँ
0: संगवारी मन पेन कापी धर के तैयार बैठे हुई
1: हाँ
0: तो झटकुन बता डल थान सवाल जवाब अंग 238 के
1: हाँ
0: तो संगवारी हो सवाल जवाब अंग 238 के पहले यह सवाल हरे तीजन बाई पंडवानी के कौन से शैली में अपन प्रस्तुति देवे
1: तीजन बाई पंडवानी के कौन से शैली में अपन प्रस्तुति देवे
0: संगवारी हो सवाल जवाब अंग 238 के दूसरा यह सवाल हरे

0: विश्वमा कौन से संस्था हा अनुशासन अउ शांति बर काम करते?
1: विश्वमा कौन से संस्था हा अनुशासन अउ शांति बर काम करते?
0: संगवारी हो, सवाल जवाब अंक 238 के तीसरा सवाल हरे। 7 जुलाई 1999 मा कौन वीर सपूत अपन शहादत दे रहिस जेखर नारा रहिस ये दिल मांगे मोर?
1: 7 जुलाई 1999 मा कौन वीर सपूत अपन शहादत दे रहिस जेखर नारा रहिस ये दिल मांगे मोर?
0: ए अंक खातिर चौथा प्रश्न हरे। पीएम किसान योजना के तहत किसान मनखे मल्ला ए बछर म कतेक राशि दे जाते?
1: पीएम किसान योजना के तहत किसान मनखे मल्ला एक बच्छर म कतेक राशि दे जाते?
0: सवाल जवाब अंक 238 के पांचवा सवाल हरे। ब्रिक्स म एस कौन देश के प्रतिनिधित्व करते?
1: ब्रिक्स म एस कौन देश के प्रतिनिधित्व करते?
0: सवाल जवाब अंक 238 के आखिरी सवाल छत्तीसगढ़ी जनोला हरे। करिया गाय कौड़ी खाए दूध ला छोड़ के पन्हा खाए?
1: छत्तीसगढ़ी जनोला करिया गाय कौड़ी खाए दूध ला छोड़ के पन्हा खाए।
0: संगवारी हो, जेन संगवारी ह सवाल ला नहीं लिख पाए होई जेकर छूट गए होई तेखर बर मैं सवाल ला एक घो औ दोहरावत हूँ, आप मन ध्यान ले सुन लो। सवाल जवाब अंक 238 के पहले यह सवाल रही से तीजन बाई पंडवानी के कौन से शैली में अपन प्रस्तुति देवे? दूसरा यह सवाल हरे, विश्व में कौन से संस्था हा अनुशासन और शांति पर काम करते? तीसरा यह सवाल हरे, 7 जुलाई 1999 में कौन वीर सपूत अपन शहादत दे रहिस जेखर नारा रहिस ये दिल मांगे मोर? चौथा यह सवाल हरे, पीएम किसान योजना के तहत किसान मनखे मल्ला एक बछर म कतेक राशि दे जाते? पांचवा सवाल हरे, ब्रिक्स म एस कौन देश के प्रतिनिधित्व करते? सवाल जवाब अंक 238 के छत्तीसगढ़ी जनोला और आखिरी सवाल हरे, करिया गाय कौड़ी खाए दूध ल छोड़ के पन्हा खाए। संगवारी हो, अब जैन संगवारी मतलब संगवारी आप मन तो सवाल सुन रहे, अब सवाल के जवाब भेजे पर आप मतलब पता तो चाहिए ना, तो ओखबर हमर पता हरे, क्रम सवाल जवाब युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड हरे 4920001। और जैन साथी हमला ईमेल के माध्यम में जवाब भेजना चाहते ओकर पर हमारे ईमेल पता हरे airyouts9@gmail.com। और संगवारी हो, कोड लगाए पर झन भुलाओ, सवाल जवाब के कोड हरे y13। तो सवाल जवाब इहे तक। उत्कर्ष,
1: हाँ
0: संगी मन से गोड बात करत करत अब मोला एक ठन गीत सुने के मन करत है।
1: ऐसे का
0: तो मनोरंजन खाते सुनथन चले सुघर अकन माटी के गीत ला।

0: अभी आप जेन गीत ला सुनत रहे हो ओला अपन शर्मा सजा रहीस सोम ठाकुर और साथी मन
1: और सुने बर चारिस हमारे साथी मन है पुरैना शहीद नगरी छुईखदाले धर्मेश जंगेल संतराम लोधी नागेश्वर जगेल साहूकर लोधी मन चर डोंगरी पिपरिया ले कबीर धामले दुर्गाराम साहू अजय जय किसान कुमारी इंद्रानी माया साहू मन रानीगांव नगरी ले खिलेश साहू चित्रेखा शुभल सेजल साहू मन हिच्छा भा समुन ले अदालत दास वैष्णव मानस दास सतीश ऋचा गायत्री वैष्णव मन पोटिया कला दुर्गले संजय साहू सुजाता ससांग सीमा साहू मन कुमरदा राजनांदगांव ले ताराचंद साहू ओम माही धर्मेश साहू मन साले भाटा महासमुंद ले जीतू ध्रुव केवल किरण दिव्यांशी खेमू ध्रुमन पीपरलोड सरगांव ले दीपेश वर्मा पूनम ज्योति श्रीवांश वर्मा मन भटगा कोदवा गुडान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल मरावी मन कुई भंगी टोला ले ननका राम धुर्वे जामुन बाई फितरत राम मालती धुर्वे मन बाघ मुंडा कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन मन हसदा नंबर दूले कमलेश साहू जितेंद्र दिलीप प्रवीण पायल लक्ष्मी साहू मन इहे लिधि से गीतांजलि आकांक्षा पार्वती टिकेश्वरी नागेश्वरी तुलसाराम साहू मन उत्कर्ष
0: हाँ
1: ते नानकर रहा त स्कूल जाबर तोला बिना कर कोनो उठावे ते झटकुन उठ जावत रहते स्कूल जाबर
0: नहीं भाई मोर माँ हाँ सबेरे उठाए
1: काबर
0: अरे मैं हाँ एकदम लेट से उठो ना आज देख ले
1: का हो गए तो
0: आजे ना मोर दाई दादा मन दो घाव तीन घाव उठाइस
1: देखा तो संगवारी हो एला स्कूल जाए बर एक दाई बाबू है एला कोचक कोचक के उठावे तब जाके उठाए
0: ता?
1: चल तो मोर स्कूल हावे मोर स्कूल के पहला दिन एक नहीं उठाते रहते हैं
0: नहीं उठाते रहे हो
1: हाँ
0: ले दे के आज एक लकड़ धकड़ उठे हो
1: हाँ
0: 8:30 बजे सब उठे हो खा के आ मोर माँ है ये बाजारी से
1: हाँ
0: गुलगुला भजिया
1: हाँ हाँ
0: मिल खा के आ
1: हूँ देखा तो संगवारी हो अकेला अकेला खाई से चल तो संगी कर जात हो गोट बात करे बर बड़ दिन के बाद भेंट हुआ थे ओकरो बर एक टिफिन में धर ले तो तको नहीं की झंग उठावे ते मोर करा
0: नहीं की से मोला नहीं मना कर दे नहीं धरो भाई के कह के सबो दाम नील खादी मोर बर कहीं नहीं बचाई से
1: निचट खबरा चते हरे

0: संगवारी हो अभी आप मन जे माटी के गीत ला सुनत रहे हो ओला अपन शर्मा सजाय रहीस मनीराम साहू और साथी मन
1: अब सुने भर चारे समर ए संगवारी मन हा दतरंगी भाटा पारा ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर दीपक ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा मन बाग बहारा भदरसी ले पन्ना लाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन मन पहारा अहिवारा ले पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर मन कछाड़ी ले बिग्रदास मानिकपुरी रितिक दास उर्मिला मानिकपुरी मन हन बाग मुंडा कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन नंदनी प्रकाश गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन मन आमा खोड़ाले रेंगनार खाले देवी सिंह नेताम राजेंद्र सिंह दक्ष प्रिया गीताराम महामाया नेताम मन यवर्त लाल विदर्भ महाराष्ट्र ले संतोष खड़से और विनोद खड़से मन बागबारा भदरसी ले पन्ना लाल सेन खुशबू तारा मना लक्षण पुलेह राम साहू जीवन लाल रजक निमकी शिवम सतीश मुकेश साहू मना सनोली राजनांदगांव ले देवचरण साहू हेमा वेदांत वैभव साहू मना बिलईगढ़ ले रोशन लाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन मना गिर्रा पलारी लेहे वीरेंद्र साहू सोनू आशीष कपिल साहू मना कोहिकापुरी दुर्ग ले सूरज भान साहू कमलाबाल साहू मना सलोनी राजनांदगांव पुनीक राम साहू सीताबाई प्रियांशु गौरव साहू मना झालाबांध राजनांदगांव ले पारक दास साहू किरण रेशमा सोनू गुनीता साहू मना मही दही साजा ले बेमेतरा ले हेमा देव विशु विभू साहू मना देवर बीजा बेरला ले दिनेश देवांगन सृजन देवांगन रुपेश राजपूत चिरमिरी कुरासिया कलारी ले इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ राम सौदर्न पलारी ले प्रकाश वर्मा निखिल प्रिंस यशस्वी वर्मा मन शहीद नगरी छुई खनाले धर्मेंद्र जघेल संतोषी लोधी नागेश्वर जघेल साहूकार लोधी मना कुर्मा जानगीर चापा लेहे दिलदार मिरी ज्योति जानवी दीक्षांत मजेदार मीरी मन और हावे संगवारी मन हावे सौगा मगर लोडले फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित देविका रानी गजेंद्र कुमार चंदन मनहर चर डोंगरी पिपरिया लेहे दुर्गाराम साहू अजय कुमार जय किसान साहू साहू मनहर इंद्राणी माया साहू मनहर लोरमी चचेड़ी लावे शंकर कुलाम संतोषी अजय संध्या शिवम कुलाम मनहर रिंगनी छत्तीसगढ़ लेहे दिनेश वर्मा करुणा वर्मा बटेना पाटन दुर्ग लेहे बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति रेखा धनेश्वरी उमेश मिथिलेश मुरली वर्मा मनहर उत्कर्ष
0: हाँ
1: तोर गाँव कौन हरे
0: मोर गांव हाँ कौन कौन गांव बताऊं भाई मोर तो कई ठग गांव है
1: कैसे बीना एक गांव है और संजय दूसरा गांव है कहीं ऐसे तो नहीं कि एक गोर एक ठग गांव हावे और दूसरा गोर दूसरा गांव हावे
0: हाँ वैसा नहीं भाई
1: ता?
0: दामनी हा? एक गांव ना मोर पैतृक गांव है
1: हा, हा?
0: और दूसरा गांव ना मोर बाबा के रिस जगह ले रिस ऊंचे
1: ऐसे कहीं ना उत्कर्ष
0: त एक गांव हाँ दोनों दोनों गांव ना
1: हाँ हाँ
0: नान गांव है
1: हाँ
0: एक ठग छुरिया तीर बेलर गोंदी हवे
1: हाँ
0: त एक गांव हाँ मोहरा कर भवर मरा है
1: ऐसे उत्कर्ष और मैं
0: रही थो भिलाई में
1: हाँ तो उत्कर्ष मोहरा मेला में तो जावा था मैंने घूमे बरते अपन गांव के
0: जातो ना भाई मोहरा मेला में तो सोतोट के चल देतो मैं हाँ सोतोट के वहा
1: हाँ?
0: कार्तिक पुन्नी जातो
1: हाँ?
0: नहा के डोंगा डील था नदिया में ओखर बाद दिन भर मेला घूमथन
1: तो गांव के घर और गांव के मड़ई के बातें मत कर वो तो एकदम अलगे चले थे ना
0: हाँ संगवारी मन तो गीत के अगोरा करत हुई एक आठ ठग गीत सुना दे थन ले तो
1: मोला लागते मोले ज्यादा अगोरा तो उत्कर्ष लावे तो संगवारी वो दुरियाथन और सुनथन सुघर अकन माटी के गीत ला

0: गाँव के ताई दीदी बहनी बड़े अब्बड़ है मोर पिरिया,
1: अब्बड़ है मोर पिरिया, अब्बड़ है मोर पिरिया।
0: गाँव के ताई दीदी बहनी।

0: संगवारी, अभी आप में सुनाते रहो सुघर अकन माटी के गीत ल, जेला अपन स्वर में सजारी से धुअरा मरका दुखिया बाई मन हा।
1: और सुने बर चहरी से दतरंगी ले विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा रेना यदु, लक्ष्मीना यदु मन, शूचौक सांकरा भूमि तेलताली मनोज निषाद, प्रतिभा पूर्वी खुशांत निषाद मन, कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिर्री गाता पाराली, लावण्या कुमारी उपासना देवराज साहू, ओम कुमार पुष्पराज प्रभुराम साहू मन, बेमेतराली सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजेश सारथी मन।
0: संगवारी मन से गोट बात करत करत कब बेरा पहा जाते पता नहीं चलत कस ना, तो जाए के पहली काली के करम बता देते संगी हो। काली के कार्यक्रम आप मैं सुनो हिंदी में, जिमे सुनो पत्र मिला युगल गीत, स्वस्थ रहो मस्त रहो, यही गोट बात संग अपन संगवारी दामनी सेन
1: और उत्कर्ष शनबोर के
0: देवो अभिदा नमस्कार।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी है। 6 बजे है हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर। सुनो न।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरेती में अबले थोड़कीन देर बाद मुख्यमंत्री निवास में हो ही शुरू। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कहीने कि ये बच्छर भगवान जगन्नाथ के रथयात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाए जाही और पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई लकाली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में संगीतमय श्रद्धांजलि दे जाही। अब समाचार विस्तार ले। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पगरेती में अबले थोड़कीन देर बाद संध्या 7 बजे नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री

0: निवासमा सुरु होही। यी बैठकमा भाजपा अवैया मानसून सत्रलाई लेके अपन रणनीति तयार करही। यी बैठकमा विपक्ष ढाले उठैया मुद्दा उपर गोट बात होए के सम्भावना हे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र ले पहली मुख्यमंत्री विष्णु देसाय और विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत आज रायपुर स्थित स्पीकर हाउस में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ले भेंट करी। ये दौरान अवैया मानसून सत्र के सुचारू और प्रभावी संचालन समेत आने आने संसदीय विषय मनु पर गोट बात हुई। संगे संग बछर 2026 के उत्कृष्ट विधायक सम्मान बर संभावित नामों पर घलो विचार विमर्श करेगी। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू होही। ये सत्र 17 जुलाई तक चलही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रगति परियोजना के शुभारंभ करीन। एकर उद्देश्य 20,000 ले ज्यादा कृषि उद्यमी और 20,00,000 किसान मल्ला सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया ले गोट बात करत श्री चौहान विकसित भारत के लक्ष्य ला पाए बर कृषि विकास समृद्ध गांव और समृद्ध किसान मन के विकास की जरूरत ऊपर बल दीन। उमन कहीने कि सरकार ये लक्ष्य ला पाए बर हर संभव कोशिश करत है। श्री चौहान कहीने कि सरकार है प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत 26,000 लघु कृषि उद्यमी मल्ला प्रशिक्षित करे के फैसला ले है। उमन कहीने कि ये उद्यमी एक गांव के कृषि काम में बदलाव लाए बर 100 ले 200 किसान मन के संग मदद करती। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कहीने कि ये बछर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाए जाही। ये ट्रेन ला रोज चलाए जावत ट्रेन मन के अलावा अलग ले चलाए जाही। नई दिल्ली में श्री वैष्णव कहीने कि पूरी रेलवे स्टेशन में 30,000 यात्री मन पर अस्थायी व्यवस्था करी जाही। मुख्य सचिव विकास सिल्हा आज मंत्रालय में राज्य शासन के जम्मू विभाग के सचिव मन की बैठका लेके योजना और कामकाज की समीक्षा करी। बैठका में मुख्य सचिव है जम्मू विभाग मन में बैकलॉग के खाली पद मन के भर्ती पर कार्यवाही जल्दी शुरू करे के निर्देश दिन। संगे संग विभागीय सचिव मल्ला उखर विभाग के योजना के काम ला सरलक देख रेख करे पर घलो कहीं। बैठका में मुख्य सचिव है ई ऑफिस लोक सेवा गारंटी नियत निर्णय डैशबोर्ड सुघर छत्तीसगढ़ पीएम प्रगति पोर्टल ई प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल सेवा सेतु ग्रामीण विकास विभाग के योजना पीएम सूर्य घर बिजली समेत आने आने योजना मन के जानकारी ली। प्रदेश के आने आने ग्राम पंचायत मन मा आज रोजगार और आवास दिवस के आयोजन करेगी। एकर माध्यम ले गांव वाले मन ला विकसित भारत जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कामकाज के जानकारी देगी। संगे संग पात्र हितग्राही मन ला आने आने जन कल्याणकारी योजना मन के संबंध में घलो जागरूक करेगी। कार्यक्रम के दौरान श्रमिक मन के पंजीयन ई KYC और PM आवास योजना ग्रामीण के तहत बनत आवास मन के कामकाज की समीक्षा करेगी। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बछर पूरा हुए में आयोजित सहकारी सप्ताह के काली समापन होगी। ए मौका में रायपुर में राखे के कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के अनावरण करी। उमन बताइने कि प्रदेश में करीबन 1300 सहकारी समिति मन के गठन करेगी है। समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन के सीधा प्रसारण घलो करेगी। कार्यक्रम में बताया गया है कि रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का वित्त बछर 2025-26 में 216 करोड़ रुपया के फायदा पाए है। कार्यक्रम के सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता घलो संबोधित करी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। वर्षा के मौसम में बिजली ले हो या दुर्घटना मले बचाव खातिर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लोगन मले विशेष सावधानी बरते के अपील करे है। कंपनी कहीने कि बिजली के खंभा

0: टूटे तार, ट्रांसफार्मर और आने आने विद्युत उपकरण मन ले सुरक्षित दूरी बनाए रखे और एमा कोनो किस्म के छेड़छाड़ झन करें और कोनो मेर बिजली के तार या उपकरण हा टूटे फूटे दिखे तो तुरते एखर बर खबर टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली एप या तीर तखार के वितरण केंद्र मन ला देवें। सरलग होत वर्षा ला देखत कृषि विशेषज्ञ मन ह प्रदेश के किसान मन ला सलाह दे है कि खेत मन में पर्याप्त पानी होए में मचाई करके धान के रोपाई कराए। तीर्थकार मन नर्सरी नहीं है तो किसान मन ह अंकुरित बीजा के लेही विधि ले ड्रम सीडर या छिटकवा विधि ले बुवाई कर सकत है। विशेषज्ञ मन ह कही ने कि मानसून के देरी ले आए के स्थिति किसान मन 125 दिन ले 130 दिन में पकैया जल्दीच और मध्यम बेरा के धान किस्म के चुनाई कराए। सीधा बोवैया किसान मन ह 15 जुलाई तक और रोपा लगाने वाला किसान मन ह 30 जुलाई तक काम पूरा कर लें। कृषि विशेषज्ञ मन ह धान के सीधा बोवाई में खर पतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे और रासायनिक उर्वरक के संग हरियर खाद और जैव उर्वरक मन ला बउरे के आग्रह करे है। मुख्यमंत्री सुदेश साय है काली 8 जुलाई के रायपुर के डुमर तराई में नवीन थोक बाजार के नामकरण और लोकार्पण करही। समारोह के पगरेती आवास मंत्री ओपी चौधरी करही। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में करीबन 36 एकड़ क्षेत्र में विकसित ये आधुनिक थोक बाजार व्यापारी मन के जरूरत ला ध्यान में रखत आधुनिक सुविधा मल्ले बनाए गए है। ये बाजार रायपुर समेत पूरा प्रदेश के व्यापारिक विकास ला नवा दिशा दे के संग आर्थिक गतिविधि मल्ला घलो नवा गति दी है। पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई ला काली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ता काशी मंच में संगीत में श्रद्धांजलि दे जाही। संस्कृति विभाग कोती ले राखे गए ये कार्यक्रम मंझनिया 2 बजे शुरू होही। एमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मन शामिल होही। प्रदेश के पद्मश्री और राज्य अलंकरण ले सम्मानित कलाकार मन के संग आने आने लोक कलाकार मन गीत पंडवानी और लोक कला के प्रस्तुति के माध्यम ले स्वर्गीय तीजन बाईला श्रद्धांजलि अर्पित करही। बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य 1 जुलाई ले 31 अक्टूबर तक पर्यटक मन पर बंद रही। वन्य जीव मन के प्रजनन काल ला सुरक्षित राखे बर ये फैसला ले गए है। फिर ये दौरान बलौदाबाजार नव मंडल ह बारनवा पारा सिरपुर पर्यटन सर्किट द सेक्रेट गार्ड लैंड के शुरुआत करे है। ये पर्यटन सर्किट में सिरपुर धसकुंड जलप्रपात, तुरतुरिया इको कल्चर सेंटर, गिरौदपुरी धाम, सिद्धखोल जलप्रपात, सोना खान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, देवपुर नेचर कैंप, अचानकपुर के देव हिल्स इको इथेनिक स्टे, कोडार डेड समेत कतकोन मुख्य प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हवे। अब थोरकी समाचार सार मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरेती में काली 8 जुलाई के नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होही। कृषक विभाग डहर ले ये बच्छर के डॉक्टर खूब चंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार बर प्रदेश के पात्र किसान मन ले आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक किसान मन 31 जुलाई तक आवेदन कर सकत है। पुरस्कार ले संबंधित पात्रता नियम और आने आने जानकारी कृषि विभाग के वेबसाइट में उपलब्ध है और मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप बर ऑनलाइन आवेदन करिया के आज आखिरी दिन हरे। ये योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चुने गए लड़का मल्ला हर एक महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फिर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरेती में अबले थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री निवास में हो ही शुरू। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कही ने कि यह बच्चर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाए जाही और पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाईला काली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में संगीत में श्रद्धांजलि दे जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन है सिरावत है। जय जोहार।
1: आदौ मुख्याः वार्ताः। वैश्विक शांति स्थिरतायै भारत इंडोनेशिया देशयोर रणनीतिक संधि सुदृढीकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आह्वानम्। जकार्तायाम् इंडोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च संबोधितवान्। भारत इंडोनेशिया देशयोर मध्ये महत्वपूर्ण खनिज नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी कृषि अथ सामुद्रिक सुरक्षा इत्यादिषु विविध विषयेषु प्रमुख संधिपत्राणि परस्परं विनिमयीकृतानि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बिंतंग आदिपूर्ण इत्युपाधि

0: दिना समलङ्कृतः। केरलराज्यस्य वायनाड् जनपदे एकस्मिन् सुरङ्गमार्गनिर्माणस्थले सञ्जातेन दारुणपङ्कपातेन त्रयः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागस्य पूर्वसूचनानुगुणम् आगामिषु त्रिषु दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु विशेषतः गुजरात, हरियाणा, पंजाब अथ राजस्थानस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु प्रावृत्स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलायाः द्वितीये तृतीये द्वन्द्वे भारतम् अद्य रात्रौ नॉटिंगम नगरस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यस्य इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं सहैव द्वयोः देशयोः व्यापक रणनीतिक संधेः कृते नूतन ऊर्जां प्रदातुं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं विचार विनिमयं अकारि। द्वयोः राजनेत्रोः समुपस्थितौ रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, सामुद्रिक सहयोग, नवोन्मेषी, प्रौद्योगिकी इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। उभाभ्याम् नेतृभ्याम् जकार्ता नगरे भारतीय प्रबन्ध संस्थान बेंगलुरु इत्यस्य एकां नूतनां शाखां संस्थापयितुं सहमति च व्यक्तीकृता। सम्भाषणावधौ उभाभ्याम् भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक संधि सुदृढीकरणाय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनः संशोधिता। जकार्तायाम् राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् परस्परं वर्धमानेन विश्वासेन रक्षा, सुरक्षा तथा सामुद्रिक क्षेत्रेषु अस्मदीय पारस्परिक सहयोगः सुदृढः जातः।
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं।
0: इंडोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बितंग आदिपूर्ण इति उपाधिना अलंकृतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अस्य गौरवपूर्ण क्षणस्य कृते इंडोनेशिया सर्वकारं प्रति स्वकीयां गभीरां कार्तज्ञभावं प्राकटयत्। तेन अयं प्रतिष्ठित पुरस्कारः भारतस्य सार्धशतकोटि जनेभ्यः समर्पितः।
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: इतः प्राक् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपति प्रासादे इस्ताना मेर्देका इत्यत्र औपचारिक राजकीय सम्माननं प्राप्तवान्। अद्य अपराह्णे प्रधानमंत्री जकार्तायाम् इंडोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च संबोधितवान्। प्रधानमंत्री सविशेषं न्यगादीत् यत् वैश्विक आतंकवादस्य प्रतिकाराय उभे अपि राष्ट्रे संयुक्त कार्यसमूह तंत्रस्य माध्यमेन अत्यंतं निकटतया कार्यं कुरुतः।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे मेप्पाडी समीपस्थे कल्लाडी स्थानके

0: अद्य वायनाड सुरंग मार्ग परियोजनायाः निर्माणस्थले संजातेन एकेन भीषणेन प्राणहारक पंकपातेन त्रयः जनाः मृत्युमुपगताः। वार्ताहरैः सह भाषमाणः मुख्यमंत्री वीडी सतीशनः इमां घटनाम् अत्यंतं कष्टप्रदां दुर्भाग्यस्पदां च अवर्णयत्। तेन आरोपः कृतः यत् जनपद आपद प्रबंधन प्राधिकरणस्य समाह्वानानां पश्चादपि अधिकारिभिः दत्तानां निरंतर निर्देशानां पालने गंभीरा उपेक्षा विहिता। तेन अग्रे ज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थले सहायोद्धार कार्यार्थं राष्ट्रीय आपद उद्धार बलस्य दलानि राज्यारक्षक बलं सहैव अग्निशमन उद्धार सेवा विभागः सद्यः नियोजिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य डुरंट कप टूर्नामेंट इत्यस्य जयचिह्नानाम् अनावरणम् अकरोत्। सहैव ध्वजं प्रदर्श्य तान् प्रेषितवती। सभां संबोधयन्ती असौ अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे नूतनानि दलानि डुरंट कप प्रेसिडेंट कप शिमला ट्रॉफी इत्येतेभ्यः जयचिह्नेभ्यः प्रतिस्पर्धां करिष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां हरित क्षेत्रस्य संवर्धनाय एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानम् अभिलक्ष्य दिल्ल्यां 70 लक्ष पादपानां वपनस्य कस्यचित् महाभियानस्य विधिवत् शुभारंभं विहितवान्। अस्मिन् मंगलावसरे संबोधयन् श्री शाहः प्रतिपादितवान् यत् अयं वपन संकल्पः दिल्ली पर्यावरणस्य पर्यावरणतन्त्रस्य च आमूलं परिवर्तनाय कश्चन अत्यन्तं महत्वपूर्णः अभिनव प्रयासो वर्तते। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालयेन जूएल ओरम इत्यनेन जनजातीय विकासाय ज्ञानस्य नवान्वेषणस्य साक्ष्याधारित नीति निर्माणस्य च यंत्ररूपेण जनजातीय अनुसंधान संस्थानां सुदृढीकरणाय नूतन दृष्टिः उद्घाटिता वर्तते। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य 20,000+ कृषि उद्यमिनः 20,00,000 कृषकान् सशक्तीकर्तुं प्रगति परियोजनायाः शुभारंभम् अकरोत्। निर्वाचनायोगेन बिहार गुजरात मध्य प्रदेश राज्यानां त्रिविधानसभासनानां उपनिर्वाचनेभ्यः अधिसूचना प्रख्यापिता। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैरन्त्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर गुजरात इत्येतयोः अन्येषु केषुचित् भागेषु तत्रैव हरियाणा पंजाब राजस्थान इत्येतेषां शेषभागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूला वर्तते। अद्य तटीय कर्नाटकस्य गुजरातस्य कोंकणस्य गोवा राज्यस्य मध्य महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विज्ञानेन विभागेन पूर्वानुमानितम्। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य रात्रौ नॉटिंघम इत्यस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यत्र पंच स्पर्धानां श्रृंखलायाः तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतीय दलं इंग्लैंड दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
3: हेलो, नमस्कार दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, आप हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है
4: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।

0: मित्रता या दोस्ती, दोस्ती के रिश्ते को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर जवानों के बीच। दोस्ती का चुनाव जवानी में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही आगे आपके भविष्य को बनाने या बिगाड़ने में सहयोगकारी होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम दोस्ती का रिश्ता किसी के साथ बना रहे हैं, तो क्या वह व्यक्ति दोस्ती करने के लायक भी है या नहीं, क्या वह व्यक्ति उसकी आदतों में सही है कि नहीं, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बुरा बना देती है। आइए हम एक कार्यक्रम के द्वारा देखें कि दोस्ती या मित्रता किस प्रकार एक जवान व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। आज राहुल का कॉलेज में पहला दिन है। सुबह सुबह राहुल कॉलेज जाने के लिए, नए मित्र बनाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित होकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकलता है।
1: हेलो, तुम्हारा नाम क्या है?
2: मेरा नाम सुरेश है। तुम्हारा नाम क्या है?
1: मेरा नाम राहुल है।
2: कॉलेज में नए आए हो?
1: हाँ, आज मेरा पहला दिन है कॉलेज में।
2: हाँ, मुझे भी ज़्यादा नहीं, एक ही महीना हुआ है। तो फिर दोस्त बनाए कि नहीं?
1: नहीं, अभी तक नहीं, आपसे ही बात हुई है अभी तक।
2: अच्छा, तो आज से हम दोनों दोस्त। मेरी एक और दोस्त भी है, पिंकी, वो भी अभी आती होगी, मिलवाता हूँ उससे भी।
1: थैंक यू सुरेश। क्या तुम मुझे क्लास का टाइम टेबल और टीचर और कॉलेज से जुड़ी बाकी सारी चीज़ें बता दोगे?
2: इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कॉलेज आए हो, एक घंटा भी नहीं हुआ और अभी से इतनी टेंशन। पिंकी से तो मिल लो पहले।
3: हाय सुरेश, ये कौन है तेरे साथ?
2: अरे, ये आज ही कॉलेज में आया है, मेरा दोस्त है ये।
3: ओहो, नया दोस्त।
2: पिंकी, ये राहुल है। राहुल, ये पिंकी है।
1: हाय।
3: हाय।
2: देख पिंकी, दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। ये मेरा दोस्त मतलब ये तेरा भी दोस्त।
3: बिल्कुल। तो फिर हम कैंटीन चले?
1: कैंटीन पर? मैं तो घर से ही खाकर आया हूँ, और यहाँ क्लास कब होती है?
2: अरे यार, तू चल तो सही।
1: चलो ठीक है, चल।
2: और मजा आया कि नहीं?
1: हाँ, बहुत मजा आया, पर आज तो क्लास ही नहीं ली।
2: क्या यार, चिल मार, क्लास क्लास कर रहा है जब से। चलो घर चलते हैं, अब कल मिलते हैं।
1: माँ।
4: आ गया बेटा। तू कैसा रहा आज का दिन? पढ़ाई हुई? समझ आया कि नहीं कुछ?
1: नहीं माँ, आज कोई क्लास नहीं ली मैंने, ना कुछ पढ़ाई की, पर बस दोस्त बनाए और उनके साथ घूमा।
4: अच्छा, पर बेटा ये ठीक बात नहीं है।
1: अरे माँ, पहला ही दिन तो था। तुम भी माँ फालतू बातें कहती रहती हो।
2: राहुल, ये देख, नई फिल्म आई है, बहुत मस्त है भाई, तू जरूर देखना।
1: ये तो घर जाकर देखूंगा फुर्सत से, अभी तू सिगरेट दे मुझे।
2: ये ले।
1: पिंकी कहाँ गई?
2: अरे उसे पता नहीं क्या हो गया है, आजकल ज्यादा रुकती ही नहीं है।
1: तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
2: हाँ तबीयत तो ठीक है, आज बात करता हूँ उससे, क्या बोलती है।
1: हाँ बात करना, फिर बताना।
2: चल अब यार घर चलते हैं, लेट हो गई वैसे भी।
1: हाँ चल। माँ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है और आज तो मैं बहुत ज्यादा ही थका हूँ।
4: हाँ बेटा, बस 5 मिनट, खाना बन ही रहा है। वैसे आज तो इतना कैसे थक गया?
1: वो आज कॉलेज में बहुत ज्यादा काम था माँ।
4: बेटा आज ये मुंह से अजीब सी, तूने सिगरेट पी है?
1: नहीं माँ, तुम भी ना कुछ भी सोचती हो।
2: राहुल कहाँ है तू?
1: हाँ भाई बोल, क्या हुआ, तू अचानक ऐसे घर आ गया?
2: हाँ जल्दी चल, तुझे कुछ बताना है।
1: भाई खाना खाकर चलते हैं ना।
2: अरे चल ना, बाहर खा लेंगे, अभी बस तू जल्दी से चल, जरूरी बात बतानी है।
1: अच्छा चल यार तू भी।
4: अरे बेटा खाना तो खाकर जा।
1: माँ मैं बाहर खा लूंगा।
4: क्या करूँ इस लड़के का, दिन ब दिन ये तो बिगड़ता ही जा रहा है, और इसके दोस्त तो बिल्कुल सही नहीं है। हे प्रभु,

0: ही इस लड़की को बुद्धि दे, इसके दोस्त इसको गलत रास्ते पर ना लेके जाएं।
1: बोल भाई, क्या इतनी जरूरी बात करनी है तुझे?
2: भाई खुशखबरी है, खुशखबरी।
1: बता भाई, जल्दी बता क्या है।
2: पिंकी तुझे पसंद करती है।
1: जा रे, मजाक मत कर।
2: अरे भाई सच्ची बोल रहा हूँ।
1: पर मैं कैसे मान लूँ?
2: रुक, मैं पिंकी को फोन करता हूँ। हेलो पिंकी।
3: हाँ सुरेश, तेरी बात हो गई राहुल से?
2: हो गई, पर ये मान ही नहीं रहा है।
1: हेलो हेलो पिंकी।
3: हाँ राहुल।
1: सुरेश सच बोल रहा है क्या?
3: हाँ सुरेश सच बोल रहा है।
1: पर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा?
3: बस ऐसे ही डर लग रहा था।
1: मुझसे डर? चलो कल मिलते हैं।
3: ओके बाय।
1: बाय। सुरेश यार आज तो मजा ही आ गया, चल फिर कल मिलते हैं।
2: पिंकी सुन, राहुल को यकीन हो गया है कि तू उसे पसंद करती है, अब बस कुछ समय तक यूं ही नाटक करती रहे, फिर उसको छोड़ देना और कल जब तू राहुल से मिले तो उसे कहना वो तुझे नया फोन दिलाए।
3: ठीक है।
1: हेलो पिंकी। हेलो सुरेश।
3: हेलो
1: पिंकी, तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो अपन दोनों कहीं घूमने चलें।
2: हाँ अब मेरी थोड़ी याद आएगी।
1: नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पिंकी से कुछ बात करनी है।
2: ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ और मैं घर जा रहा हूँ।
3: बोलो क्या बात करनी है?
1: बहुत खुश हूँ मैं, आज की मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे पसंद करती है और मेरे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है।
3: मैं भी बहुत खुश हूँ, पर राहुल एक बात बोलूँ?
1: हाँ बोलो ना।
3: यार मेरा फोन खराब हो गया है, मैं तुमसे बात कैसे करूँगी?
1: बस इतनी सी बात, नया ले आएंगे। और कुछ?
3: नहीं नहीं, थैंक यू राहुल।
1: चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ।
3: ठीक है चलो।
2: हेलो पिंकी, काम हुआ?
3: हाँ हो गया।
0: बेटा आज तो इतने पैसे क्यों ले गया?
1: वो माँ बस थोड़ा सा काम था।
0: ठीक है बेटा, खाना खा लेना, मैं जरा थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो चंचल, कैसी है बेटा?
4: मैं ठीक हूँ माँ, आज इतनी देर हो गई, सोई नहीं आप?
0: बेटा आजकल रोज देर हो जाती है, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बेटा मैं क्या करूँ?
4: क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो?
0: बेटा राहुल आजकल सिगरेट पीने लग गया है, देर रात तक बाहर रहता है, फोन पर लगा रहता है, आज तो अलमारी से बिना बताए 10,000 रुपए ले गया। बेटा चंचल मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है शुरू से ही, और अब बात बढ़ती जा रही है। बेटा हो सके तो तू आ जा, अब राहुल बस तेरी बात समझ सकता है।
4: माँ तुम परेशान मत हो, एक दो दिन में आती हूँ और राहुल से अभी कुछ मत कहना।
0: ठीक है बेटा।
3: हेलो राहुल।
1: हाँ पिंकी, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है?
3: एक दिक्कत हो गई है राहुल।
1: क्या हुआ बताओ मुझे जल्दी।
3: यार राहुल मुझे ना 15,000 रुपए चाहिए थे।
1: यार पिंकी अभी ही फोन के लिए पैसे लिए हैं, अब इतने पैसे, चलो चलो मैं सब करता हूँ, तुम परेशान मत हो।
3: ठीक है राहुल, थैंक यू।
1: ये लो 15,000 रुपए।
3: थैंक यू सो मच राहुल।

0: आज मिले क्या?
1: ठीक है राहुल। हेलो सुरेश, आज राहुल से मिलने जा रही हूँ।
2: ठीक है, मांगो फिर आज कुछ।
1: बिल्कुल।
0: पिंकी, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
1: कहो ना राहुल।
0: हमें अपने घरों में बता देना चाहिए अब, और शादी के लिए बात आगे बढ़ानी चाहिए।
1: ये क्या बोल रहे हो तुम राहुल? शादी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पागल हो गए हो तुम? क्या बोल रहे हो? कोई शादी नहीं हो सकती, मैं घर जा रही हूँ। बाय। हेलो सुरेश।
2: हाँ बोल पिंकी।
1: यार वो राहुल, वो तो शादी के लिए बोलने लग गया, मैं तो उठ के घर आ गई।
2: ये क्या बात कह रही है तू?
1: हाँ, जब से आई हूँ तब से फोन पे फोन किए जा रहा है।
2: एक काम कर, उसे सच बोल दे कि तू उसे पसंद नहीं करती, बस ऐसे ही आकर्षित हो गई थी कुछ समय के लिए, और फिर फोन मत उठाना।
1: ठीक है। हेलो राहुल।
0: पिंकी, इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और ऐसे ही बिना बात किए क्यों आ गई? अभी तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ समय बाद बोल देना।
1: राहुल मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ना अब भी ना बाद में। मैं बस आकर्षित हो गई थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, भूल जाओ मुझे, और अब मुझे फोन मत करना। बाय।
0: पिंकी सुनो।
3: राहुल कहाँ था? देख मैं आई हूँ, तेरी बहन।
4: बेटा दरवाजा खोल।
3: राहुल पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है तू? दरवाजा खोल, बात तो सुन मेरी।
0: नहीं जीना और मुझे।
4: अरे राहुल बेटा, क्या कर रहा है तू? ये सही नहीं कर रहा है।
3: अरे भाई, ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती जो घर वालों को नहीं बांटी जा सके। ये सब कायर लोगों के काम है, तू दरवाजा तो खोल। अरे बात तो सुन हमारी, तू तो अपनी दीदी को बहुत मानता है ना, मेरी बात नहीं सुनेगा क्या? एक बार दरवाजा खोल यार, बात करते हैं भाई, बाहर आ।
0: दीदी, वो पिंकी ने मुझे झूठ कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझे छोड़कर चली गई, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ।
3: देख राहुल, पहली बात तो वो लड़की तेरे लायक ही नहीं थी, और इस बात की वजह से तू खुद की जान ले रहा था। जैसे दोस्तों के साथ तू रह रहा था ना, उन सब के लिए तो ये सब आम बात है, तो तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है?
0: माँ प्लीज मुझे माफ कर दो।
3: और अब तू वादा कर, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, और माँ को तो बिल्कुल परेशान नहीं करेगा।
0: थैंक यू दीदी।
5: तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है
6: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
5: अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी है। 6:45 हुए हैं, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की

0: के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज रोजगार और आवास दिवस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से किया इंकार और प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को कल रायपुर में दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये उद्यमी एक गांव की कृषि कार्य में बदलाव लाने के लिए 100 से 200 किसानों के साथ सहयोग करते हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अब से कुछ देर बाद नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में शुरू होगी। इस बैठक में भाजपा आगामी मानसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी। इस बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत ने रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान आगामी मानसून सत्र के सुचारू और प्रभावी संचालन सहित विभिन्न संसदीय विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही वर्ष 2026 के उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए संभावित नामों पर भी विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा, यह सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज रोजगार और आवास दिवस का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से

0: ग्रामीणों को विकसित भारत जी रामजी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों का पंजीयन, EKYC और PM आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच ने कहा है कि कुछ उम्मीदवारों की गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने उन 129 संदिग्ध उम्मीदवारों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं जिनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की बैठक लेकर कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह का कल समापन हुआ। इस अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 216 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सकल लाभ अर्जित किया है। कार्यक्रम को सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने भी संबोधित किया। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष के प्रतिष्ठित डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए प्रदेश के पात्र किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक कृषक निर्धारित आवेदन प्रपत्र में 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित पात्रता नियम और अन्य जानकारी कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को कल 8 जुलाई को रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के पद्मश्री तथा राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकारों के साथ अनेक कलाकार इसमें शामिल होंगे। पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजनबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने प्रदेश के किसानों को सलाह दी है कि खेतों में पर्याप्त पानी होने पर मचाई कर धान की रोपाई करें। यदि नर्सरी उपलब्ध नहीं है तो किसान अंकुरित बीजों की लेही विधि से ड्रम सीडर या चिटकवा विधि से बुआई कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि मानसून के देर से आने के कारण किसान 125 से 130 दिन में पकने वाली शीघ्र और मध्यम अवधि की धान किस्मों का चयन करें। सीधी बुआई करने वाले किसान 15 जुलाई तक तथा रोपाई करने वाले किसान 30 जुलाई तक का कार्य पूरा कर लें। कृषि विशेषज्ञों ने धान की सीधी बुआई में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने और रासायनिक उर्वरकों के साथ ही हरी खाद तथा जैव उर्वरकों का उपयोग करने का आग्रह किया है। बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और

0: अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली ऐप या फिर निकटतम वितरण केंद्र को दें। बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वन्य जीवों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान बलौदाबाजार वन मंडल ने बारनवापारा सिरपुर पर्यटन सर्किट द स्क्रेड गार्लैंड की शुरुआत की है और इस पर्यटन सर्किट में सिरपुर धसकुंड जलप्रपात, तुरतुरिया इको कल्चरल सेंटर, गिरौदपुरी धाम, सिद्धखोल जलप्रपात, सोनाखान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, देवपुर नेचर कैंप, अचानकपुर का देव हिल्स इको एथनिक स्टे, कोडार जलाशय सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार जताए हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कल 8 जुलाई को शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कल 8 जुलाई को रायपुर के डुमतराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा रायपुर के बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 338 पदों पर भर्ती की जाएगी। जीएसटी विभाग ने फर्जी अंक सूची के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 2 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन दोनों कर्मचारियों का चयन वर्ष 2013 में वृत्ति के पद पर मेरिट के आधार पर हुआ था। बाद में दोनों की पदोन्नति सहायक ग्रेड 3 के पद पर हुई। जांजगीर के जिला पंचायत के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ महिला आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य सरला कोसरिया मौजूद थीं। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम में जंगली मशरूम का सेवन नहीं करने की अपील की है। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कल शाम एक मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। और दुर्ग पुलिस ने सुपेला थाना क्षेत्र में 3 युवकों को प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी, 4 मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज रोजगार और आवास दिवस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से किया इंकार और प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को कल रायपुर में दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाल केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म हंसी तो फंसी में चिन्मय श्रीपदा और शेखर रवजियानी को अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत विशाल शेखर का।

लीजिए अब सुनिए सिंग इज किंग। इस फिल्म में राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल को मयूरपुरी का लिखा गीत और संगीत प्रीतम का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म बैंड बाजा बारात में श्रेया घोषाल को गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत सलीम मर्चेंट का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म वेक अप सेट में कविता सेठ को, जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म खानदानी शफाकत में तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल को गीत के बोल शब्बीर अहमद की और संगीत पायल देव का।

खानदानी शफाखाना। इस फिल्म में अभी आप तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल को सुन रहे थे। शब्बीर अहमद का लिखा गीत और संगीत था पायल देव का। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: विनीता दीदी राम राम।
1: राम राम निधि। और संगे संग चौपाल सुनैया जम्मू संगवारी मना घलो हमर दुनो के
0: राम राम।
1: बने बने निधि।
0: हाँ दीदी सब बनेज बने है।
1: बड़ा चाहका था
0: ता कैसे नहीं चाहकू। दो दिन के पानी ले सबके जीव जुड़ा गे।
1: हाँ वो तो है।
0: और किसानी पुता घलो जोर धर लीस।
1: बिल्कुल बात तो सही है निधि। अब देख अब आषाढ़ के महीना है तब किसान लत का है पानी का गुरा रही है ना। अब बाकी जोखा ला तो सब पहली से किसान कट डर रही थे। फिर का है किसान संगी मन के सबो जोखा हो जा रही थी। आगू काम ला बढ़ाते
0: हैं बढ़ाते दीदी। किसान ला जोन फसल लेना है वो फसल के बीज के व्यवस्था पहले ले करे रही थे। हाँ। तेखर बुवाई फिर थरहा तैयार होए हुआ थे। हाँ। और तेखर बुवाई यही सब चला थे। अब अभी के बेरा तो यही सब तैयारी करे के हवे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहे निधि। और देख निधि धान के फसल तो किसान लेबे करते हैं। फिर खरीफ मौसम में फसल चक्र ला अपनाना है बहुत फायदा के होते। एखर ले का है एक खेत में हर साल हर मौसम में अलग अलग प्रकार के फसल और एक निश्चित क्रम में फसल जो है तैयार हो जाते।
0: हाँ और दीदी फसल चक्र अपनाए ले कई ठीक फायदा होते जो एकर उद्देश्य घलव है। पहली तो ये कि माटी की उर्वरता बने रही थे।
1: हाँ।
0: दूसरिया के पौधा ला संतुलित पोषक मिलते। और यहाँ जिन कीट रोग व्याधि खरपतवार के प्रकोप कम होते।
1: बिल्कुल सही कहे। और उत्पादन के लागत घटाना और आमदनी बढ़ाना संग में जमीन और जल संसाधन के जन बेहतर उपयोग करना एकर उद्देश्य आय निधि।
0: हाँ
1: है ना।
0: संग में हम यहू कहबो दीदी के फसल के लाभ के बाद जब हमन करथन ना तब माटी के उर्वरा बाढ़ते।
1: हाँ
0: तभी हमन मतलब फसल में लाभ होते।
1: बिल्कुल।
0: और कीट और रोग नियंत्रण घलो होते। एक के फसल बार बार लगाए ले जोन बढ़िया कीट और रोग के जोन चक्र है ना तो वो टूट जाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब देख इसने निधि अलग अलग फसल ने कहा है खरपतवार के बढ़वार जो उन्हें कमती आ जाते है ना। और एक के फसल लेते रहे तो वही खरपतवार होते रहते। और अलग अलग फसल लेबे तो जो खरपतवार कमती आते और संतुलित पोषण और स्वस्थ माटी के सेती का है उपज गला बाढ़ते है नी। और उर्वरक के बचत होते अलग अलग प्रकार के फसल लेबे था। और अलग अलग फसल में पानी की जरूरत घलो भी है ना अलग अलग होय से टिका होते पानी बरोबर सही उपयोग हो जाते जाने।
0: मतलब पानी है बर्बाद नहीं होए।
1: हाँ।
0: है ना। और भाई पानी के बचत घलो है जब पानी बर्बाद नहीं होए तो। और किसान ला जो न कमती जोखिम में सरलग आमदनी मिलत रही थे।
1: बिल्कुल।
0: और एक बात और है दीदी
1: का
0: कि जब फसल चक्र के बात हमन करत है ना तब एमा श्री अन्न जिमा थे ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी ये सब ला फसल चक्र में शामिल करे ले माटी के पोथा सुधरते।
1: ये बात तो 16 आना कहे सही कहे निधि। का है एकर ले का है पानी के बचत होते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो है एमा कमती पर थे कहूँ श्री अन्न ला भी हमन लगा बनता है ना। और किसान ला का है पोषण और आय दोनों फायदा होते।
0: हाँ तब वो रिकिम ले खरीफ मौसम में श्री अन्न ला जैसे ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी ये सब ला फसल चक्र में शामिल करना बहुत फायदा करी थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। काबर की फसल कहूँ कमती पानी में अच्छा उपज देके और संग में पोषक तत्व ले भरपूर होते नहीं थी है ना। और जलवायु परिवर्तन के असर ज्यादा एमा ज्यादा पड़े नहीं
0: पड़े
1: है ना।
0: और ये कहन के कमती पानी में घलो ये फसल
1: हो
0: जाते। ऐसे कह सकते हैं कि संपूर्ण पोषक तत्व जो रहते हैं ते प्रचुर मात्रा में होय के सेती अब एकर महत्व ला समझत एकर मांग लोगन मन में बाढ़ गए है। और लोगन मन का है अब जागरूक घलो हो गए होती। और एकर सेती का करते जिन भाटा जमीन में घलो ये फसल हो जाते।
1: हाँ।
0: कमती लागत में हो जाते।
1: हाँ।
0: कमती मेहनत में हो जाते है ना ज्यादा देख रेख घलो नहीं करना पड़े।
1: कमती उर्वरक में कमती पानी में अच्छा उपज जो है श्री अन्न के मिलते निधि।
0: हाँ,
1: है ना।
0: हाँ।
1: और श्री अन्न के का है सरलग उपयोग करत रहे ले देख कतकुन समस्या है जैसे की कोनो बीपी हो जाते सुनबे ना बीपी हो गए कोनो शुगर हो गए थायराइड है कोनो खून के कमी है ना कोनो मोटापा है बाल झड़त है ऐसा तो ये सबो जो है सरलग कहूँ श्री अन्न के अलग अलग श्री अन्न के खाए ले एक जो है ये सब दुर्घात है ना।
0: हाँ और इमा भरपूर पोषक तत्व होय के सेती लैका सियान जवान जम्मो मनहा एकर फायदा के अपन सेवन करत रही थे।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और इकिन बिकिन के जीनिस बना के जेन लजेन मीठ में पसंद है कोनो खारम पसंद है तैसन खावत रही थे।
1: हाँ।
0: और एकर ले लैका मन के बढ़वार बहुत

0: अच्छा होते,
1: बिल्कुल
0: हड्डी
1: बिल्कुल।
0: मजबूत होते।
1: हाँ काहे देखा निधि जी से कहना रिकिम रिकिम के जो व्यंजन बनते
0: हाँ?
1: तो काहे पहली रोटी खिचड़ी भात यही बने है ना, ये जो तैया जब श्रीअन के उपयोग होत रही था है ना, फिर अब काहे नाना प्रकार के व्यंजन बनते जोन बाजार में मिलेट्स के व्यंजन के रूप में मिला थे, तो एकर जो बाजार में बहुत मांग होते वो रिकिमले श्रीअन के खेती भी बहुत फायदा के होते है ना।
0: हाँ, सही
1: तो
0: बात
1: तब
0: है।
1: अब यही कहे जा सकते निधि कि फसल चक्र ला अपनावन और श्रीअन उपजावन, माटी बचावा और खेत ला समृद्ध बनावन है ना।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दीदी, किसान वाणी के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

और अब बारी है आज हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम के निधि। तो बरसात के मौसम में आवारा पशु मन के प्रबंधन, ये संबंध में जो है विशेषज्ञ डॉक्टर पदमचंद जैन जी द्वारा जानकारी दे गए है और संगवारी मन के जो फोन से समस्या के समाधान करे हैं। आप हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिला पशु चिकित्सालय बैरंग बाजार रायपुर, संचालन करे हैं निधि शर्मा और प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे के तौल सुनथन।

0: संगवारी हो बरसा के दिन काला अच्छा नहीं लागे, सबोला बारिश की अगोरा री थे। बरसा के दिन सबोला बने लाग थे, चारों कोती हरियर हरियर रुखराई के संगे संग मा तरिया नदिया मन भराए रही थे, जुड़ जुड़ हवा रही थे। मनखे तो मनखे, पशु मन ला घलो ये मौसम हा पड़ भा थे। फिर ये मौसम मा पशु के प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाते, ताकि ओमन ला कोनो रोग राई झन धरे। ये विषय ले जुड़े जम्मो जानकारी आप मन के शंका के समाधान करे खातिर आज हमर संग में ही डॉक्टर पदमचंद जैन जी, आप मन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिला पशु चिकित्सालय बैरन बाजार रायपुर ले हवो। जैन जी, आप मन के हम हमर क्रम फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में स्वागत करथन। राम राम।
1: राम राम आपला और आपके सबो श्रोता मनला।
0: डॉक्टर साहब, हमर संगवारी

0: मन के फोन आना शुरू हो गए हे त सुनथन हमर संगवारी मन के का प्रश्न हे। हेलो किसान वाणी।
1: हाँ दीदी मोर माया भरे राम राम।
0: राम राम गा, कौन बोलत हो, कहाँ ले बोलत हो?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला में तरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोलत हूँ दीदी।
0: हाँ नारायण प्रसाद वर्मा जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये क्रम में।
1: बहुत बहुत स्वागत है।
0: हाँ ता जैसे के आप मनला मालूम हो ही के वक्त के हमारे विषय है बरसात के मौसम में आवारा पशु मन के प्रबंधन। तो ये विषय से जुड़े आप मन के का प्रश्न है जिला आप मन पूछना चाहत हो?
1: तो डॉक्टर भैया राम राम।
2: राम राम।
1: जैसे दीदी अब ये दे कई ठो गाय गरुआ है ये मन है घूमत हवा है और बरसात में ये कुत्ता है दीदी इकर मन ले ज्यादा डर बने रहते हमर मन के। तो ये कुत्ता मन ले कैसे हमन है दे बच के रही नवे कर प्रबंधन कैसन ढंग ले करी यही जम्मो बात ल पूछे बर फोन लगाए हो दीदी।
0: बिल्कुल सही बात है। देखबे अभी कतको जगह हमन देखे सुने में आते कतको जिन आवारा जिन पशु मन है ना ओ मन अचानक इसने घुमत उमत कई ठन दुर्घटना घलो हो जाते।
1: हाँ हाँ
0: है ना। कतको जन लैका मन रेंगत रही थे तो चाप देते।
1: हाँ।
0: है ना। तो ऐसन है पशु है तेकर प्रबंधन हम कौन ढंग से करन?
2: बिल्कुल सही सवाल पूछे है। और जिन चाहे वो कुकुर हो चाहे बड़े जानवर बरसात में जिन झुंड बना कर रहते एक बहुत गंभीर समस्या है। कारण कि एकर बरसात में एकर एक खास आदत रहते मन बीच रोड में बैठ जाते और जब बारिश हुआ थे पानी गिरा थे तो जिन लोग चलने वाला है या गाड़ी वाला है वो समय थोड़ा दिखना कम हो जाते विजिबिलिटी कम रहते तो कई बार ये जानवर मन दिखाए नहीं और कई बार गंभीर दुर्घटना के शिकार ये जानवर मन भी होते और साथ साथ जिन गाड़ी में चढ़े है चलावा थे तेनों मन ला कई बार गंभीर दुर्घटना का सामना करेल पड़ते। तो प्रबंधन के जिन बात है ओमें दो चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। सबसे पहली एक चीज है कि यदि मैं बड़े गरवा मन के बात करूँ गाय पर्टिकुलर भैंसी होते नहीं दिखाए पर गाय और बैला ज़्यादा दिखते तो एमें मोर सबसे पहली चीज रही थे कि कोई भी जानवर जैसे गाय बैला है ए मनला कोनन कोनो पालते और जब इखर मन के जरूरत खत्म हो जाते तो एला ढील देते और यही जानवर मन है फिर खाए पिए के मिले अपन पेट के भूख ला मिटा सके ओकर बार रास्ता में आ जाते। तो मैं वो मनला हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई यदि आप जानवर पाले हो तो ओला आवारा मत होवन दो। काबर की कोई गाय आवारा नहीं हो सके ओखर एक समय में कोनो न कोनो मालिक रहते और जब ओखर जरूरत खत्म हो जाते तो ओला ढील देते और वही मन है फिर जब बारिश गिरते या मौसम खराब होते तो एक एती कोती कहीं भी आप किंजरत रहते या छाँव पाए कोशिश करते और उखरे वजह से दुर्घटना होते। तो एमे प्रबंधन में जन सबसे पहली चीज है ये कि हमार नैतिक जिम्मेदारी यदि हम कोनो ला पाले हैं जानवर तो ओला हम अपन घर में रखन ऐसे रोड पे किंजरे पर नहीं छोड़ना चाहिए। और जन दूसरा चीज है जन सरकार के भी बहुत सारे योजना चला थे उनमें विशेष गौधाम योजना है और उनमें अपन जानवर ला रख सकत हो। एकर अलावा ये पूरे शहर में और पूरा छत्तीसगढ़ में और तमाम देश में बहुत सारा गौशाला के भी व्यवस्था है तो यदि कोई जानवर इसे मिल गए जेकर चोटग्रस्त हो गया इसने किंजरा थे तो हमार जिम्मेदारी है कि ओला हम गौशाला में पहुंचा दें जेकर से वो जानवर भी कम तकलीफ पाही और जिन आम जनता है जिन कभी ओखर से टकरा गए तेनों हाँ ओखर से बची। तो महत्वपूर्ण चीज जन मोल है जन समझ में आते कि हमला यदि हम कोनो जानवर के जिम्मेदारी ले हन ओल पाले हन हमार स्वार्थ भर तो जरूरत पूरा होए बाद ओला रोड पे छोड़ना ये मैं गाय और बैला की बात करूँ तो एकदम गलत है ये चीज नहीं होना चाहिए।
0: हेलो किसान वाणी।
3: इंद्र से प्रदीप जैन।
0: जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे क्रम में। आप मन के का शंका है का समस्या है तेला आप मन बताते।
3: इनका है जनरली सामान्य रूप से चरी के नाम से बहुत परेशान रहते हैं। आते चर के चल देते घाटा लगा देते घाटा तार भी तोड़ देते हैं मना ऐसे आजकल तो बिजली वाले निकले पर वह सुरक्षित नहीं है मेरे हिसाब से बताओ थोड़ा सा क्या कर जाए थोड़ा से।
0: तो ये नुकसान होते होकर से बचाव कैसे कर सकन?
2: मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि यदि गाय गरवा मन खेत के मेड़ और फेंसिंग तार में पहुंचा थे और ओला नुकसान पहुंचावा थे तो निश्चित तौर पे ये चीज है कि

0: वो ह कखरो ना कखरो वो जानवर आए जेन हा ढील दे है, तो ओखर बर गांव स्तर पर पंचायत स्तर पर एक ऐसे व्यवस्था करना चाहिए कि ऐसा समय में कोनो अपन जानवर ला नहीं ढील सके। ये जेन प्रशासनिक स्तर पे जेन करे जाने वाला बात है ओखर है, काबर की यदि गाय गरुवा है और बारिश है और वमन अपन चारा पानी पर यदि खेत के तरफ जाते तो ओला रोक पाना संभव नहीं है। तो ओखर बर जिन प्रयास है ओला व्यक्तिगत स्तर पर करेल पड़ी, पंचायत स्तर पर करेल पड़ी, और साथ ही साथ यदि कोई गाय है जेखर बिल्कुल कोनो नहीं है आवारा है तो ओला गौधाम में या फिर जिन निकट के आपके पशु रखे के जिन पशुशाला बने हैं वहाँ ले जाना चाहिए, जेखर से आपके भी नुकसान नहीं हुई और वो जानवर भी सुरक्षित रहे।
1: फोन करे एकर खातिर आपमन के बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान वाणी।
2: हाँ मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारबाड़ी गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। दीदी राम राम।
1: राम राम पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपमन के।
2: डॉक्टर साहब भी बोला राम राम जाते।
0: राम राम।
1: तो पटेल जी, जैसे कि आज के हमारे विषय है, आपमन जाना तो हो कि देखो बरसात आ गई है और ऐसा मौसम में जन आवारा पशु मन रही थे ओकर प्रबंधन कैसे करे जाए, तो ये प्रबंधन से जुड़े हुए आज के हमर विषय है। तो आप मन आज हमर विशेषज्ञ मन से का जानकारी पाना चाहो?
2: हाँ, हम ये जानना चाहते हैं दीदी कि जिसे अभी हमन जिन अपन अपन जिन पशु है प्रयास करना चाहिए हमला कि हम ओका बांध के रखी, लेकिन अगर ये सब नहीं कर सकते है तो का है रास्ता में बहुत ज्यादा परेशान करते, हमारे बाड़ी को लगे बहुत परेशान करते, ऐसा स्थिति में हमला कौन कौन सी विधि अपनाना चाहिए जेकर से ओकर हमर रक्षा हो सके और पशु घलोक मन सुरक्षित रह सके, एक बारे में जानना चाहते हैं।
1: हाँ, माने दोनों के सुरक्षा के ऊपर आप मन प्रश्न पूछना चाहते हैं।
2: हाँ दीदी, सुरक्षित तो दोनों करने दीदी, अब मन तो बिना मुंह के जानवर कही देवा।
1: हाँ हाँ हाँ, और ये बरसात के मौसम मरीकेम रिकेम के रोग राय घलो डर थे।
2: हाँ दीदी,
1: तो ओकर ले हमन मन ला नुकसान है।
2: हाँ दीदी, जब मैं बोले बारी को नुकसान होते इसमें हमन का मनुष्य मतलब भी नुकसान हो सकते थे, तो एकर से हमन का बचाव करे खातिर हमला कौन कौन बात के सावधानी रखना जेकर से हम सुरक्षित रहे और हम सुरक्षित रहे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल जी।
0: टीकाकरण यदि मैं विशेष तौर पे बात करूँ तो गाय गरुआ के मैं बात करूँ, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिन बरसात में प्रमुख तौर पे बीमारी जन होते ओमें गलगोटू है, मुँह चपका है, एक अलावा एक टंगिया बीमारी होते, ये बहुत प्रमुख बीमारी है। एक अलावा एक लेप्टोस्पायरा करके बीमारी होते जिन पर्टिकुलरली जिन हमर खेत है ओखर पानी से बैक्टीरिया आते और ओखर से जानवर मनला लेप्टोस्पायरा होए के संभावना रही थे। इन चारों में लेप्टोस्पायरा वो बीमारी है जेन हाँ मनुष्य में भी हो सकते है और बहुत ही गंभीर बीमारी है लेप्टोस्पायरा करते, तो हमन ला पूरा कोशिश होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में गाय गरुआ मन हा खेत तरफ मत जावे या वो संक्रमित पानी के संपर्क में मत आवे। बाकी जब मैं तीन बीमारी प्रमुख बताए हूँ ओखर टीकाकरण संभव है और सरकार ही ओखर टीकाकरण करते हमारे विभाग के माध्यम से, जेखर टीकाकरण ला हम हमेशा बोलथन कि बरसात आए पहली जब अप्रैल मई के जिन महीना है गर्मी के वो समय में टीकाकरण ला करवा लेना चाहिए जेखर से ओखर होए के संभावना खत्म हो जाते बरसात में। तो ये बहुत ही सामान्य टीका है और पशु जिन हमारे विभाग है वो विभाग के माध्यम से पशुधन विभाग के माध्यम से ये टीकाकरण उपलब्ध है, फ्री में, और पूरा वर्कफोर्स एकर पीछे लगे रही थे। इसमें बस आप लोग थोड़ा सा अपन प्रयास से संपर्क करके अपन गाय गरुआ ला इवन घुमंतु प्राणी ला भी लगवाया जा सके थे और लगवाना भी चाहिए, हमारे नैतिक जिम्मेदारी है जेखर से वो भी सुरक्षित रही और हमूमन सुरक्षित रही वो। और यदि मैं बात करूँ छोटे जानवर पर्टिकुलरली डॉग के, तो डॉग ला जिन सबसे इम्पोर्टेंट जिन टीकाकरण है वो है रेबीज के जिन लगना चाहिए, ओखरो बर आजकल सरकार बहुत एक्टिव हो गए है, ओखरोबर टीकाकरण और बधियाकरण के कार्यक्रम चलत है, उनमें सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत अहम फैसला आए हुए है और ओखर प्रबंधन पर सबो स्तर पे सरकार है प्रयास करत है।
1: फोन करे हो पटेल जी। जी जी धन्यवाद आप मन के। हेलो किसान वाणी।
3: हेलो।
1: हाँ
3: राम राम दीदी।
1: राम राम का कौन बोला था, कहाँ ले?
3: हाँ मैं रेवा राम साहू बोला था दीदी, यहाँ बंदा बाजार जिला राजनांदगांव से।
1: हाँ रेवा राम साहू जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे क्रम में आप मन के। और कैसे बने पानी गिरी से आप मन को थी?
3: हमारे डान अभी बने पानी गिरी दीदी, बावा से लाई चौकी जे टोली में ज्यादा पानी भर गए थे, मैं लाई चौकी मारा था तो नहीं मारे थे, बावा करा था पद्धति से हमारे डां ज्यादा चल रहे हैं।

0: रोपा जगाए के तको तैयारी हो गए आगू डाल दे रहे
1: हाँ हाँ। चलो बहुत बढ़िया है, आप मन के तो खेती किसानी के काम बूता के शुरुआत हो गई हवे।
0: अरे बीच में एकदम ज्यादा बिता गया ना खेती किसानी में सब।
1: नहीं नहीं, ये बेरा हवे भैया तैयारी करे के हमारे खेत तैयार हो जाते।
0: आगू किसान मन मने सियान मन कहेगा कि दाल ले झुके बेंद्रा या बावत में झुके किसान ऐसे की करके भी लड़ाते रहता समय समय में
1: का। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। आज के जिन विषय है ना तीन है बरसात के मौसम में आवारा पशुओं मन के प्रबंधन, तो एक ले जुड़े कुछ समस्या हवे आप मन के।
0: आवारा पशु मना ये मतलब ज्यादा नुकसान कर देते देखभाल नहीं कर ना तो वही मतलब कुछ तो रखना रही से आवारा पशु एकदम से दोबारा नहीं सुनना रही से हमारे किसान भाई मन लगा जतन करना चाहिए।
1: हाँ,
0: कहीं टीका वीका कब कब करना रही बरसात के दिन में ना थे, थोड़ा विस्तार से बताते दीदी।
1: बिल्कुल, काबर की बरसात के मौसम में रोग राई होने के खतरा जिन्हें संक्रमण बीमारी तेन बाढ़ जाते।
2: एकदम सही कहे हो आप, कई बार जेन रास्ता चलत कुकुर हा कभू भी कोनो भी लइकल हा बग देते या बाइक वाले के पीछे दौड़ जाते या कार के पीछे दौड़ जाते, ये बहुत सामान्य है और ये दिन एकर संख्या और तादाद काफ़ी बढ़ गए है। ओखर कारण है कि पहली एक सीमा में एकर मन के संख्या रहा है, पर आजकल कुकुर मन के संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गए है, तो जिन खाए पिए के सामग्री कमी हो गए तो कभू ककरो लड़का खात में खाए पिए के सामान देख लिए तह बग देते। अब जैसे बरसात में उखर हीट टाइम रहे थे तो उमन थोड़ा सा उखर टेम्परामेंट बिगड़े हुए थे तब वो हा बग देते। तो प्रबंधन के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमला जन्म दर नियंत्रण, जिनला हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम कहथन, जिन आजकल बहुत चलत है और जैसे हम छत्तीसगढ़ के पूरा बात करें तो रायपुर और तमाम दूसरा जिला और जगह में सरकार है नगर निगम नगर पालिका के माध्यम से अभी अभियान चला है उखर मन जन्मदर नियंत्रण करके सर्जरी के माध्यम से। तो उखर बर हर जगह हेल्पलाइन नंबर दे है, जैसे आप नगर निगम रायपुर की बात करो तो आप यदि निदान में फ़ोन करूँ तो आप अपन अपन जगह के नाम बताऊ तो टीम आही ओला लेके जाही ओखर सर्जरी हो ही और सर्जरी के बाद वही जगह में वापस छोड़े जाही। तो धीरे धीरे यदि हम सम्मिलित प्रयास करबो प्रशासन और शासन के साथ मिल के एक जिम्मेदार नागरिक के व्यवहार दिखाबो तो आने वाले समय में जिन समस्या हम बात करत हन ओखर नियंत्रण करे जा सकत।
1: फोन करे वक्त खातिर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी।
1: हाँ कौन बोलो था, कहाँ ले?
3: हाँ जय जोहार।
1: जय जोहार, नाम बताओ कौन मिल ले बोलो था?
3: मैं रायपुर ले मोहन लाल दिवांगन।
1: हाँ बहुत बहुत स्वागत है मोहन भैया। हाँ तो देखो बरसात पानी गिर गए है, मौसम थोड़े कन जुड़ा गए है, तो ऐसा बेरा माँ जिन आवारा पशु मन के प्रबंधन कौन ढंग से होना चाहिए ये विषय से जुड़े आज हमन मन के क्रम है।
3: हाँ,
1: है ना, तो का पूछना चाहते हो भैया ये क्रम में आप मन?
3: वही बात है कि देखो अचानक पानी बरसात हो गए है तो आदमी बड़ा मुश्किल हो गए है, जानवर मतलब ठिकाना बनाना है
2: उपाय वही है। मैं पहली भी कहूँ अपन बात में कि यदि कोनो जानवर रोड में है तो वो जानवर रोड में है तो कोई ना कोई पाले हो ही, कहीं ना कहीं ओखर घर हो ही, वो घर वाले की जिम्मेदारी को रोड में मत छोड़े। और दूसरा फिर पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर सब जगह काऊ के टीम है जैसे, तो निकट के गौधाम में या पशुशाला में उल छोड़े, यही एकर उपाय है। काबर कि यदि वो रोड में है तो उला पकड़ के इन जगहों में छोड़ना ही सर्वोत्तम उपाय है। और सबसे जिन मुला जरूरी लगते कि एकर बर एक गाइडलाइन आना चाहिए कि यदि कोई जानवर पाल ले गए है तो जिन पाले है उला कोई भी तरीके से रोड में मत छोड़ सके। एकर बर शासन और प्रशासन स्तर पर बहुत प्रयास करे जाते पर लोगन हा अपन जिम्मेदारी ला पूरी तरह नहीं निभाए, तेखर वजह से ऐसा समस्या हमला सामना करे पर पड़ते।
1: फोन करे हुए एकर खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी।
1: हेलो किसान वाणी।
4: हेलो किसान वाणी, नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोला था? कहाँ ले?
4: मैं ग्राम उच्च भट्टी ले उमेंद्र दास।
1: मानिकपुरी जी अपन के बहुत बहुत

0: स्वागत है।
1: हाँ, ये तो बहुत जरूरी वाला बात है भाई कि
0: हाँ,
1: जो जानवर है
0: हाँ हाँ
1: वो मन के आजकल बोला अपन को ये मही रखना चाहिए, कहे जाए गौठान में या कोठा बने रहते घर में,
0: हाँ हाँ
1: और बाहर छोड़ दिए ले वो मन के बहुत नुकसान हो सकत है। तो एक बारे में सही बात है जानकारी देवा भाई के गाय मन ला बछरु मन ला कैसे सुरक्षा करे जाए।
0: हाँ,
2: यदि आप घर में पशु रखे हो तो दो तीन चीज मुख्य है, उमे सबसे इम्पोर्टेंट है जेन हमर पशुधन विभाग द्वारा समय समय पे जेन टीकाकरण के कार्यक्रम चलते जेन ला बीमारी से रोकथाम पर ओला आपला जागरूकता के साथ लगवाना चाहिए और दूसरा लोगन ला भी जागरूक करना चाहिए जिससे कि ओखर बीमारी के रोकथाम हो सके। दूसरा, जिन जगह में आप जानवर ला रखे हो वहाँ साफ सफाई के बहुत ध्यान रखना चाहिए, पानी मत भराए, वहाँ किरनी मत होवे, वहाँ मच्छर मत होवे, और जिन आप खाना के भंडारण करत हो उमें कोई भी तरह के कोई फफूंद या गीला मत हुआ है जेखर से जानवर ओला खा ना सके। एकर अलावा आपला उन्हें नियमित तौर पे बाहर छोड़ना, वापस लाना, और यदि कोई परजीवी नाशक दवाई बीच बीच में देना है तो निकट के पशु चिकित्सक के सलाह अनुसार सब कुछ उपलब्ध है ओला ले के अपन जानवर के कृमिनाशक दवाई देना, ये मुख्य चीज है। मतलब टीकाकरण, खान पान और जहाँ वो रहते वो जगह के साफ सफाई, यदि ये तीन चीज पर हम फोकस करबो तो कोनो तकलीफ हमन जानवर मन ला नहीं हो।
0: फोन करे खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार। हेलो किसान वाणी।
3: हाँ निधि मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते
3: जी। मैं मानवेंद्र साहब बोला था
0: जी। बताओ कैसे काम बूता चला थे आप मन के?
3: काम बूता तो बढ़िया चला थे दीदी, पानी तो अच्छा गिरे है। अब धान के दे धान बोवाई लाई चुपी वगैरह ऐसे सब चला थे दीदी अभी धान।
0: हाँ, तो आज के जो विषय जुड़े है तिन्हे बरसात के मौसम में आवारा पशु मन के प्रबंधन।
3: जी जी।
0: तो ये विषय से जुड़े आप मन के कोनो प्रश्न है, समस्या है, तेल आप मन पूछ सकते?
3: जी जी। जैसे मोर प्रश्न ये भी थी कि अपन जैसे बरसात में अगर कोई पालतू पशु है ना, गाय है, बैला, बछड़ा, ये मन अगर बाहर में बरसात में घूम फिर के आते चारा वारा खा के और बाद जब घर में आते ना तो हमला का सावधानी बरतना चाहिए? अभी में उम्र संक्रमण के बीमारी लगत है तो उम्र से हमला कैसे बचाव करना चाहिए और का चीज के ध्यान रखना चाहिए पूछना रही।
0: तो संक्रमण की बीमारी पर कैसे हम बचाव करन, का उपाय करन, तेल आप मन जानना चाहत हो?
2: एकदम सही के हो, और एकर भी जिम्मेदारी मोला मोटा तौर पे हमरे मन के लगते। सबसे बड़े जिन समस्या है जिन मैं आए दिन देखता हूँ वो है पॉलीथिन। हम बहुत सुविधा भोगी हो गए हैं और वही सुविधा के चक्कर में हमन कई बार अपन सामान ला खाए पिए के सामान कभी किचन में कुछ निकलीस तो ओला पॉलीथिन में भर के घर के बाहर रख देबो या कोनो खुला जगह हम डाल देबो जहाँ जानवर मन घूमे बर जाते या किंजरत रहते। कई बार वो जानवर के यदि पेट नहीं भरे और ओला कुछ खाए पिए के पॉलीथिन के अंदर मिल जाते तो वो पॉलीथिन सहित वो खाए पिए के सामान ला ले लेते अपन अंदर और उसका समय तो खर पेट भर जाते। पर समस्या ये है कि अब जैसे अपन सुनतन भी कि पॉलीथीन आज कितना बड़े हमारे पर समस्या बन गए है, सिर्फ हमारे पर नहीं वो जानवर मन पर भी बहुत बड़ी समस्या है। काबर कि पेट में जाए के बाद वो पॉलीथीन गले नहीं, वह पड़े रही थे और वह ऐसा इकट्ठा हो जाते और एक समय ऐसे आते कि वो जानवर के पेट में पॉलीथीन के अलावा कुछ बजबे नहीं करा कि ओखर पेट में कोई जमा है। और कई बार यही पॉलीथीन में यदि आप कुछ ऐसे सामान भेज दो जेन लोहा के है, कीले और कोई ऐसे चीज है जेन पेट ला छेद कर सका थे, तार है जैसे, तो ऐसा सामान भी लोगन फेंकते और जानवर वहूल खा लेते और कई बार यह पेट ला फाड़ के ओखर छाती में घुस देते, कई बार हार्ट में घुस जाते और वो जानवर ला बहुत तकलीफ के सामना करे पड़ते। तो ये हमर जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई भी चीज पॉलीथीन में या खाए के ना भेजन जिन जानवर खावे ओखर बाद ओला तकलीफ होवे, नुकसान होवे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि जानवर कोई चीज हुआ थे ओखर संग तो ओखर प्राथमिक तौर पे जिम्मेदारी हमर मनुष्य मन के बन थे। तो हमला अपन जिम्मेदारी के निर्वहन बराबर करना चाहिए कि कोई चीज पॉलीथीन में ना फेंकन या ऐसे नहीं फेंकन को जानवर खा ले और ओला नुकसान हो।
3: जी जी।
0: हाँ, फोन करे खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान वाणी।
4: हेलो किसान वाणी।
0: हाँ कौन बोला था?
4: राम राम दीदी।

0: राम बताओ कौन बोला था, कहाँ ले बोला था अपमान?
1: मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था।
0: जी साहू जी, अपमान के बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे क्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये विषय से जुड़े अपमान के कुछ शंका है, कुछ समस्या है, तेला अपमान पूछ सकते।
1: हाँ डॉक्टर साहब, राम राम।
2: राम राम।
1: हम प्रश्न ही कहा था कि हमारे खेती बाड़ी के समय आगे है, तो आवारा पशु मन घूमत रही थे और घूमते तो खर हम प्रबंधन कैसे टाइप करी ना बोला, किसान मतलब बहुत नुकसान भी पहुंचाते आवारा पशु में। हाँ एक उपाय बता देते तो बढ़िया रही।
2: बिल्कुल, व्यवस्था ऐसे है कि भाई यदि बरसात है तो हमला जहाँ उन रखे हैं वहाँ व्यवस्था ऐसे हो कि वहाँ पानी है मत आवे, चिखला मत हुआ है, वहाँ साफ बिल्कुल साफ सुथरा रहे और सूखा रहे और पानी पिए पानी के प्रचुरता रहे, साफ पानी के और साफ खाना जेकर से ओखर पेट भर सके ओखर व्यवस्था रहना चाहिए। यदि ये सब रही तो वो जानवर ला भी कोनो तकलीफ नहीं होई, खुल्ला नहीं घूमी और खुल्ला नहीं घूमी तो आपके पीछे दौड़े के कोनो बात हो ही नहीं ना, वो रोड में पाए जाही जेकर से आप आज जात हो, आप फोर व्हीलर में हो टू व्हीलर में हो तो ओखर से आप टकरा के आपके एक्सीडेंट हो सकते है, ऐसा कुछ भी नहीं हो ही। तो ये हमार जिम्मेदारी है और हमार पूरा भारतवर्ष में गाय ला माता के दर्जा दे है। अब खुद ला सोचे टाइम है का हमार माँ जिन गाय है तेन ला माँ कहा थन और ओला ऐसे शेल्टर के जरूरत पड़ा थे, ओकर भागे के समस्या हुआ थे, ओकर एक्सीडेंट्स है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या हमार खुद के पैदा करे हुए है। तो जिन समस्या हम खुद पैदा करे हैं ओकर प्रबंधन भी हमारे जिम्मेदारी।
0: डॉक्टर साहब आप मन हमर संगवारी मन के शंका के समाधान करे हो, संगे संग उपयोगी जानकारी दे हो, एकर खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मोला मौका दे और मैं आपके श्रोता से रूबरू हूँ और ये जिम्मेदारी हम पूरा करबो तबे हम भी सुरक्षित रहो और वह मन सुरक्षित रही। धन्यवाद।
3: ये तो रही से क्रम हेलो किसानवाणी फोन इन कार्यक्रम, एमां आज के विषय रही से बरसात के मौसम में आवारा पशु मन के प्रबंधन, ये संबंध में जानकारी दीन डॉक्टर पद्मचंद जैन जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिला पशु चिकित्सालय बैरंग बाजार रायपुर। संचालन रही से निधि शर्मा के, प्रस्तुतकर्ता शशि प्रकाश पांडे।

0: और निधि अब कृषक प्रश्न मंच क्रम के अंतर्गत संगवारी मन बता दे आज के प्रश्न।
1: संगवारी हो हमारे प्रश्न है दूषित पानी पिए ले पशुधन ला कौन बीमारी होते। एक गाँव बता देता हूँ दूषित पानी पिए ले पशुधन ला कौन बीमारी होते।
0: सवाल के झटकुन सही जवाब लिख के भेजू संगवारी हो। पाछू अब तक के प्रश्न रही से जैव विविधता का हर है तेकर सही जवाब है अपन आसपास के बीज फसल और पौधा के संरक्षण ही जैव विविधता है। और सही जवाब कौन भेजे नहीं थी तेना बता दे।
1: सही जवाब भेजे संगी मन है देवरी भाटा वारले गन्नूलाल रजक मुकेश कुमार रजक युवान और तनु रजक मन है पथरिया भरे वाले चंदुलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल मन और लोन में चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन है।
0: तो ये सबो संगवारी मन के जवाब सही है सबो संगवारी मन बहुत बहुत बधाई। अनिधि अब एक बढ़िया सही गीत सुनते हैं शेख हुसैन और संगवारी मन के स्वर में सुनता नहीं ये गीत।

0: ये सुगर गीत ला गावत्री ने शेख हुसैन और संगवारी मन है।
1: गीत बढ़िया रीचना नहीं थी
0: भाई,
1: मजा आ गए,
0: मजा आ गए। मौसम के हिसाब से गुलगुल भजिया स्वाद लगलो लीडर है। संगवारी हो ये तो रही से किसानवाणी प्रायोजक रही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और निधि अब होते जाए के बेरा तो जाए के पहली संगवारी मना बता देथन काली के कार्यक्रम काली चौपाल में हुई संगी हो चिट्ठी मिली क्रम पत्रोत्तर कार्यक्रम आज की सलाह क्रम में जानकारी के विषय हो ही खरीफ में प्याज के उन्नत खेती बताही डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी और गीत संगीत और कृषक प्रश्न मंच क्रम भी हो तब संगी हो देव अविदा चौपाल सुनिए जम्मो संगवारी मना विनीता
0: और निधि के
1: राम राम, राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल। अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड और मीडिया वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में आइए सुनते हैं फिल्म कलयुग का गीत आतिफ असलम की आवाज में, सईद कादरी के बोल और संगीत मिथुन का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए शान और साधना सरगम को फिल्म हंगामा में, गीत के बोल समीर के और संगीत नदीम शमन का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज कलाकार हैं रजनी रजक और साथी। आइए सुनते हैं रजनी रजक और साथियों के स्वरों में ये लोकगीत।

0: आदिनाने राजा समाधि बीच आजा आदिनाने राजा राजा समाधि बीच आजा।
1: लीजिए अब सुनिए रजनी रजक और साथियों के स्वरों में ये लोक संगीत।

लोक संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए अगला लोकगीत लता खापर्डे और साथियों के स्वरों में।

लोक संगीत में अभी आप रजनी रजक और साथियों को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को है। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का हर लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा, वहीं बेल्जियम और स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 ड्यूरेंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए आज भारतीय टीम की जर्सी लॉन्च की गई और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज से क्वार्टर फाइनल का दौर शुरू हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल फीवर की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा, वहीं रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इससे पहले बेल्जियम और स्पेन विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
1: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिएटल स्टेडियम में हुए मुकाबले में चार्ल्स डी केटलेरे के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बेल्जियम ने अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाया। चार्ल्स ने मैच के 9वें मिनट में निकोलस रास्किन के क्रॉस को गोल में बदलते हुए बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन जल्द ही 31वें मिनट में मलिक टिलमैन की डिफ्लेक्टेड फ्री किक ने थिबाउट कोटुआ को गलत दिशा में भेज दिया और स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। इसके तुरंत बाद डी केटलेरे ने एक शानदार हेडर लगाते हुए बेल्जियम को वापस 2-1 की बढ़त दिलाई।

0: 57वें मिनट में वनाकेन ने शानदार लॉन्ग रेंज शॉट लगाते हुए टीम के लिए तीसरा गोल दागा और अंत में लुकाकू ने एक मौके का शानदार फायदा उठाते हुए टीम के लिए चौथा गोल किया और स्टॉपेज टाइम में बेल्जियम की जीत पक्की कर दी। वहीं दिन के पहले मुकाबले में डलास स्टेडियम में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पुर्तगाल की इस हार के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप सफर भी समाप्त हो गया। मुकाबले से पहले उन्होंने कहा था कि ये उनका आखिरी विश्व कप होगा। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अपने विश्व कप करियर में 27 मैच खेले और 11 गोल किए। स्पेन मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक नजर आया, लेकिन पुर्तगाल ने भी स्पेन की रणनीति का भरपूर जवाब दिया। दोनों टीम की तरफ से गोल करने के लगातार प्रयास किए गए, लेकिन सभी नाकाम रहे। अतिरिक्त समय समाप्त होने से कुछ देर पहले ही स्पेन ने निर्णायक हमला किया। मिकेल मेरिनो ने खाली जगह का फायदा उठाते हुए विजयी गोल किया और टीम का क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि फीफा विश्व कप अब तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ और धीरे धीरे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का दौर दर्शकों को देखने को मिलेगा। और इसी तरह फुटबॉल का फीवर भी अब सात समंदर पार तक लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फीफा फुटबॉल विश्व कप के खुमार की चर्चा की है। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए फुटबॉल फीफा विश्व कप का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल पूरी दुनिया में फुटबॉल फीवर जारी है और यहाँ इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है।
2: आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है, यहाँ इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहाँ भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूँ, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले थे और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहाँ इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है, इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग।
1: तो मैन ऑफ द मैच ये भारतीय लोग और एक और मैन ऑफ द मैच अब भारत के लिए सजने को तैयार है, जहां भारत में भारत का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 ड्यूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष ड्यूरंड कप, राष्ट्रपति कप और शिमला ट्रॉफी के चैंपियन बनने के लिए नई टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी।
3: ड्यूरंड कप टूर्नामेंट ने उन्हें फुटबॉल प्रतिभागियों को मंच प्रदान किया। इस वर्ष कुछ नई टीमें ड्यूरंड कप, द प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी के विजेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। श्रीलंका की टीम भी इस आयोजन में भाग ले रही। मुझे विश्वास है कि नई टीमों के जुड़ने से ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता और भी लोकप्रिय बनेगी।
1: 25 जुलाई से ये प्रतियोगिता शुरू होगी और राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फुटबॉल लोगों को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है।
3: ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। आजकल फीफा विश्व कप के मैच खेले जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विश्व की श्रेष्ठ टीमों और खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन टीमों और खिलाड़ियों के प्रशंसक पूरे विश्व में फैले हैं। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। फुटबॉल के खेल में भारत को विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी है, इसी के लिए तैयार अभी से करना है।
1: तो भारत को अपनी तैयारियां करनी होंगी और राष्ट्रपति ने भी आखिरकार फीफा विश्व कप का जिक्र किया। और अब फीफा के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा।
4: भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मुकाबलों की श्रृंखला में 0-1 से पिछड़ने के बाद आज रात ट्रेंट ब्रिज में मेजबान टीम के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में मेहमान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से श्रृंखला गंवाने के बाद उन्हें मैनचेस्टर में 4 विकेट से

0: हार का सामना करना पड़ा है। मैनचेस्टर में भारतीय गेंदबाजों के सामान्य प्रदर्शन ने टीम की चिंताएं बढ़ाई हैं। ऐसे में टीम अपनी गेंदबाजी लाइनअप को बेहतर करना चाहेगी, जिसके लिए एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सपाट पिचों के आदि भारतीय बल्लेबाजों को भी इंग्लैंड की पिचों का अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट खुद को ढालने में मुश्किल पैदा कर रहा है। अभिषेक शर्मा को छोड़ दे तो अन्य बल्लेबाजों के खेल में अब तक वैसी लय नहीं नजर आई है। हालांकि कप्तान अय्यर और ईशान किशन ने कुछ रन बनाए हैं, लेकिन वे मैच पर अपना दबदबा नहीं बना पाए हैं। इस बीच युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के बाद अब एक बड़ा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मेहमान टीम को सीरीज में बने रहना है तो उसे हर हाल में ये मैच जीतना होगा। T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है, लेकिन इस दौरे पर भारत का अब तक का खेल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ऐसे में सभी क्रिकेट प्रेमियों को श्रेयस अय्यर की मेंस इन ब्लू से नॉटिंगम में एक शानदार वापसी की उम्मीद होगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें होंगी आज नॉटिंगम की तरफ, जहां टीम वापसी करने के इरादे से उतरेगी। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए आज भारतीय टीम की जर्सी का अनावरण किया गया। नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भारतीय दल के लिए जर्सी लॉन्च की। इस अवसर पर श्री मांडविया ने भरोसा जताया कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में खेलों की संख्या कम होने के बाद भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे।
2: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम स्पोर्ट्स सेक्टर में कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं, तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है, देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
1: वहीं पीटी उषा ने कहा कि ये सिर्फ एक जर्सी नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस जर्सी में खिलाड़ी 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें लेकर जा रहे हैं।
3: Today is much more than the unveiling of new kit. It marks the beginning of a journey. Every athlete standing here has earned the privilege of wearing the India jersey through years of hard work, discipline, sacrifice and determination. When you wear these colors, you carry the hopes and dreams of more than 1.4 billion Indians.
1: 23वें राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, जबकि गुरविंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर और मुरली श्रीशंकर जैसे कई राष्ट्र रिकॉर्डधारी खिलाड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 61 पदक जीते थे। हालांकि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में खेलों की संख्या को कुछ कम किया गया है। और अब बात करते हैं विश्व के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट में से एक, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की, जो इंग्लैंड में खेला जा रहा है और आज से क्वार्टर फाइनल का दौर शुरू हो गया है। तो इन क्वार्टर फाइनल मुकाबलों पे ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, किन किन खिलाड़ियों ने जगह बना ली है अंतिम आठ में?
4: देखिए शक्ति, एक ये जो बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो 1877 में शुरू हुआ, और क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में की अगर बात करें तो यानिक सिनर जो हैं वो मुकाबला जीत चुके हैं जेएल स्ट्रफ के सामने 7-5, 7-6, 6-3 से, और उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है। जोकोविच का जो मुकाबला है वो फेलिक्स ऑगर से अभी कुछ ही देर बाद खेला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जो मुकाबला एक कल सस्पेंड हो गया था विंबलडन कर्फ्यू के चलते, विंबलडन कर्फ्यू में आपको बताना चाहूँगा कि 11 बजे, रात 11 बजे के बाद विंबलडन का ये नियम है कि कोई भी मुकाबला नहीं खेला जाएगा, ताकि वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट हैं उनको शोर और लाइट की वजह से परेशानी ना हो। तो वो ज्वेरेव और जिरी लेहका के बीच मुकाबला अभी जारी है और ज्वेरेव 2-1 से आगे चल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं आगे चलने से पहले कल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों की।
5: विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में कल कई अहम मुकाबले खेले गए। पुरुष सिंगल्स में प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को 7-6, 6-4, 6-4 से हरा दिया। चेकिया के जेरी लेहिका और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होने वाला मुकाबला रद्द हो गया। ब्रिटेन के आर्थर फेरी ने बुल्गारिया के ग्रिगो

0: और दिमित्रोव को 5-7, 6-3, 6-4, 4-6 और 6-7 से हराया। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले 10 जुलाई को खेले जाएंगे, वही फाइनल 12 जुलाई को होगा। महिला सिंगल्स में चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने अमेरिका की मेडिसन कीज को 6-4, 7-6 से हरा दिया। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले 9 जुलाई को और फाइनल 11 जुलाई को खेला जाएगा। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: विशेष चलते चलते हमको ये भी बता दीजिए कि आज के मुकाबलों की बात तो रही, कल कौन कौन से अहम मुकाबले होने हैं प्रतियोगिता में?
2: जी, कल के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जो टेलर फ्रिट्स का मुकाबला है वो जिरी लहका और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच जो मुकाबला चल रहा है इसके विजेता से होगा, और एक मैच जो है वो कोबोली और आर्थर फेरी उसमें सामने आपको आमने सामने खेलते नजर आएंगे। महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और एलिस मार्टिन खेलेंगे और मार्टा कोत्स्युक और जैस्मिन पलोनी का भी मुकाबला होगा। एक ताज़ा अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि कोको गॉफ ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
1: जी बिल्कुल, तो कोको गॉफ ने अपनी पहली एंट्री फिक्स कर दी है। और अब बात करते हैं आज के जन्मदिन विशेष की, जो है महेंद्र सिंह धोनी का, यानी 7 जुलाई। और इस भारतीय खिलाड़ी को दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं, 45 वर्ष के आज धोनी हो गए हैं। दुनिया के दिग्गज ने इस खिलाड़ियों की नेतृत्व क्षमता का लोहा माना है।
3: बहुत कैप्टन आए हैं, बहुत कैप्टन आएंगे, लेकिन एमएस धोनी की कैप्टनसी या कैप्टनसी रिकॉर्ड को मैच करना मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन क्रिकेट में आगे कर पाएगा।
4: There's only one boss here, and that boss is the captain of the Indian cricket team, and his name is Mahendra Singh Dhoni.
5: I think उससे बड़ा क्रिकेटर ही नहीं आया जो उसने देश के लिए किया। I think hats off to
6: him. MS धोनी की जगह कोई भी खिलाड़ी खेलने आएगा ना, वो उनसे बेहतर कप्तानी नहीं कर पाए।
7: माही, I think you can be really proud of what you've done with this Indian cricket team.
8: For me, he's always going to be my captain because I started my career under him.
9: Even Musharraf told me one day, I said, "Yaar, tumne isko pakad kahan se liya hai? To chhakka hi marta hai standard." Maine kaha, "Yes, I bhi surprised hu. Itna taakat kahan se aata hai? Kahin se bhi utha ke chhakka maar."
10: And now, you see, he's the most successful Indian captain, having all 3 ICC trophies. It's the best captain India has seen.
11: A producer told me, I've just seen this man bat. He's got long hair. He says he walks like a bull. He bats like he owns the place. Forget everybody. Remember MS Dhoni.
1: तो भारत के लिए 2007 में T20 विश्व कप का खिताब, 2011 में 28 साल का इंतजार खत्म हुए, 100 भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट का खिताब और फिर चैंपियंस ट्रॉफी, सब कुछ भारत को इस खिलाड़ी ने दिलाया। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? sportscan.air@gmail.com पे हमें अपनी राय भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
12: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र

0: का भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
0: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
0: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
0: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने

0: ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है, 6 अन्य अभी

0: लापता है और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालोरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
4: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र

आइए अब सुनते हैं फिल्म बचना ए हसीनों में शंकर महादेवन को गीत के बोल अन्विता दत्त गुप्ता और संगीत विशाल शेखर का।

0: कुछ तो है इस फिल्म में। अभी आप के और सुनिधि चौहान को सुन रहे थे। गीत के बोल समीर के थे और संगीत था अनु मलिक का। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपक। रूपक में आज सुनिए धरती की पुकार। लेखक और प्रस्तुतकर्ता है दीपक हटवार।
1: लीजिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति समन्वित रूपक धरती की पुकार। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं दीपक हटवार। तो सुनिए रूपक धरती की पुकार।

0: अरे सोनू की माँ, टैंकर आ गया।
1: क्या टैंकर आ गया? चलो चलो चलो, मैंने तो पहले से ही गुंडी रख दी थी।
2: अरे मैंने तो बाल्टी रखी थी।
3: अरे भाई ये बाल्टी मैंने पहले रखी है। अरे तू कहाँ घुस रहा है?
2: देखते नहीं, मैं पहले से खड़ा हूँ।
4: मेरे घर में भी तो सुबह से पानी नहीं है, नहाए नहीं है हम।
3: ओए तू बीच में मत
1: बोल। अरे मेरी गुंडी पहले रखी थी।
4: अरे
1: मैंने रखी थी पहले अपनी गुंडी।
4: ऐसे थोड़ी ना होता, हम भी
3: बाल्टी फेंकता हूँ,
4: सबकी जरूरत है। ऐसे थोड़ी ना होगा, तुम
1: चलो चलो चलो हटो
4: बाल्टी, तो इधर
1: हटो इधर।

मैं धरती हूँ, सबको सब कुछ देने वाली। मगर ये क्या, कुछ दिन पहले की ही तो बात है, जब गर्मी से झुलस रही थी मेरी काया, तब आपस में लड़ रही थी मेरी संतानें पानी के लिए। हीरे मोती सोना चांदी लोहा कोयला लकड़ी सब कुछ देने वाली मैं।

0: आज इतनी असहाय कैसे हो गई कि ग्रीष्म की तपन में अपने बच्चों की प्यास नहीं बुझा पाती। मेरी ही आंगन में रहने वाले पड़ोसी पानी के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इनकी व्यथा तो मैंने जान ली, मगर मेरी व्यथा मैं किसे सुनाऊं, किससे कहूं छलने होते अपने शरीर की पीड़ा। प्रतिदिन किए जा रहे बोर से लगातार निकाला जा रहा है मेरी धमनियों से जल। असंख्य जोंक चिपक गए हैं हैंडपंप बनकर मेरी त्वचा पर और चूस रहे हैं मेरा रक्त। खाली हो रहा है मेरा शरीर। आखिर क्यों लिया जा रहा है असीमित मात्रा में मेरे शरीर से जल? कहाँ जा रहा है मेरी शिराओं में बहने वाला पानी? पानी, तुम कहाँ हो?
1: माँ, गर्मी के आते ही मैं बहुत दूर हो जाता हूँ तुम्हारे धरातल से, उस दूध की तरह जो सुबह होते ही निचोड़ लिया जाता है पूरा गाय के थन से। कुछ नहीं रहता शेष बछड़े के लिए, भूखा रह जाता है बछड़ा उन वनस्पतियों की तरह माँ, जो धरा की रिक्त धमनियों में कुछ भी न पाकर सूख जाते हैं। हाँ माँ, मैं ही हूं वो पानी जो प्रतिपल कुओं और बोर के जरिए तुमसे दूर हो रहा हूं माँ, बहुत दूर।
2: मैं डॉक्टर ए एल राठौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़। विश्व का जो उपयोगी जल है उसका लगभग 4% जल भारत में उपलब्ध है और उसमें लगभग 16% जनसंख्या विश्व की भारत में रहती है और 4% सतही जल से उसका अपना भरण पोषण करती है। कुल 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल भारत में उपलब्ध है और 432 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ में 41.7 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल उपलब्ध है और भूजल की उपलब्धता है 13.7 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसमें यदि हम उपयोग की बात करें तो 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल उपयोग हो रहा है और 2.8 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का उपयोग हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 41.7 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल उपलब्ध है और भूजल की उपलब्धता है 13.7 बिलियन क्यूबिक मीटर। भारत में 694 क्यूबिक किलोमीटर पानी अभी आवश्यकता है। यदि भारत में यदि 2025 की बात करें तो 784 क्यूबिक किलोमीटर पानी की आवश्यकता होगी और 2050 की बात करें तो 973 क्यूबिक किलोमीटर पानी की आवश्यकता होगी। बिना भूजल भरण के यदि भूजल का निकास होता रहा तो निश्चित ही राजस्थान की स्थिति आएगी जब 1000 फुट भी आप खोदेंगे तो भी आपको पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। पानी ही मुख्य बिंदु है, जैसे कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने बोला भी है कि यदि अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के ऊपर होगा।
0: जब आकाश से मुझ पर पड़ती है विहंगम दृष्टि तो मेरे चारों ओर पानी से भरी दिखती है सृष्टि। महाद्वीपों के हर तरफ फैले विशाल सागर की उदात्त लहरें यूं लगती हैं मानो ये ले रही हैं संकल्प मेरी रक्षा का। इनकी विशालता एहसास कराती है मुझे मेरी पूर्णता का। मगर ये कैसी विडंबना है, सागर में रहकर भी धरती प्यासी है। हे सागर के पानी, तुम इतने व्यापक हो, विराट हो, फिर भी तुम्हारी ये गहराई क्यों बौनी हो जाती है मनुष्य की प्यास के आगे?
1: मैं क्या करूं माँ, प्रकृति ने मुझे बनाया ही ऐसा है। ये सच है कि विशाल महासागर में फैला मैं अपनी गोद में उठा लेता हूं कितने ही विक्रांत और टाइटैनिक। मेरी लहरों में गतिमान असंख्य जहाजों से हो रही है विश्व की प्रगति। मेरी सतह से निकलने वाले तेल से बन गए हैं कई देश ऊर्जावान। मगर अफसोस कि मैं समुद्र में रहकर भी किसी के सूखे कंठ का सहारा नहीं बन सका माँ, नहीं बन सका।
3: मैं डॉक्टर दुर्गापद कुटी, रीडर इन भू विज्ञान अध्ययन शाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आज 1 अरब से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्रोतों से पानी के लायक नहीं पानी उपलब्ध है। भारत के 40,000 से भी अधिक गांवों में शुद्ध पेयजल की कमी है।

0: और पानी सबकी संपत्ति है, सबको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। शहरीकरण और आधुनिकता के साथ साथ हमने पानी के कंजम्पशन को भी प्रति व्यक्ति बढ़ा दिया है और भारत में भी ये बढ़ोतरी बराबर हो रही है कि कई जगह जितने भी बारिश हो रही है वो पानी पूरा बह करके आसपास की नदी नाले में चला जा रहा है। तो वहाँ से तो ठीक है रिचार्जिंग हो रहा है, लेकिन हम जब शहर में एक 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरिया में अगर पूरा कॉन्क्रीटीकरण कर दे रहे हैं, एक बूंद पानी भी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, तो उस क्षेत्र में रिचार्ज तो बिल्कुल असंभव है। केवल रायपुर की बात करूं तो इस शहर में के 102 तालाब थे जब अब की घट के 90 से नीचे आ गया है। हर घर घर में पंप लगना शुरू हो गया है, हर घर में बोरिंग हो गया है, तो लोग अपना मनमानी ढंग से और अधिक से अधिक जरूरत से ज़्यादा पानी निकाल ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से पानी की तो कमी आएगी और नीचे जा ही रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल 3-4 मीटर नीचे चला गया है पानी।
1: कल कल करती बहती सरिता की मधुर ध्वनि जहाँ मुझे मेरे सौंदर्य का बोध कराती, तो वहीं पर्वत के उत्तुंग शिखर से गिरते झरने की आवाज मेरी विविधता का परिचय देती। पहाड़ों से मैदानों तक मेरी गोद में फैले वन मुझे मेरी हरितिमा से आह्लादित करते थे, और इस अरण्य में विचरण करते वन्य प्राणी मुझे असंख्य बच्चों की माँ होने का सुख प्रदान करते थे। मगर क्या ये सब अतीत की बात हो गई? और वर्तमान यही सत्य है जो दिख पड़ रहा है। फैलते शहर, घटते खेत, कटते वन, हर तरफ बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल, जहाँ न धरा पर छाँव है न भीतर पानी, कब तक चलता रहेगा मेरे शरीर को छलनी करके पानी निकालने का ये अनवरत क्रम? पानी, ग्रीष्म ऋतु के आते ही तुम कितने दूर हो जाते हो मुझसे, कितने दूर?
2: मैं बहुत नीचे चला जाता हूँ माँ, काश कि तुम मुझे रसातल में जाने से रोक सकती। 200, 300, 400, 500 फीट, और अब तो वो सीमा भी पार हो गई है माँ। मैं इतने नीचे चला गया हूँ माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो।
3: मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू, विभाग अध्यक्ष भूमि एवं जल प्रबंधन विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। सबसे उपयुक्त जो संरचना है भूजल को बढ़ाने के लिए या वर्षा जल को रोकने के लिए वो डबरी है। छोटे छोटे खेतों में डबरी का निर्माण किया जा सकता है, गांव-गांव में जो तालाब है उसके गहरीकरण किए जा सकते हैं, और जो सामुदायिक तालाब है उसका भी नवीन निर्माण किया जा सकता है। और साथ ही जहाँ पे नाला है, और अधिकांश गांव जो है नालों से जुड़े हुए हैं, तो जगह जगह नाला में यदि हम स्टाप डैम या चेक डैम का निर्माण करें, चाहे वो अस्थाई हो या स्थाई हो, तो पूरे नाले को यदि हम इस प्रकार से बांधें कि एक स्टाप डैम से दूसरा स्टाप डैम के बीच एक बराबर जल स्तर बनी रहे, मतलब प्रथम जो चेक डैम है नाला में उसका जो आखिरी छोर का जो जल स्तर है वो उसके बाद वाले जो चेक डैम है या स्टाप डैम उसका ऊपरी हिस्सा हो, तो दोनों सतह मतलब एक लगातार हमको एक स्थिर जल उसमें अगर हमें नाला में प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पे ये भूजल संवर्धन में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। इसी प्रकार परकुलेशन टैंक जिसको हम रिसाव तालाब कहते हैं, इसमें मुख्य बात ये होती है कि जितना अधिक से अधिक वर्षा जल का जो अपवाह है, जो सतही जल है जो व्यर्थ नाला के माध्यम से बह के चला जाएगा, उसको ये बड़े बड़े तालाब में इकट्ठा किया जाता है। और इस तालाब का खासियत ये होता है कि इसमें जल का स्थिरीकरण है वो काफ़ी कम रहता है, कम समय तक इसमें पानी टिकता है और जल्दी से जल्दी इसमें रिसाव होता है। गाँववासी अगर इसमें अपने मिलजुल के सामुदायिक परकुलेशन टैंक का भी निर्माण करें तो निश्चित तौर पर उनके जो ट्यूबवेल है, कुएँ हैं, उसमें रिचार्ज काफ़ी ज़्यादा होगा और भू जल की उपलब्धता उनको ज़्यादा हो पाएगी। जो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट है, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है, वो काफ़ी अच्छा मदद करती है और इस संरचना के निर्माण में वो पूरा आर्थिक सहयोग देती है।
4: मैं रंजन राय, वैज्ञानिक, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड रायपुर से हूँ। जहाँ तक शासन की प्रयास की बात करें, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ने सारे देश में 1065 ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल ब्लॉक्स को चिन्हित किया है। यानी इस क्षेत्र में भूजल की जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है। तो इन क्षेत्रों में डगवेल रिचार्ज का एक प्रकल्प चालू किया गया है, जिसके तहत 7 लाख कुओं के माध्यम

0: से वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण किए जाने की लक्ष्य है। ये लगभग 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वैसे ही भारत सरकार के एक 3R प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वाटर बॉडीज यानी जलागारों का रिपेयर, रिनोवेट और रिस्टोर किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में कुछ राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विश्व बैंक से लगभग 3000 करोड़ का अनुदान भी प्राप्त किया है। और पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कवर्धा में 10 वाटर बॉडीज को चुना गया है, जिसमें काम चल रहा है। सीधा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो और भी कई विभाग हैं, जैसे जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, इनके द्वारा वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण के उपाय गांव-गांव में किए जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो PHED यानी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का रहा है। PHED ने एक स्टेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज सेल यानी एक भूजल संवर्धन कोष्ठ बनाया है और पूरे छत्तीसगढ़ में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण के काम कई वाटरशेड में किए जा रहे हैं। इसमें DPR के मूल्यांकन में CGWB का भी योगदान रहा है और 11वीं पंचवार्षिक योजना के तहत भी केंद्रीय भूमि जल बोर्ड काम कर रही है। DPR इसके लिए इन्वाइट किए जा रहे हैं और इस सबके लाभ दिखते हैं। ये सारे प्रयास महत्वपूर्ण है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग को जैसे और ज्यादा सफल बनाने के लिए आम आदमी का, हम सबका उसके साथ जुड़ना ज्यादा जरूरी है और इसके लिए जरूरी है जन जागरण, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के। CGWB देश भर में गांव-गांव में जाके जन जागरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम कराती है। इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय ने वाटर लिटरेसी मूवमेंट चालू किया है, जिसमें ग्राम चौपाल भी शामिल है। प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार ने 32 कृषि विश्वविद्यालय को चुना है, जो कि हर साल लगभग 100 प्रशिक्षक और 1000 अन्य लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन देने के लिए वाटर कांग्रेस के माध्यम से विलेज कम्युनिटीज और NGOs को महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। और यही कारण है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी सिर्फ एक किताबी शब्द बनकर नहीं रह गया है, ये एक आंदोलन का रूप ले रही है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सरकार के हर बिल्डिंग में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए जा रहे हैं और ये हजारों के तादाद में है आज रायपुर शहर में। इन प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में इनके और भी अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखेंगे।
1: मैं के पनिग्रही, भूजल वैज्ञानिक, गीतांजलि नगर, रायपुर। हमारे द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है, उसमें बेसिकली जिनके भी घरों में जो है छत का पानी बरसात के समय में गिरता है, उसे हम किसी एक PVC पाइप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो है एक कॉर्नर में लाकर, बोर हो बोर के बाजू में किसी भी प्लेस पर, हम जो है एक 15 फीट का जो है एक वेल बनाते हैं और उसमें जो है डिफरेंट फिल्टर मीडिया, ग्रेवल, पेबल, सैंड, कोल, फिटकरी, यह सब डालकर हम जो है उसको पानी को जो है धीरे धीरे अंडरग्राउंड रॉक्स में जो है हम उसको जाने के लिए एक मीडिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है कि पानी जो है बहकर अंदर जमीन के अंदर जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1000 वर्ग फीट के छत से अगर रायपुर शहर का एवरेज वार्षिक औसत वर्षा 1200 मिलीमीटर की होती है तो आप 2,40,000 लीटर पानी आप एक बरसात में इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि 4 टैंकर के बराबर आपको पानी आपके बोर को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि मई और जून के महीने में जिस तरह प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह की समस्या आ रही है, वो मई और जून का महीना जो है इन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम से लगाने से अच्छा फायदा मिल रहा है। इसे मुश्किल से 500 रुपये की लागत होती है और फिल्टर सिस्टम जो है, जो जैसे 1500 स्क्वायर फीट का घर है जिसका इंडिविजुअल 1200 स्क्वायर फीट का छत है, उसमें से केवल एक पाइप, अगर एक पाइप, एक फिल्टर, एक ओवरफ्लो वाल और एक बोरिंग के पास में उसको रिचार्ज करना हो तो उसकी लागत 5000 आती है। और जो है रिचार्ज वेल की बात कर रहा हूँ, जो ट्रिपल लेयर फिल्टर की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा कुआं जो है, उस कुएं की लागत जो है 25-30 हज़ार रुपये आती है।
2: पानी सुना तुमने, मेरी गोद में बरसने वाले पानी को यानी तुम्हें अब व्यर्थ नहीं बहने दिया जाएगा। तुम भी कितने चंचल हो ना पानी, बादल बरसे नहीं कि तुम अपने आने की सिर्फ दस्तक देकर कभी छत से नीचे गिरकर निकल जाते हो तो कभी पक्की सड़क के हमराही बनकर दूर चले जाते हो, मगर मेरे पास रुकने की फुर्सत नहीं है। तुम्हारे पास भाव बनकर आकाश में उड़ जाने के बाद क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती?
3: बहुत याद आती है माँ, मैं तो सावन का बेसब्री से इंतजार करता हूँ माँ, पर मैं क्या करूँ, तुम्हारी गोद में आने से कभी पक्के मकान मुझे रोक लेते हैं तो कभी पक्की सड़कें। मगर मैंने सुना है कि अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी सोखता के जरिए मैं

0: फिर से तुम्हारे भीतर समा जाऊंगा माँ, मगर पता नहीं क्यों मुझे फिर भी डर लगता है माँ। क्या वास्तव में मैं तुम्हारे पास आ पाऊंगा?
1: श्रीमती सरिता पाणिग्रही, भूजल विधु। पिछले 8 वर्षों में काफी लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन जितनी जागरूकता आनी चाहिए उतना लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से लोगों में इसके विषय में जानकारी नहीं है या आधी अधूरी जानकारी है, इस कारण शायद वो इससे पीछे हटते हैं। यदि उनको इसकी पूरी जानकारी और इसकी वास्तविकता, इसके फायदे और इसमें जो वास्तव जो खर्च आता है उसकी जानकारी होगी, तो मेरे ख्याल से जो लाखों के घर बनाते हैं, महंगे महंगे टाइल्स लगाते हैं, वो इस चीज़ को अपनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे सेमिनार भी होते हैं, उसमें भी हम ओपनली सबको इनवाइट करते हैं, तो होता क्या है कि आते नहीं आगे लोग इसके बारे में जानकारी लेने। तो मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे आगे आएँ, इसकी जानकारी दें, वो खुद इस चीज़ को अपनाएं।
0: सुना माँ तुमने, मुझे जिस बात का डर था ना माँ, वही हो रहा है। हर तरफ पंप लगाकर लोग मेरा दोहन कर रहे हैं, मुझे व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं माँ। ये जानते हुए भी कि मेरे दोहन का यही क्रम लगातार जारी रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में ग्रीष्म ऋतु के आते ही मैं तुम्हारे गर्भ से खत्म हो जाऊंगा माँ, खत्म हो जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे हो रही है कन्या भ्रूण की हत्या। धरती की कोख से अगर पानी का अस्तित्व ही मिट जाएगा माँ, तो कितनी भयावह स्थिति होगी, क्या कभी किसी ने सोचा है?
2: नहीं नहीं पानी, ऐसा मत कहो। इस कल्पना मात्र से ही मेरा दिल धड़कने लगता है, मन व्याकुल हो जाता है। मेरे जल से अपनी हर जरूरत पूरी करने वाले मनुष्य, तुम कब जागोगे? बोलो, जवाब दो।
3: मैं डॉक्टर विनय पांडे, मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये एक ऐसा मिशन है जो कोई एक कॉलोनी एक व्यक्ति करे तो इसका सफलता नहीं होगी। हमारा तो ये कहना है कि ये जन जन में ये भावना जगाना पड़ेगा, और जितनी भी कॉलोनियां हैं आज ज़रूरत है कि सब लोग इसके विषय में जागरूक रहें, और जिनके कॉलोनियों में जिनके आसपास ये संरचनाएँ बनी हुई हैं उसका रख रखाव करें, जहाँ संरचनाएँ नहीं बनी हैं तो बनवाने का प्रयास करें, और जब मिलजुल के एक पूरे क्षेत्र में ये काम शुरू होगा तभी भूजल स्तर की वृद्धि संभव हो पाएगी। एक आम आदमी में धारणा रहती है कि इतने छोटे से स्ट्रक्चर से कितना भूजल का स्तर बढ़ेगा, या कि क्या थोड़ा बढ़ा तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, कि ये प्राकृतिक की ऐसी तकनीकें हैं जिनका लाभ हो सकता है आपको 1 साल 2 साल में न मिले, लेकिन अगर ये संरचनाएँ बनती हैं तो आगे 10 साल 20 साल 50 साल बाद अगर हमें नहीं तो हमारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आज समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो वर्षा जल प्रबंधन का एक एक मिशन के रूप में लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बनाएं और इसका उपयोग करें, इससे अवश्य फ़ायदा होगा।
4: सुनील सोनी, महापौर रायपुर। जिस हिसाब से जो वाटर लेवल डाउन हो रहा है उसका प्रमुख कारण है कि वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर रिचार्जिंग ये व्यवस्था जो है हम अपने मकानों में नहीं कर रहे हैं। नगर निगम ने नियम बनाए हैं कि जो नक्शे पास करेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बताएंगे तभी नक्शे पास करेंगे। नक्शे में उल्लेख होता है लेकिन धरातल पर उल्लेख नहीं होता, लेकिन जब मकान बनता है तो उसके बाद में हम जब उसकी कार्रवाई की नौबत आती है तब हम देखते हैं कि इस शहर के अंदर में 30% लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की है, 70% लोग आज भी ऐसे हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं किए हैं। तो हमने अभी एक अभियान जो चलेगा वो बड़े मकानों के लिए, बड़े कॉम्प्लेक्स के लिए, ये हम जो है जो बड़े लोग हैं उनके उसमें अभियान चलाएंगे, और वो अगर व्यवस्था उसमें एक समय सीमा होगी, उस समय सीमा में अगर वो व्यवस्था नहीं करते तो हम अनेक हमारे पास में नियम कायदे हैं उसके अंदर में हम उनके ऊपर में जुर्माना करेंगे। तो आप नगर निगम को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये व्यवस्था आप लागू नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी।
2: सुना तुमने पानी, तुम्हें मेरे भीतर पहुँचाने प्रशासन की ओर से भी अब नियम बनाए गए हैं।
0: काश तुम्हारी कोख से मेरा दोहन करते समय भी कोई नियम बनाया गया होता धरती माँ, तो आज ये नौबत नहीं आती।
2: मगर नियम का पालन लोग ठीक से करते कहाँ हैं पानी? जिन लोगों ने भी तुम्हारी हिफाजत

0: के लिए वर्षा जल संग्रहण को अपनाया है वो किसी जुर्माने के डर से नहीं बल्कि अपनी स्वप्रेरणा से पहल कर रहे हैं और बन रहे हैं औरों के लिए मिसाल।
1: मेरा नाम है रश्मि तिवारी और हम रहते हैं LIC कॉलोनी में।
2: था गर्मी जैसे जैसे बढ़ती थी तो लेवल डाउन हो जाता था, हमारे बोर में पानी नहीं आता था, तो हमको फिर किसी ने सजेस्ट किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, और वो हमारे सामने आज है। ऊपर का जो पानी होता है, रेन का जो पानी आपकी छत में होता है, उसको कलेक्ट करके पूरा छन जाएगा। उनका कुछ एक अपना टेक्निक है जिसमें एक पाइप में आता है, उस पाइप से होते हुए ड्रेन होते हुए हमारे बोर में चला जाएगा, तो वो उसको डायरेक्ट बोर में हमने अटैच करवा दिया। तो उससे जब भी पानी बारिश होती है तो वो पानी पूरा उस पे से पाइप से होते हुए गुजरता है और उसमें से छन जाता है और फिर चला जाता है हमारे बोर में। तो उससे हमारा बोर का लेवल बढ़ा है इस साल। मैं तो यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ करवाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करें, जिससे पूरे के पूरे एरिया को ही फ़ायदा हो।
3: अपनी समझदारी से मेरी रक्षा करने वाले हे मानव, मैं हृदय से आभारी हूँ तुम्हारा। तुमने मेरे मूल को पहचाना, वरना मैं तो बिना टोटी के नलों से पता नहीं कहां कहां बह जाता हूं। कितने ही घरों के पोर्च और कारों की धुलाई में यूं ही बहा जाता हूं मैं और बन जाता हूं शुद्ध जल से गंदा पानी। क्या इस समाज में मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरा कोई मोल नहीं?
0: मोल तो तुम्हारा बहुत है पानी, 10 या 15 रुपए बोतल। तुम तो बिक रहे हो बड़ी आसानी से।
3: नहीं धरती माँ, नहीं, ऐसा मत कहो माँ। क्या कभी किसी ने कल्पना भी की होगी कि इस देश में इंसान को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी खरीदना पड़ेगा?
0: मगर ये तो शाश्वत सत्य है पानी कि तुम बिक रहे हो। तुम्हारे बारे में एक बात और कही जा रही है, अगर यूं ही मेरे गर्भ से तुम्हारा दोहन होता रहा और लोग तुम्हें बचाने अब भी नहीं जागे, तो भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि हर तरफ तुम्हारे लिए त्राही त्राही मच जाए और तीसरा विश्व युद्ध तुम्हारे लिए लड़ा जाए।
3: नहीं धरती माँ, नहीं माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माँ। बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ?
0: तुम क्या कर सकते हो पानी, सब कुछ तो मनुष्य पर ही निर्भर है। अगर मनुष्य चाहे तो तुम्हें, मुझे और इस मानव सभ्यता को बचा सकता है, और अगर मानवीय लापरवाही के कारण प्रतिदिन तुम बर्बाद होते रहे, मेरी गोद में बरसने वाली बरसात की संपदा कंक्रीट के जंगलों से होकर अगर व्यर्थ ही बहती रही, अगर अब भी न किए गए तुम्हें मेरे गर्भ में संरक्षित करने के उपाय और यूं ही बढ़ती रही तुम्हारी मांग, तो कहीं ऐसा ना हो कि ग्रीष्म ऋतु के आते ही हर तरफ पानी के लिए लोगों की कतार दिखाई देने लगे, सुबह होते ही कानों में गूंजने लगे जल विवाद की अनुगूंज, प्रातः जागने से रात सोने तक हर व्यक्ति के जीवन का एक ही लक्ष्य शेष रह जाएगा, पानी, पानी और पानी। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो कैसा जीवन, कैसा वर्तमान और कैसा भविष्य? हे मनुष्य, फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें क्या चाहिए, पानी या जल संकट की कहानी?

0: की पुकार, ये समन्वित रूपक अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर ममता चंद्राकर का था, वाचक थे डॉक्टर कंचन अहलुवालिया और योगेश नैयर, लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे दीपक हटवार। ये थी आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति।
1: रूपक धरती की पुकार अभी आप सुन रहे थे, जिसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे दीपक हटवार। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को योग्यता का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये पहला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, दिल्ली शहर मुरगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, पहरा इवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम रावत, सौरभ रावत, पेंशनवाड़ा रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश यादव, शीला यादव, कनक, गुनगुन यादव, बेबी अदिति और तन्मय यादव, भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, करीभदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा गिन्नी, लल्ली भाविका और झाविंद्र विश्वकर्मा, खैरागढ़ से रविन्द्र अग्रवाल, पुष्पलता, झरना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा, अमलीपदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी और ममता तिवारी, हर्टी चौक बिलाईगढ़ से रजनी देवांगन, प्रियंका देवांगन, रेणु देवांगन, जुड़वा चौक सरंगपाल से रामचंद्र देवांगन, शीतला, सुनैना, पिंकी, यश, युवराज सिंह और गीता देवांगन, मंगला मटिया जिला बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, सरमुंदा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई दामले और राजेंद्र कुमार दामले। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर राज फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़ में, गीत के बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

आइए सुनते हैं अगला गीत। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, श्रीमती कचरी देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन, ऋषभ और रिचा देवांगन। ग्राम मुलमुला बेमेतरा से शेखन राम साहू, अमृकाबाई, लेखनी रोशनी चहक साहू, यहीं से नेत्राम साहू, मनीराम, लक्ष्मी साहू, बिंदु, डिंपल, रमेश्वर साहू, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, वर्धमान रेडियो श्रोता परिवार सिमगा से सभी श्रोता साथी, पलारी रोहासी से डगेसर राम साहू, घनश्याम साहू, अलका जानवी और नूतन साहू, महादेव घाट से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश और तारिणी ठाकुर, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, अमलेश्वर से सूरज ठाकुर, सुजला ज्योति, रेयांश ठाकुर, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, सिकंदर अशरफ खान, अल्फैज खान, सादिया खान, नयाज खान, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती ऊषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह।

बिल्लू, लिलू, रितु सिंह, ऋषभ सिंह, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और असलम अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और आसमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, नलेश्वर नगर नखेल महाराष्ट्र, पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, सहसपुर लोरमी से मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद बढ़कू साहू, दुर्गेश कुमार, दूल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, रोहिणी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर फिल्म कुछ ना कहो में शान और साधना सरगम को, जावेद अख्तर का लिखा गीत और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

मिर्जापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, सहसपुर लोरमी से मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद बढ़कू साहू, दुर्गेश कुमार, दूल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, रोहिणी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर फिल्म कुछ ना कहो में शान और साधना सरगम को। जावेद अख्तर का लिखा गीत और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम आपकी पसंद अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अगला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं माटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, चौवाराम वर्मा और दुलारी वर्मा, बठेना पाटन से बलकरण अंजुनी वर्मा, कुमारी और ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषीकृत वर्मा, भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा, रजनकार मुंदड़ा, पटपट डोंगरगढ़ से रामगोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव, रुआ बांधा भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, शुभम जैन और शौर्य जैन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिश्री, नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव और योगेश यादव, बेलरगांव से हावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, सिमगा से मोनिका जैन, बीना जैन और आदिश जैन, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही पूजा, छुटकी शरद कुमार माखीजा, बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार साहू, लके सिन्हा, सुरेश कुमार सारथी और कमलकांत सारथी। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर अरिजीत सिंह को फिल्म राज रिबूट में गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत जीत गांगुली का।

आइए सुनते हैं अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप हैं चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम, मोहम्मद साजिद, सिमगा से भारती सेन, सुनंदा सेन, सुष्मिता सेन, विनीता सेन और पिंकी सेन, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित कुमार यादव और अमीन कुमार यादव, यहीं से अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी यादव और लक्ष्मी यादव, जय मां कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिर्री गातापार से लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू और प्रभुराम साहू, शिव चौक सांकरा भूमिया से मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद, पूर्व निषाद, खुशांत निषाद, रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू और डिकेश कुमार, कत्यपारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन और आशीष देवांगन, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, भरेवा से चंदुलाल सिंगरौल, नारायण सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल, बाजारपारा बेमेतरा से सनत कुमार यादव, राजू दिलीप यादव, बरातू यादव, आदित्य यादव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार यादव, रोशन कुमार, बंशीलाल और लवी श्रीवास्तव, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटी से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, भाटापारा से रामकुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत।

आपकी पसंद में लीजिए सुनिए आखिर गीत। और इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बाजार पारा बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लक्की लव कुमार सिन्हा, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, कोटा रायपुर से योग्यता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा, यहीं से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे, पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा और ग्रंथ वर्मा, जनवानी दुर्ग से सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, कुमारी सुनीता ऋषवंत साहू, हिरेन्द्र नीलकंठ साहू, चंद्रहास संजीव त्रिलोक साहू और रणजीत सिंह साहू, ग्राम फिलौरी 52 लाख बेमेतरा से रोहिणी डागेश्वरी साहू, खुलासा देवी साहू, देवव्रत राघवेंद्र राज साहू, हिमनत कुमार साहू, बेबी विधि दीपिका साहू, कविता सृष्टि साहू, खट्टी महासबुन से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा।

हाँ, कुमुदिनी शर्मा और ओमकार शर्मा, अहिवारा दुर्ग से डबल कुमार डब्बू धीवर, जतिन हेमनराज बाबू धीवर, संजय कुमार, इंद्रजीत राजू धीवर, लक्ष्य धीवर, आचल माही, नानू पार्थ, भावना अनमोल और राजा धीवर। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, अछोटा धमतरी से बिसहत राम देवांगन, मानकी बाई, गणेश राम, रोहित राम, राजेश कुमार, गीतेश और सेजल, धवल, लवन, काव्या और तेजस्वी देवांगन। आइए सुनते हैं आप सब की फरमाइश पर फिल्म राजवा हिंदुस्तानी में कुमार सानू और अलका याग्निक को। गीत के बोल समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज सुनिए पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का गाया राग मेघ।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का गाया राग मेघ और मियां का मल्हार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है, हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमरीका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।